सुप्रभात। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 10 जुलाई 2026। इस समय प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब आज की प्रथम सभा आरंभ होती है। मंगल कामना के साथ हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। सुबह के 6 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया है। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड की यात्रा होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव कानून की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति आज और कल गोवा में व्यापक विचार विमर्श करेगी। समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत गोवा का दौरा कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। उनके आगमन पर ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्करी ने उनका स्वागत किया। डॉ. जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। और ब्रिस्टल में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड

0: इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराया है। भारत के 159 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 37 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा का अनुमान है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

अपना जीवन प्रभु के चरणों में प्रभु की सच्ची भक्ति में समर्पित कर देने से जीवन के सारे कष्ट सारी चिंता समाप्त हो जाती है और उनकी जगह ले लेते हैं धैर्य और शांति।

संसार में सुखी वही है जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है, उनके न्याय पर विश्वास है। ऐसे प्राणी को संसार की कोई भी प्रतिकूल स्थिति विचलित नहीं कर सकती।

वंदना कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अनूप जलोटा, डीवी पलुस्कर, अनुराधा पौडवाल, दिलीप कुमार राय और शर्मा बंधुओं की गाई ये भक्ति रचनाएं। आइए अब आपको सुनवाते हैं संवेत स्वरों में ये देशगान।

0: इस देशगान के साथ ही आज का वंदना कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन बिंदु, विषय है खुशियां, आलेख है शरद चंद्र सक्सेना का और वाचन है राखी कटारा का।
1: आज लगातार तीसरे दिन भी पप्पू की पिटाई देखकर सोनू और मुकेश बहुत दुखी थे। पप्पू सोनू और मुकेश की बुआ का इकलौता बेटा था। पिछले साल के भूकंप में दबकर उसकी दादी, मम्मी और पापा की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद पप्पू के मामा उसे अपने साथ ही ले आए ताकि सोनू और मुकेश के साथ उसका मन भी लग जाए और वो पढ़ भी ले। पप्पू के आने से सोनू और मुकेश तो बहुत खुश हुए। पप्पू उनकी ही कक्षा में था और फिर एक ही स्कूल में तीनों पढ़ते थे। तीनों बच्चे साथ साथ पढ़ते और साथ ही साथ खेलते भी थे। पप्पू जब यहाँ आया तो मामी बड़ी प्रसन्न हुई। कुछ दिनों तक उन्होंने पप्पू का खूब ध्यान रखा, लेकिन अब उन्हें जाने क्या हो गया। मामी बड़बड़ाती हुई कहती, अपन तो चली गई, इस नौ हाथ की डोर को हमें थमा गई है। मामी पप्पू पर अकारण ही क्रोध करने लगी थी। सोनू और मुकेश को बहुत बुरा लगता था, लेकिन वे कर भी क्या सकते थे। मामी पप्पू से घर का काम भी करवाने लगी। सोनू कहता, मम्मी मैं काम कर दूंगा। मामी चिल्लाकर कहती, ये कमबख्त क्या खा खा कर पलेगा, करने दे इसे काम। सोनू बेचारा चुप हो जाता। काम में गलतियां होने पर पप्पू की पिटाई होने लगी। आए दिन मार खाते रहने से पप्पू उदास रहने लगा। उसका मन किसी भी कार्य में नहीं लगता। उससे घर और स्कूल में और अधिक गलतियां होने लगी। उसे दोनों जगह ही दंड मिलता। पप्पू का ये हाल देखकर सोनू और मुकेश ने एक योजना बनाई और अपनी योजना की तैयारी में जुट गए। आज इतवार का दिन था। पप्पू की सुबह सुबह ही पिटाई हो गई। सोनू और मुकेश ने खुसुर पुसुर करके कुछ सलाह की और अपने पढ़ाई वाले कमरे में चले गए। मम्मी ने आवाज लगाई, सोनू मुकेश चलो नाश्ता कर लो। सोनू अपने कमरे में से ही बोला, मम्मी हम होमवर्क करके नाश्ता करेंगे। थोड़ी देर के बाद मम्मी झुंझलाई हुई आईं, आते ही बोली, तुम लोग नाश्ता क्यों नहीं करते। हमें भूख नहीं है, सोनू और मुकेश ने एक साथ उत्तर दिया। क्यों, 11 बजे तक तुम लोगों को भूख ही नहीं है, मम्मी ने कहा। पापा अखबार पढ़ रहे थे, बच्चों की बात सुनकर वो भी आ गए। अरे बच्चों तुम्हें भूख क्यों नहीं लग रही है, वे प्यार से बोले। आज पप्पू भैया दुखी जो है, तपाक से मुकेश ने कहा। तुम्हारा पप्पू भैया दुखी क्यों है, पापा ने आश्चर्य से पूछा। क्योंकि आज तीसरे दिन भी मम्मी ने पप्पू भैया को पीटा है, सोनू मुकेश एक स्वर में बोले। बच्चों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पापा ने मम्मी की ओर दृष्टि डाली तो मां ने अपनी नजरें झुका ली। अपने लिए हमदर्दी देखकर पप्पू सिसकने लगा। पापा ने पप्पू के सिर पर हाथ फेरते हुए अपनी पत्नी की ओर देखा। तभी सोनू ने अपनी शर्त की तोप दाग दी, पापा जब तक माँ पप्पू भैया को नहीं पीटने का वादा नहीं करती हम कुछ भी नहीं खाएंगे। बच्चों की बातें सुनकर मम्मी का मन ग्लानि से भर गया। मैं वादा करती हूँ, मम्मी बोल पड़ी। सच, कहते हुए सोनू माँ से चिपट गया। माँ बेटों को देखकर पप्पू और मामा भी मुस्कुरा पड़े। बच्चों ने चटखारे लेकर नाश्ता किया, घर में फिर से खुशियां लौट आईं।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन बिंदु, विषय था खुशियां, आलेख था शरद चंद्र सक्सेना का, वाचन था राखी कटारा का। और आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस गान। स्वर है ए हरिहरन का, संगीत है सतीश भाटिया का।

अपने दोनों शिष्यों श्री राम लक्ष्मण तथा अन्य मुनियों के साथ मुनिवर विश्वामित्र जनकपुर पधारे हैं। ये समाचार पाकर मिथिलेश जनक अपने श्रेष्ठ आत्मियों के साथ उनके दर्शनों के लिए आए। मुनिवर के चरणों में शीश रखकर राजा ने आशीष पाया। उसी समय श्री राम और लक्ष्मण जो फुलवाड़ी देखने गए थे वहां आ पहुंचे। सुकुमार, किशोरावस्था तथा श्याम और गौर वर्ण वाले कुमारों का चित्त चुराने वाला रूप देख तथा उनके तेज से प्रभावित होकर सभी उठकर खड़े हो गए। श्रीराम की मधुर मनोहर मूरत देख विदेह जनक को अपनी तनमन की सुदबुद्ध न रही। उन्होंने उन दो किशोरों का परिचय पूछा जिन्हें तब तक मुनि विश्वामित्र ने बड़े स्नेह के साथ अपने पास बिठा लिया था। मुनिवर ने राजा जनक की जिज्ञासा शांत की। वे दोनों रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं जिन्हें ऋषि मुनियों के जप तप को निर्विघ्न करने के लिए महाराज ने उनके साथ भेजा है। दोनों भाई रूप, शील और बल के परम धाम हैं। महाराज जनक दोनों राजकुमारों को देखकर जैसे आघाते नहीं,

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। प्रस्तुत है संक्षिप्त रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 6:50 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बातें। विषय होगा बाजरा की संकर एवं संकुल प्रजातियां। वार्ताकार होंगे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। पुराने फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा भूले बिछड़े गीत कार्यक्रम में सुबह 7 बजे से। सुबह 7:31 पर ब्रज माधुरी कार्यक्रम में सुनिएगा रासलीला। आलेख होगा नवीन शर्मा का, प्रस्तुति होगी TN शर्मा की। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि हम आपको सुनवाएंगे सुबह 8:30 पर। 9 बजे स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आज का विषय है ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। वार्ताकार हैं डॉक्टर सुभाष जांगिड़। इनसे भेंट करेंगे देवराज कृष्ण दीक्षित। कार्यक्रम आबोहवा का प्रसारण समय सुबह 9:25 पर। विषय होगा मोबाइल विकिरणों के दुष्प्रभाव के सुझाव और उपाय। आलेख और वाचन होगा डॉक्टर RS मीणा का। गांधी चर्चा में आज का विषय है स्त्री सम्मान और शिक्षा विषय। प्रस्तुति होगी आगरा केंद्र की और समय होगा सुबह 9:30 का। 9:45 पर सुनिएगा सुगम संगीत। फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी दिन 11 बजे, प्रस्तुति देवराज कृष्ण दीक्षित की। 11:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम अर्पण।

मध्याह्न 12 बजे गीत बात और SMS। 12:30 पर हम आपको सुनाएंगे दामोदर शर्मा के गाए ब्रज लोकगीत। दोपहर 1:15 पर वनितालो कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय होंगे बरसात के मौसम में बच्चों की देखभाल, और दूसरा विषय होगा नशा मुक्त परिवार बनाने में महिलाओं की भूमिका। साथ ही सुनिएगा विनोद वार्ता अतिथि, वार्ताकार होंगे विजय यादव। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण समय अपराह्न 2:30 पर। शाम 5:30 पर युववाणी कार्यक्रम में आज की बात में विषय है सामाजिक बदलाव लाने में युवाओं की भूमिका, और अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति। साथ ही सुनिएगा प्रहसन 9-2-11, आलेख है योगेश अग्रवाल का और प्रस्तुति R.K. त्रिपाठी की।

शाम 6:15 पर ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय, किसानों के लिए कम लागत में अधिक उत्पादन के उपाय और जल भराव से फसलों को बचाने के उपाय। साथ ही वार्ता सुनवाई जाएगी, पशुओं में बरसात के मौसम में बीमारियां और बचाव। वार्ताकार होंगी डॉक्टर प्रभा कटियार। संध्या वंदन कार्यक्रम शाम 6:45 पर, 7:05 पर ब्रज साहित्य कार्यक्रम में सुनिएगा रेखा चित्र खेमा गुरु। वार्ताकार होंगे मनमोहन अभिलाषी, शाम सुहानी। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:31 पर।

रात 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे नौटंकी, अखंडता में एकता। लेखक होंगे विजेंद्र सिंह वर्मा, प्रस्तुति होगी नरेश मल्होत्रा की। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा ध्रुपद धमार गायन। कलाकार होंगे श्री कामोद मिश्र। ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

0: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। विषय है बाजरा की संकर एवं संकुल प्रजातियां। वार्ताकार हैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार सारस्वत।
1: किसान भाइयों, खरीफ की प्रमुख फसलों में बाजरा आता है और वर्षा पर आधारित जो क्षेत्र हैं जहां पर पानी की अच्छी व्यवस्था नहीं है वहां पर बाजरा की खेती करके किसान भाई खरीफ के मौसम में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बाजरा की दो तरह की प्रजातियां होती हैं, एक तो संकुल प्रजातियां और दूसरी संकर प्रजातियां। संकुल प्रजातियों से जो उत्पादन है करीब 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक मिल जाता है, जबकि संकर प्रजातियों से उत्पादन 20 क्विंटल से भी ज्यादा मिलता है और ये उत्पादन करीब 20 से लेकर के 28-30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पहुंच जाता है। संकुल प्रजातियां जो हैं पकने में करीब 85 से 90 दिन लेती हैं और संकर प्रजातियां भी लगभग इतना ही दिन लेती हैं। संकुल प्रजातियां में जो प्रमुख प्रजातियां हैं वो हैं ICM B155 और दूसरी प्रजाति है ICTP 8203, Raj 171, JBV2 और Pusa Composite 334। संकर प्रजातियों में जो प्रमुख प्रजाति है उसमें Pusa 23 है, HHB 67, Pusa 322, Pusa 322 और ICMS 356 जो किस्म है ये करीब 75 से 80 दिन ही पकने में लेती हैं। पायोनियर 7688 जो किस्म है 80 से 85 दिन पकने में ले लेती है। PB 116 और PB 112 जो किस्म है इनसे उत्पादन काफी अधिक मिलता है, लगभग 28 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक इन संकर प्रजातियों से उत्पादन लिया जा सकता है। और इन संकर प्रजातियों की जो पौधे की ऊंचाई होती है वो लगभग 170 से लेकर के 180 या 190 सेंटीमीटर तक जाती है, जबकि संकुल जो प्रजातियां हैं उनकी जो लंबाई है वो 190 से ऊपर ही जाती है और किसी किसी प्रजाति में तो ये 220 सेंटीमीटर तक जाती है, खास करके ICMB 155 में। अन्य प्रजातियों में ये 210 तक रहती है, लेकिन ICTP 8203 की जो लंबाई है 180 से 190 सेंटीमीटर तक होती है। तो इस प्रकार ये काफी उन्नतशील प्रजातियां हैं। बीज किसान भाइयों को संकर प्रजाति या संकुल प्रजाति का ही खरीद करके लगाना चाहिए, किसी विश्वसनीय दुकान से या सरकारी संस्था से लेकर के बीज की बुवाई करनी चाहिए। तो इस प्रकार बीज के ऊपर काफी कुछ उत्पादन निर्भर करता है, तो आप सही किस्म का बीज लेकर के अच्छा उत्पादन बाजरा से ले सकते हैं।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। वार्ताकार थे डॉक्टर देवेंद्र कुमार सारस्वत।

FM 102.2 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

0: अमेरिका सम्बद्ध देशान् लक्ष्यीकृत्य प्रक्षेपास्त्र प्रहारैः प्रत्युत्तरं दत्तवान्। ईरान देशस्य स्वास्थ्य मन्त्रालयः अवोचत् यत् अमेरिका देशेन कृतेषु दिनद्वयाक्रमणेषु न्यूनातिन्यूनं 14 जनाः मृताः। पादकन्दुक क्रीडायाम् अमेरिका देशस्य बॉस्टन नगरे आयोजिते प्रथमे प्रागुपान्त्यचरणस्य द्वन्द्वे फ्रांस दलं मैरिको दलं पराभूय उपान्त्यचक्रे प्रविष्टवत्। इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। हमारा अगला कार्यक्रम है भूले बिसरे गीत, जो आप सुनेंगे एक छोटे से अंतरा

अभी आप सुन रहे थे आज़ाद फिल्म का गीत लता मंगेशकर के स्वर में। गीत के बोल लिखे थे राजेंद्र कृष्ण ने और धुन बनाई थी सी रामचंद्र ने।

एसडी बर्मन के संगीत निर्देशन में अभी आपने सुना शमशाद बेगम को फिल्म बहार में। गीत को लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं पतिता फिल्म से, गाया है हेमंत कुमार और लता मंगेशकर ने, बोल हसरत जयपुरी की हैं, धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

गीता दत्त का गाया ये गीत अभी आप सुन रहे थे आर पार फिल्म से। शब्द रचना थी मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत रचना थी ओपी नैयर की।

रात को जी है रात को जी, बोले पपी हरा भेद खोले, तेरा मेरा तेरा हो भेद खोले, तेरा मेरा तेरा जी मैं।

इस गाने के साथ ही भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 MHz पर। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
2: प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा में 710 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 229 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, बुंदेलखंड क्षेत्र को प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक शहर बीड़ा के रूप में विकसित कर रही है सरकार। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में अनियमितता के मामले में पुलिस कार्रवाई तेज। 8 आरोपियों सहित संदेह के दायरे में आए परिजनों के 30 बैंक अकाउंट किए गए सीज। राष्ट्रीय महिला आयोग ने आईवीएफ केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का किया गठन। और प्रदेश के कई जिलों में भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने कल तक के लिए जारी किया है बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार।

0: विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, चेक और आयुष्मान कार्ड वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बुंदेलखंड क्षेत्र को यूपी के सबसे बड़े औद्योगिक शहर बीड़ा के रूप में विकसित कर रही है।
1: मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि हमारे बुंदेलखंड के विकास के लिए, यहां की विरासत के संरक्षण के लिए जो भी प्रोजेक्ट शासन के संज्ञान में आएगा, उसको आगे बढ़ा करके बुंदेलखंड को धरती का स्वर्ग बनाने का काम हम लोग करेंगे, आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे।
0: मुख्यमंत्री ने बांदा में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता के मामले में पुलिस की विशेष टीम ने जांच तेज कर दी है। पुलिस ने आठों आरोपियों सहित संदेह के दायरे में आए उनके परिजनों और रिश्तेदारों के करीब 30 बैंक अकाउंट सीज कर दिए। साथ ही पुलिस कुछ अन्य लोगों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस बीच श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने बताया कि ट्रस्ट द्वारा अब ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिससे भविष्य में कोई अन्य घटना दोबारा न हो सके।
2: इस बात का विश्वास रखिए कि हम लोग इस कार्य को अब अधिक दक्षता के साथ करेंगे, किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे और जब यहाँ का सीईओ नियुक्त हो जाएगा उसके पश्चात तो सारी कार्य पद्धति में एक निखार आएगा।
0: श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए जारी किए जाने वाले वीआईपी पास की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। विशेष पास की नई रेफरेंस आईडी अभी तक जारी नहीं की गई है। ऐसे में पहले से जारी किए गए विशेष पास मान्य किए जा रहे हैं, लेकिन नए पास अब नई रेफरेंस आईडी जारी होने के बाद ही बन सकेंगे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कल मिर्जापुर में पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा की। मीडिया से बात करते हुए श्री चौधरी ने अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले पर कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी।
3: मंदिर बनने के बाद उसका एक प्रभावित ट्रस्ट बना हुआ है, ट्रस्ट के ही देख रेख में होता है, सरकार का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है और निश्चित तौर से जो भी ट्रस्ट का हेड है वो भी जवाबदेह होगा और जो जांच में दोषी पाया जाएगा निश्चित तौर से कड़ी से कड़ी सजा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति आज से 15 जुलाई तक लखनऊ दौरे पर रहेगी। एक रिपोर्ट।
4: इस अध्ययन दौरे का उद्देश्य क्षेत्रीय स्तर पर संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना तथा विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श करना है। पीपी चौधरी की अध्यक्षता में गठित संयुक्त संसदीय समिति इस अध्ययन दौरे के दौरान उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों, राज्य प्रशासन, वित्तीय एवं शैक्षणिक संस्थानों, शिक्षाविदों, राज्य बार परिषदों, संबंधित उच्च न्यायालय के अधिवक्ता संघों, विभिन्न पेशेवर संगठनों तथा नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करेगी। समिति के अध्ययन दौरे में विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक और सार्थक विचार विमर्श होने की अपेक्षा है। लखनऊ

0: मुमताज अली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 की प्रोविजनल उत्तर कुंजी को लेकर अभ्यर्थी 14 जुलाई तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने यह जानकारी दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी ART क्षेत्र में अनियमितताओं के कारण किया गया। यह समिति IVF क्लिनिक, ART केंद्रों और गैमिट बैंकों को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे और संबंधित कानूनों की व्यापक समीक्षा करेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशा मेनन इस विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता करेंगी। प्रदेश सरकार की ओर से 12 जुलाई को 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इस महाभियान के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में एक पेड़ मां के नाम लगाएंगे। प्रदेश के वन राज्य मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा कि सरकार हरित क्षेत्र बढ़ाने को लेकर प्रतिबद्ध है।
2: 35 करोड़ का लक्ष्य बड़ा है, लेकिन उत्तर प्रदेश और माननीय योगी जी की सरकार और यहाँ की जनता के लिए बहुत बड़ा नहीं। हमने पिछली बार भी 35 करोड़ का टारगेट था तो हमने 36 करोड़ पेड़ लगाए थे एक ही दिन में, तो हमारे लिए 35 करोड़ का लक्ष्य बड़ा जरूर है लेकिन बहुत बड़ा नहीं है, हम इससे कहीं ज्यादा पेड़ लगाए।
1: प्रदेश के कई जिलों में कल से रुक रुक कर बारिश हो रही है। कुछ जिलों में भारी वर्षा के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। कल लखनऊ, फर्रुखाबाद, मुजफ्फरनगर, संभल, नोएडा, हापुड़, अयोध्या, चित्रकूट, बिजनौर और बस्ती सहित कई जिलों में मध्यम से भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। बारिश और जलभराव के चलते संभल, गाजियाबाद, हापुड़ और मुजफ्फरनगर में जिला प्रशासन ने स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया। उधर अमरोहा में बारिश और बैराज से पानी छोड़ने के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे कई गांवों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पीलीभीत जिले में कई दिनों से हो रही वर्षा के कारण शारदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। नदी के बहाव क्षेत्र में जलभराव से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए वहां बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं। लगातार बारिश के कारण गंडक नदी कुशीनगर के खड्डा में खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि कल तक के लिए प्रदेश में कई स्थानों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
3: वेस्ट यूपी में हैवी टू वेरी हैवी रेन के साथ कहीं कहीं एक्सट्रीमली हैवी रेन हुई है, और अगर आगे आने वाले दिनों में बात करें तो ये उत्तरोत्तर मध्य उत्तर प्रदेश और उसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर आगे बढ़ेगा। यद्यपि यह उत्तरोत्तर कमजोर होता जाएगा, परंतु इसके प्रभाव से सेंट्रल यूपी की तरफ आने पर और थोड़ा कमजोर होने पर वर्षा की मात्रा में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन भारी से बहुत भारी वर्षा का दौर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 जुलाई को भी जारी रहेगा, और इसके बाद 11 जुलाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसमें व्यापक तौर पर कमी आ जाएगी और तराई इलाकों में या कहीं कहीं भारी वर्षा तक सीमित हो जाएगा।
1: सोनभद्र जिले के पीपरी थाना क्षेत्र में मड़िया गांव के पास कल शाम एक ट्रक की चपेट में आ जाने से बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा में 710 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 229 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, बुंदेलखंड क्षेत्र को प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक शहर बीडा के रूप में विकसित कर रही है सरकार। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में अनियमितता के मामले में पुलिस कार्रवाई तेज। 8 आरोपियों सहित संदेह के दायरे में आए परिजनों के 30 बैंक अकाउंट किए गए सीज। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का किया गठन। और प्रदेश के कई जिलों में भारी वर्षा से जनजीवन

0: जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने कल तक के लिए जारी किया है बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: अब आरंभ हुए है आज को ब्रज माधुरी कार्यक्रम।

भैयाओं, यह कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं रासलीला। रासलीला के अंतर्गत गुड़िया लीला। आलेख है नवीन शर्मा को, प्रस्तुति है TN शर्मा की।

0: मैया।
1: हाँ बेटी राधा।
0: मैया मैया मैं गुड़िया से खेलूंगी, मुझको सुंदर सी गुड़िया बनाए दे।
1: अच्छा बेटी।
0: हाँ और उनको सुंदर सुंदर वस्त्र गहने पहनाए दीजो।
1: हाँ मेरी लाडली बेटी, अब ही बनवाए दूंगी।
0: और मैया तेरे नगर में जो सबसे सुघर चतुर सुनार होए ना, बाकी बुलवाए के गुड़ियान के ताई रतन जटी तो सोने की चौकी बनवाए दीजो।
1: अच्छा बेटी और कहा।
0: और मैया और ता चौकी पे मोतिन की झालर डार जारी को बिछैया बिछाई के, तब बापे मैं अपनी हाथन सो गुड़िया गुड्डान को बैठाऊंगी।
1: अच्छा गुड़िया गुड्डा बैठावेगी।
0: हाँ,
1: अच्छा बेटी और कहा।
0: और मैया उन गुड़िया गुड्डान को ब्यारा चाहूंगी।
1: और ब्याह करेगी।
0: हाँ मैया।
1: अच्छा
0: मैया बाकी ताई सब सामग्री मंगाए दे। और मैया हाँ मेरी ललिता अधिक सब सहेलियों को बुलाए के मंगल गीत गवाए दीजो।
1: तो अच्छा बेटी ऐसा ही करूंगी।

0: मैया, और मैया सुंदर सुंदर उजिरे उजिरे पकवान करके मेरी सखिन की जवानार करियो, और काजे बाजे बजवाए के ब्याह को उत्सव भी मनाइयो मैयो।
1: अच्छो बेटी देख, मैं अबे सब तैयारी करी दूँ, हैं? और जब तक हाँ। तू परी में खेल।
0: अच्छा।

हाँ, धन है श्री विश्वान जी को, धन है कीरत जी को, जिनकी गोद में ये खेले हैं। धन है, धन है। नारायण नारायण।

0: मैया, ओ मैया,
1: कहाँ है बेटी?
0: मैया, आज एक नई बात सुनाओ। रानी तेरी पारी पे एक भिक्षुक आयो, मोहि देख ही बिरमियो कछु जग जल ठरकायो। मैया, मैं अभी पारी में खेल रही थी, तब एक भिक्षुक आयो।
1: अच्छा?
0: हाँ, मुकु देख के कछु देर ठाड़ो रहियो और अपनी नैनन सो जल ढरकाए वे लगियो।
1: और बेटी राधा बने कहाँ गई?
0: मैया, वो बड़े ही प्रेम सो राधा राधा गायवे लगियो और तेरे और बाबा की बहुत ही बड़ाई करी वाने। मैया, इतु तो सबकी दीख बचाए, हमारे द्वार को दंडौत करी वाने।
1: अच्छा?
0: हाँ मैया, और बाकी कंधा पे द्वे तुमा को एक जंत्र धरियो हो।
1: तुमा को जंत्र?
0: हाँ मैया।
1: अच्छा?
0: ताकु मधुरे सुलन सो बजाए के बाने गायो हो।
1: और का भयो बेटी राधा?
0: मैया, वो मेरे पामन की ओर देख के तो भागरो सो है गयो।
1: अच्छा?
0: हाँ मैया, और बाने केवेर मेरी परिक्रमा करी।
1: परिक्रमा करी बेटी?
0: हाँ मैया, परिक्रमा करी। और मैया बाकी देह कांपवे लगी और आंखें सो, मैया आंखें सो आंसू की धारा बहवे लगी बाकी।
1: अरे बेटी राधा, तो तू बाय यहाँ जो नहीं लेवाई लाई?
0: मैया, मैंने बाकू बहुत हेला दी, पर बू तो अनसुनी करके चले गयो। और मैया, मैंने सब सखिन सो पूछियो, परंतु बाकू काहू ने नाम ही ना बतायो।
1: भाग बली मेरी लाडली, काहे न बिरमायो, मोद से सखी पठाए के ते चो ना बुलवायो। अरे मेरी बड़े भागनी लाडली बेटी, तेने बाकू रोको चो ना, मेरे ढिंग का उस सखी को पठाई देती तो मैं बाकी घनी सेवा करती।
0: तो मैया, तू वाय कहा देती?
1: देती रत्नन थार भर और वा मन फायो, भिक्षुक खाली हाथ फिर गयो, सुन जिए अकुल आयो। बेटी, आज मेरे द्वारे सो भिक्षुक खाली हाथ चलो गयो, या बात को सुन के मेरो चित अकुलाए रहो है। मैं बाकू रत्नन सो भरे थार देती।
0: तो मैया, तू बाकू जाने है का?
1: अरे मेरी लाडली, कोई द्वारे पे आवे तो बाको आदर करनो अपना परम धर्म है। और देख, मुए ऐसो प्रतीत होवे है कि जे बुई बाबा हो जो तेरे जन्म दिवस पे आयो।
0: अच्छा मैया।
1: देख बेटी राधा, गाने जो जो बात कही वो सब सांची भई है।
0: मैया, बाको नाम कहा हो?
1: बेटी राधा, बाको नाम है नारद, ब्रह्मा अच्छा। के पुत्र हैं वो, उनको तो सारो जग जाने। तेने जो जो लक्षण बताए, 2200 मैंने पहचाने हैं कि वो बोई बाबा हो।

0: मैया, तेने बाकी कौन कौन सी बात को परचियो पायो है?
1: देख बेटी राधा, देख जब तू छोटी हती ना, तब तू दूध नहीं पीमती। मैंने इनको तेरो हाथ दिखायो जिन बाबा को।
0: अच्छा मैया,
1: तब इन्हन ने तेरे घरे में गंडा बांध दियो जो अब ताई है तेरे घरे में। अच्छा। और देख दवाई ते तू दूध पीवे लगी और बाई दिना से तू डर पियो ना है।
0: अच्छा,
1: तेरे बाबा सो तो इनको बड़ो ही हित है और ताई सो तो कू देख के जिसे हायो है।
0: मैया, मैं तेरी सबरी बातन को साची मानूंगी, पर यूं बताए दे
1: कहा
0: कि उनने मुंह को देख के नैनन सो आंसू क्यों बहाए?
1: देख बेटी राधा, अब तू इन बातन ने तो छोड़ और इन गुड़ियां सो खेल ले, मैं इनके ताई पकवान कर लाऊं।
0: अच्छा मैया,

0: ढंग आवत।
1: राधा, ओ राधा,
2: कहाँ है श्री रामा भैया?
3: राधा क्या कर रही है गुड़िया से खेल रही थी के? अरे नेक मुंह दिखाइयो, कैसी गुड़िया है तेरी?
2: आहा, जा भाग जा, तो ना दिखाऊंगी मैं अपनी गुड़िया।
3: ना दिखावेगी?
2: ना।
3: अरे राधा दिखाते हैं छोटी सी गुड़िया, दिखा दे।
2: ना दिखाऊंगी, ना दिखाऊंगी, ना दिखाऊंगी।
3: देख दिखा दे।
2: नहीं।
3: अच्छा, अरे गपकुआ, देख राधा ना दिखा रही।
4: अरे सीधा ये तो अच्छी तरीके दिखावेगी डटोरे ने।
3: देख कब मेरो तेरो दाम लगेगा बट्टे।
4: देख जा जामन देने।
3: तो भैया
2: हां, जब तेरे दाम लगे तब लगा लीजो, मैं भी देखूं। हां चलो मैया ते पकवान ले आओ।
3: अरे गपकुआ,
4: कहाँ कह रहे सीधामा?
3: देख राधा तो मांग गई है, कहाँ
4: वो गई पकवान ले भी। यार अब कदे ऐसी में अपनो काम चालू।
3: भैया देख, मैं तो लव छोटी गुड़िया है।
4: हाँ।
3: और तू ले बड़ी गुड़िया है।
4: भैया बड़ी तो मैं लूंगू।
3: देख भाई लड़ाई आ जाएगी।
4: देख बड़ो मैं हूँ, बड़ी मैं लूंगू, तू छोटो तू छोटी ले।
3: तो की जाओ तीना भाई,
4: ले चल जल्दी थी।
3: मेरी तेरी आज तक यारी है गई,
4: पहले गुड़िया उठा ले, भगले वो आमती होगी।
3: और फिर क्या करेंगे राधा पे, फिर मैया पे, ते माँ का मिश्री
4: खा गए।
3: चल भाई।
2: हाय, यहाँ सब कहाँ गई मेरी गुड़िया? कौन ले गया मेरी गुड़िया को?
5: मेरी गुड़िया को गई, कोई ले गया मेरी गुड़िया को। मैया, ओ मैया।
6: बेटी, ओ बेटी, काय को रो रही है?
5: मैया
6: का बात है गई?
5: मैया चप्पल श्री दामा मेरी गुड़िया को चोर के ले गयो है। और जो सब में सुंदर गुड़िया है थी ना, वाऊ को ले गयो है।
6: जान दे बेटी, गुड़िया जान दे, और मंगा देंगे। तू रो मत ना, अच्छो देख ना। चल भोजन कर ले है मेरी बेटी राधा।
5: नहीं नहीं, भोजन तभी करूंगी मैया, लाए दे गुड़िया मेरी। ना जानो वो चप्पल ने कही ठोरे बगेरी। मैया भोजन तो मैं तभी करूंगी जब तू मेरी गुड़िया मंगाए के देगी। ना जाने वह उदमी चोर ने मेरी गुड़िया कहाँ डारी होएगी।
6: बेटी देख, अपने भैया को चोरी ना लगा में, तू ऐसी हट मत करो करे। देख राधा, अब तू सियानी है गई है ना, तेने कैसे जानी की बोई ले गया श्री दामा ले गया है?
5: गुड़ियान को मंदिर तहा वह दे तो फेरी, आई दे की हरे हरे हंसियो ठाड़ो मानेरी। मैया गुड़ियान के मंदिर की इत बितु को वह फेरी दे रहे हो, ठाड़ो ठाड़े हंसी रहे हो, निश्चय वही न चुराई है। भले तो बुलाए की पूछ ले तो विश्वास ना हो। तो
6: मैं अमार बुलाऊं? अरे सिरदाम।

0: खाते मैया माखन मिश्री देगी का?
1: हाँ दऊंगी माखन मिश्री। देख बेटा अपनी प्यारी बहन को काहे को खिजावे तू? देख तू तो बड़ो राजा बेटा है नो।
0: देख मैया हम पीव तो दूध इन दियो भाजन गेरी, मैं आगी गुड़िया हरी अब के तो तेरी। मैया एक दिन दूध पी रहे हो, राजा ने मेरा कटोरा फैला दियो दूध को।
1: अच्छा
0: आज लगी हो मेरो दाव सु में लगा आगी गुड़िया छोड़ के।
1: चोरी बेटी राधा तेने सीदामा को दूध काहे को ढुलकायो?
2: तो जी मोते उधम क्यों करो करे है?
1: तो नाए बेटी देख दूध को नाए फैलायो करे, हम ब्रजवासिन पे गोई तो धन है और दूध ही गोरस्ते तो हम जी में ही है और हम पे धरो का है। देख अब या बात को सदाई ध्यान राखियो। अच्छो कि दूध ही तो हमारो धन है।
2: अच्छा मैया।
1: अच्छा बेटा राधा की गुड़िया लाए दे, अब ये कब दूध ना फैलावे?
0: ना फैलावेगी ना।
1: अब देख सीधा मैं तो माखन दूंगी। अच्छो
0: अच्छो तो ले ले अपनी गुड़िया।

बाधा भूतल प्रगति तब ते विपिन जब ते विधि को मान हन्यों।

रासलीला के अंतर्गत अभी आपने सुनो गुड़िया लीला। आलेख था नवीन शर्मा को, प्रस्तुति थी टी एन शर्मा की। और भैया आओ अब आपको सुनवा में यह लोकगीत।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद

0: बहुत आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की दो दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। अमरीकी और इजरायली हमलों में उनकी मृत्यु के 4 महीने बाद हुआ अंतिम संस्कार। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई है। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ है। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में 3री ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
0: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
2: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
0: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया। दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा क्रिकेट सहयोग, खेल अवसंरचना, आईपीएल, बीबीएल साझेदारी और 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक और भारत की 2036 में ओलंपिक के लिए बोली सहित प्रमुख वैश्विक खेल आयोजनों से पहले सहयोग पर केंद्रित थे। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। उन्होंने श्री टेलर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ होते संबंधों और भविष्य में आने वाले अवसरों पर सार्थक चर्चा की। एक रिपोर्ट।
3: यह बैठक इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि ऑस्ट्रेलिया की संसद में भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का व्यापक और मजबूत समर्थन प्राप्त है। रणनीतिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यूजीलैंड का सच्चा मित्र बताया। दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि यह सहयोग राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिखर वार्ता के प्रमुख निष्कर्षों के अनुरूप श्री टेलर ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के निर्यात का समर्थन किया। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
2: श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंध

0: के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए ऑकलैंड पूरी तरह तैयार है। यहाँ बसे भारतीय समुदाय के साथ साथ स्थानीय न्यूजीलैंड वासी भी पारंपरिक माओरी अभिवादन किया ओरा मोदी कहकर उनका स्वागत करने को उत्सुक हैं। महिलाएं, युवा, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और विभिन्न सामुदायिक संगठनों के सदस्य इस यात्रा को भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत मान रहे हैं। उनका विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा व्यापार, शिक्षा, निवेश, खेल और सांस्कृतिक सहयोग को नई गति देगी। प्रवासी भारतीयों का कहना है कि करीब 4 दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आगमन उनके लिए गर्व, सम्मान और भावनाओं से जुड़ा एक ऐतिहासिक पल है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड से।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मेलन में उपस्थित रहे।
4: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत पलायन रोकने, रोजगार सृजित करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का शत प्रतिशत कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। भारत म्यांमार सीमा पर 31,000 करोड़ रुपए की लागत से बाड़ लगा रही है। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने और वाहन के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने संबंधी शंकाओं को भी खारिज किया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता UCC का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल महाराष्ट्र विधानसभा में इसकी घोषणा की। एक रिपोर्ट।
5: सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली ये समिति अगले 6 महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। इसके आधार पर सरकार आगामी

0: शीतकालीन सत्र में नागपुर में विधानसभा और विधान परिषद में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। न्यायमूर्ति रंजना देसाई इससे पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की भी अध्यक्ष रह चुकी हैं। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना था। इसके बाद गुजरात ने अपना यूसीसी कानून पारित किया, जबकि असम इस वर्ष ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में अंतिम विदाई दी गई। हजारों समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित हुए। ईरानी मीडिया ने बताया कि उनके सबसे बड़े बेटे सैयद मुस्तफा खामनेई ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की। इस वर्ष 28 फरवरी को अमेरिका इसराइल के हमलों में आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई थी। और अब खेल खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहले हाफ में कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट और उस्मान डेम्बेले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। विंबलडन टेनिस में महिला सिंगल्स का फाइनल चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। लिंडा नोस्कोवा ने सेमीफाइनल में यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक को हराकर पहली बार विंबलडन और ग्रैंड स्लैम फाइनल में जगह बनाई है। वहीं कैरोलिना मुचोवा ने अमेरिका की कोको गॉफ को हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद फरहत। भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीदने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, भारत को ऑस्ट्रेलिया करेगा यूरेनियम की आपूर्ति, गगनयान मिशन में भी देगा साथ। जनसत्ता के शब्द हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया में रक्षा करार, व्यापार सौदे पर तेजी से काम। अंतरिक्ष में भेजा दुनिया का पहला कमर्शियल परमाणु संचालित सैटेलाइट। सफल लॉन्चिंग, अंतरिक्ष में ऊर्जा के लिए सूरज पर नहीं रहेंगे निर्भर, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। आसमान बरसा, एनसीआर थमा, 3 साल बाद दिल्ली में एक दिन में हुई सबसे ज्यादा बारिश। नवभारत टाइम्स ने कल बारिश से बेहाल लोगों की अलग अलग तस्वीरें प्रकाशित की हैं। पत्र लिखता है, सड़कों और अंडरपास में भरा पानी, कई जगह लगा जाम। दैनिक भास्कर ने बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व के खुलने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, पहली बार बीजापुर के जंगल में सफारी, 40 साल जिन नक्सलियों ने आने से रोका था, वहीं पर्यटकों को घुमाएंगे, प्रशिक्षण देकर नक्सलियों को गाइड बनाने की है तैयारी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर पश्चिम एशिया पर फिर से अस्थिरता के बादल मंडराने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, आक्रामक ट्रंप से अस्थिर दुनिया। पत्र लिखता है, जब तक व्यापक बातचीत के जरिए हॉर्मुज जलमार्ग का विवाद नहीं सुलझाया जाएगा, तब तक अमेरिका और ईरान दुनिया के अन्य देशों की परेशानी बढ़ाते रहेंगे।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की 2 दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा, द हेडलाइंस। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया अग्री टू ऑपरेशनलाइज देयर सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन अग्रीमेंट, पेविंग द वे फॉर यूरेनियम एक्सपोर्ट्स टू इंडिया।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी, दूसरा कोई मैच है क्या?
4: ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके।
3: हाँ यार, उम्र हो जाती है तो रनर तो लगता ही है, पर बैंकिंग में नहीं।
5: वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं, डिफरेंटली एबल्ड है और आप बैंक नहीं जा सकते, तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर।
3: सीनियर सबसे पहले, आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
7: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
6: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि लेकर हाजिर हूँ मैं कुसुम त्रिवेदी। स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में।

माई नेम इज़ खान। इस फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे अदनान सामी, शंकर महादेवन और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे थे निरंजन अयंगर ने, धुन बनाई थी शंकर एहसान लॉय ने। आइए बढ़ते हैं सुरीले सफ़र पर आगे और आपको सुनवाते हैं ये गीत लगान फिल्म से।

लगान फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना उदित नारायण, अलका याग्निक, सुखविंदर और साथियों की आवाज़ों में। गीत को लिखा था जावेद अख्तर ने, धुन बनाई थी ए आर रहमान ने। अगला गीत

धीरे के इस गीत की धुन बनाई थी शांतनु मोइत्रा ने। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

ये अगला गीत शफाकत अमानत अली की आवाज में, फिल्म का नाम तनु वेड्स मनु।

जतिन ललित के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे हैं सोनू निगम और सुनिधि चौहान को फिल्म फना में। गीत को लिखा है प्रसून जोशी ने।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
2: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
3: आराम से मैडम।
2: क्या
3: आराम से पहुँचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेस।

0: से जो जुड़ा हुआ है. नो ट्रैफिक, नो टेंशन.
1: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ.
2: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर. सुबह के 9 बज चुके हैं और आइए अब आपको स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत सुनवाते हैं ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, इस विषय पर वार्ता.

0: हमारे साथ हैं वरिष्ठ अस्थि रोग विशेषज्ञ जॉइंट रिप्लेसमेंट कंप्यूटर नेविगेशन डॉक्टर सुभाष जांगीर। डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार
0: जी। सबसे पहला प्रश्न डॉक्टर साहब श्रोताओं की ओर से मैं आपसे करना चाहूंगा कि आमतौर पर लोग जोड़ों के दर्द से काफी परेशान रहते हैं, तो ये जोड़ों का जो दर्द है, चाहे वो घुटनों का दर्द हो या कोहनी का दर्द हो या कहीं भी जो जॉइंट्स हैं हमारे, उनमें दर्द आमतौर पर लोगों को रहता है, तो किस वजह से ये दर्द होता है और इससे किस तरह से बचा जा सकता है?
1: देखिए, जोड़ों का दर्द के लिए दो तरह की बीमारियां मेन होती हैं
0: जी।
1: एक तो वो बीमारी होती है जो कम अवस्था में शुरू हो जाती है, कम एज में शुरू हो जाती है, जिसमें कि शरीर के सभी जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है और सुबह के टाइम में यूजली ज्यादा होता है। वो उसको हम बोलते हैं आम लैंग्वेज में गठिया बाय बोलते हैं और हमारी लैंग्वेज में रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं
0: जी।
1: इसके लिए स्पेशल दवाइयां होती हैं, कुछ टेस्ट करने के बाद वो शुरू करते हैं और इसको कंट्रोल पाया जा सकता है। उम्र के साथ साथ ये बीमारी बढ़ती जाती है और अल्टीमेटली जो है जैसे जैसे एज बढ़ती है तो इसके ऊपर एज वाला आर्थराइटिस जो कि एल्डरली लोगों को होता है, जो 50 55 60 उम्र के बाद होता है
0: जी जी,
1: वो इस पे हावी हो जाता है। जो उम्र के साथ जो आर्थराइटिस और या घुटनों का दर्द या जोड़ों का दर्द होता है उसमें भारत में सबसे ज्यादा जो है जोड़ों का जो है घुटनों का दर्द पे असर पड़ता है, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ एक्टिविटी लेवल लोगों का बहुत कम है, एक्टिव लाइफ नहीं जीते हैं, तो
0: भाग-दौड़ कम करते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं लोग, इस वजह से भी जोड़ों के दर्द की समस्या रहती है।
1: एक्सरसाइज कम करना, वजन का बढ़ना
0: जी जी,
1: और उसके वजह से जो है हमारी जोड़ों में जो स्ट्रेंथ होती है मसल्स की वो कम हो जाती है, तो वो दर्द करना शुरू करता है।
0: यानी बॉडी के जो मूवमेंट हैं उनका मूवमेंट पूरा होना चाहिए।
1: अगर हम आइडियल बात करें तो हर एक जॉइंट का दिन में कम से कम 10 बार फुल रेंज ऑफ मोशन जो उसका होता है उतना स्ट्रेचिंग होना चाहिए ताकि उसका मूवमेंट बना रहे। अगर मूवमेंट नहीं बना रहेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर आपका वजन बढ़ता जाएगा तो सारा का सारा लोड घुटने पे आएगा। अगर आपका बॉडी वेट 1 किलो बढ़ता है तो घुटने पे उसका लोड 4 किलो बढ़ जाता है। सो इमेजिन करिए कि जिसका जो ओबीज है, जो मोटा है, उसके घुटनों पे कितना लोड पड़ रहा है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: इसके अलावा जो हिप जॉइंट की प्रॉब्लम होती है कॉमनली, वो उसके दो मेन कारण होते हैं। एक तो उम्र के साथ जो खराब होता है, कूला जो खराब होता है, दूसरा होता है एक तरह का स्मोकिंग जो एक बहुत कॉमनली आजकल आदत बन गई है,
0: लोग धूम्रपान करते हैं,
1: धूम्रपान करते हैं, और दूसरा बॉडी बिल्डिंग के टाइम पे कुछ लोग स्टेरॉइड खा लेते हैं।
0: अच्छा,
1: बॉडी जल्दी बनाने के चक्कर में वो जो है हिप जॉइंट की बॉल में खून का दौरा खत्म कर देती है
0: जी,
1: और वो डेड हो जाती है
0: जी।
1: उस कंडीशन में हमको करीब 20 22 और 25 साल की उम्र में भी जो है हिप जॉइंट को रिप्लेस करना पड़ता है
0: जी जी।
1: तो ये जो मेन हमारे बेसिकली ये सब चीजें जो है व्यसन से जुड़ी हुई हैं
0: जी।
1: अगर व्यसन पे कंट्रोल किया जाए और अपने हेल्थ लाइफस्टाइल को जिया जाए तो प्रॉब्लम नहीं आएगी
0: जी। यानी कहने का आशय ये है कि हम एक तो प्रॉपर एक्सरसाइज लें, यानी अपने जो शरीर के जो जोड़ हैं यानी उनका मूवमेंट प्रॉपर होना चाहिए, यानी उचित तरीके से उनका दिन में, जैसा आपने बताया कि 10 बार हर जॉइंट का मूवमेंट आवश्यक होता
1: पूरा
0: है,
1: मूवमेंट होना चाहिए
0: जी। डॉक्टर साहब अगर इतनी सावधानी रखने के बावजूद भी अगर परेशानी होती है जोड़ों में, घुटनों में, हिप्स में, तो क्या किया जाना चाहिए?
1: देखिए, हर एक जॉइंट को जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है उसको हम डिफरेंट स्टेज अवस्थाओं में डिवाइड करते हैं
0: जी।
1: जो अर्ली स्टेज होती है जिसमें कि स्टेज 1 और 2, उसमें हमारे पास दवाइयां हैं, हम पेशेंट को बोलते हैं कि अपनी जिंदगी की कार्यशैली को बदलो
0: जी,
1: ताकि उस पर कंट्रोल किया जा सके, रेगुलर एक्सरसाइज और दवाइयों के साथ उन पे काबू पाया जा सके
0: जी।
1: हालांकि एक बार अगर आपकी गाड़ी ढलान पे उतर चुकी है तो उसको रोकना असंभव हो जाता है, लेकिन उसको कंट्रोल किया जा सकता है कि आप धीरे धीरे डाउनफॉल में जाए,
0: स्पीड कम की जा सकती है।
1: सो जब स्टेज 1 और 2 में होता है तो हम दवाइयों से कंट्रोल करते हैं और कार्यशैली में चेंज करते हैं। जब स्टेज इसके आगे बढ़ जाती है तो घुटनों में हम इंजेक्शन लगा सकते हैं, और जब इससे भी आगे बढ़ जाती है स्टेज 4 या जो आखिरी स्टेज होती है उस स्टेज में फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट ही एक इलाज बच जाता है
0: जी जी। यानी ये स्टेज है कि जॉइंट को रिप्लेस करना ही होगा।
1: हाँ, आखिरी स्टेज जिसको हम बोलते हैं, जब पेशेंट जब पूछता है कि कौन सी स्टेज, हम बोलते हैं ये स्टेज 4 या आखिरी स्टेज है
0: जी।
1: उसके बाद भी कई लोग चलते रहते हैं भारत देश में, इससे डरते हैं, उसके बाद फिर वो कॉम्प्लिकेशन स्टेज में पहुंच जाती है
0: जी।
1: उसके बाद उनको उतना अच्छा आराम नहीं मिलेगा सर्जरी के बाद जितना कि उनको स्टेज 4 पे मिल सकता है
0: जी,
1: क्योंकि उसके बाद कॉम्प्लिकेशन होने शुरू हो जाते हैं।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात की, जॉइंट रिप्लेसमेंट जो एक अत्याधुनिक तकनीक है अपने जो अंग हैं उनको रिप्लेस करने की, तो ये तकनीकें कौन कौन सी हैं, इस विषय में जानना चाहेंगे और इसके क्या क्या फायदे हैं?
1: जॉइंट रिप्लेसमेंट मैं जो पिछले कई सालों में जो जिस

0: से इम्प्रूवमेंट हुआ है,
1: जी जी
0: उसमें दो चीजों में इम्प्रूवमेंट हुआ है। पहला कि जो इस तरह का हम इम्प्लांट यूज करते हैं बॉडी में लगाने के लिए, उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हुआ है कि उसकी लाइफ बढ़ाई जाए।
1: जी
0: क्योंकि बहुत से यंग पेशेंट भी आज की डेट में जो है उनको रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ रही है, तो आज की डेट में हमारे पास ऐसे इम्प्लांट्स अवेलेबल हैं जो इनकी लाइफ 30 साल से ऊपर यूएसए ने अप्रूव किया है।
1: जी जी जी
0: इट्स नॉट कि किसी भारतीय, उसने यूएसए ने वर्ल्ड वाइड उनका अप्रूवल दिया है कि वो 30 साल से ज्यादा चलते हैं। दूसरा जो डेवलपमेंट है वो ये है कि इसी इम्प्लांट को जो 30 साल से ऊपर की लाइफ है उसको सही तरीके से बॉडी में फिट किया जा सके।
1: जी
0: उसके लिए कंप्यूटर नेविगेशन टेक्निक है, उसमें थर्ड जनरेशन NAV3 और आज उसके साथ हमको करते हुए 5 साल हो गए हैं।
1: जी जी
0: उसके साथ जो इम्प्लांट की लाइफ है वो आपको पूरी की पूरी मिलेगी।
1: अच्छा,
0: अगर हम कन्वेंशनल टेक्निक से करते हैं तो वहां पे जो सर्जन है वो अपना आई बॉलिंग से या अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जॉइंट को बोन पे फिट करता है। यहाँ पे जॉइंट का अलाइनमेंट और बैलेंसिंग
1: जी
0: जो है कंप्यूटर से डिसाइड होती है। तो जो उस पर्टिकुलर पेशेंट, उस पर्टिकुलर मरीज के लिए जो बेस्ट है और उसके बॉडी में सही है, उसी हिसाब से वो सेट होता है और उसके साथ उसको पूरी लाइफ मिलती है।
1: जी, यानी ये टेक्निक जो है, नई टेक्निक पूरी तरह से फायदेमंद है रिप्लेसमेंट करवाने।
0: इसका सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि आपने कार के टायर का बैलेंसिंग अलाइनमेंट किया।
1: जी जी,
0: अगर अच्छे से करा के रखोगे तो टायर की लाइफ 1 लाख किलोमीटर है।
1: बिल्कुल।
0: और अगर उसको सही से नहीं रखोगे तो 30-35 हजार में आपको टायर बदलवाने पड़ेंगे।
1: जी जी,
0: तो बिल्कुल वही चीज है कि आपने अच्छे से अच्छा टायर तो लगवा लिया लेकिन वो सही तरीके से
1: नहीं लगा है, बैलेंस उसका ठीक नहीं रहा
0: तो
1: है,
0: वो तो उसकी लाइफ भी नहीं
1: मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो वो अच्छा इम्प्लांट सही टेक्निक के साथ लगना चाहिए, तभी वो आपको पूरे लाइफ देगा।
1: जी अच्छा डॉक्टर साहब, जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाने के बाद एक व्यक्ति की जीवन शैली में, उसकी कार्य शैली में क्या सुधार आते हैं, क्या परिवर्तन आते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं।
0: अगर आप इन्हीं सब मरीजों की लाइफ ऑपरेशन से पहले देखोगे तो उनका चलना फिरना दुभर हो जाता है।
1: जी,
0: वो
1: जी।
0: अपना मॉर्निंग वॉक नहीं करते हैं, सोशल लाइफ नहीं जीते हैं कि भाई कहीं शादी वादी में जाना है तो कहते बच्चे तुम लोग हो, हम नहीं जा रहे हैं। ये सब चीजें चेंज हो जाएंगी, बदल
1: अच्छा।
0: जाएंगी। वो अपना जिंदगी में सुबह शाम वॉक करना स्टार्ट करेंगे, सीढ़ियां चढ़ने उतरने में कोई दिक्कत नहीं है, स्विमिंग भी कर सकते हैं, साइकिलिंग भी कर सकते हैं। जो दो चीजें हम मना करते हैं कि क्योंकि जो इम्प्लांट है ये मेटल के एलॉय के बने होते हैं, मिश्र धातु के बने होते हैं, तो हम ये कहते हैं कि इम्पैक्ट वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, जैसे कि जंप
1: अच्छा
0: और रन।
1: जी,
0: रनिंग दौड़ना और जंप करना हम मना करते हैं कि जहां तक हो सके ना करें। अगर इमरजेंसी है तो भागना ही पड़ेगा, वो अलग बात है, बट रूटीन में आप ये जंपिंग और रनिंग नहीं करें। वॉकिंग, साइकिलिंग, सीढ़ियां चढ़ना रूटीन लाइफ में सब कुछ कर सकते हैं, चौकड़ी मार के बिस्तर पे बैठ सकते हैं। इमरजेंसी अगर हो जहां पे कि इंडियन टॉयलेट ही अवेलेबल है, दूसरा टॉयलेट अवेलेबल नहीं है तो वहां भी बैठ सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया कि भागना थोड़ा सा परेशानी का सबब बन सकता है, तो क्या नुकसान हो सकता है अगर मान लीजिए इमरजेंसी में भागना पड़ा तो, जो इम्प्लांट करा रखा है तो उस पर क्या असर पड़ सकता है?
0: इमरजेंसी में आप हद से हद 100-200 मीटर भागेंगे, इससे दूर तो भागेंगे नहीं, उतने में कुछ नहीं होगा।
1: जी,
0: तो इसलिए कई बार ऐसा मरीज ये समझ लेते हैं कि भागने को मना किया तो बिल्कुल कोई भागना ही नहीं है और वो उस इमरजेंसी से दूर नहीं भाग पाते। हम इसलिए बोलते हैं कि इमरजेंसी अगर हो तो भाग लेना, बाकी हम संभाल लेंगे।
1: जी, तो जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद जैसा कि हम आमतौर पर भारतीय पद्धति में देखा जाता है कि हम आलती पालती मार करके बैठते हैं, तो क्या ये संभव है उसके बाद?
0: बिल्कुल संभव है, आलती पालती मार के रूटीन में बैठ सकते हैं आप।
1: जी,
0: बिस्तर के ऊपर
1: जी
0: पालथी मार के आराम से बैठिए। जमीन पे बैठने को मना करते हैं क्योंकि जमीन से जब उठते हुए उनको थोड़ा सा स्ट्रेस ज्यादा पड़ता है।
1: जी जी,
0: तो जमीन से अगर आप 10-12 इंच की ऊंचाई पे आराम से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत।
1: तो क्या एक बार, जिस तरह से आपने बताया घुटना रिप्लेसमेंट की बात करते हैं, तो क्या एक बार घुटना रिप्लेसमेंट हो गया है तो क्या उसके बाद भी अगर कोई मरीज परेशान है या उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो क्या एक बार इम्प्लांट होने के बाद क्या दूसरी बार भी रिप्लेसमेंट किया जा सकता है?
0: तो घुटना या कूला जोड़ा जब रिप्लेस करते हैं तो उसकी, जैसे सपोज करो कि बहुत अच्छे से लगा हुआ है और एक टाइम के बाद उसकी लाइफ खत्म होती है, उसके कई कारण होते हैं। पहला जिसमें आपको बताया, अगर कंप्यूटर से करते हैं तो बिल्कुल सही लगता है, तो उसको पूरी लाइफ मिलती है।
1: जी जी,
0: इसीलिए हम पेशेंट का जो हमारा लोगो है वो हम कहते हैं 1 joint for life।
1: जी,
0: कि अगर हम 55-60 की उम्र में आज जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं तो वो लाइफ लॉन्ग चलेगा। अगर किसी भी रीजन से जैसे कि इन्फेक्शन हो गया या चोट लगी या गिर गए,
1: जी
0: जॉइंट ने अपनी जगह छोड़ दी है,
1: जी,
0: तो दोबारा भी रिप्लेस हो सकता है और दोबारा रिप्लेस करने के भी बहुत अच्छे इम्प्लांट आ गए हैं और उसके साथ फिर से आपको वही 25-30 साल की लाइफ मिलेगी।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, जॉइंट रिप्लेसमेंट अगर सर्जरी होती है तो लगभग एक आम जनता के लिए मैं पूछना चाहूंगा कितना खर्चा इसमें आ जाता है?
0: खर्चा जो है हम पेशेंट को देख के डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट को और कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है
1: जी।
0: किसी को डायबिटीज

0: है, ब्लड प्रेशर है, कार्डिक प्रॉब्लम है, तो उन सब डॉक्टरों को भी देखना पड़ता है, कुछ दवाइयां आगे पीछे एडजस्ट करनी पड़ती है।
1: जी
0: मोटा मोटा मैं खर्चा बता देता हूँ।
1: जी
0: स्टार्टिंग खर्चा होता है 2 लाख रुपए एक साइड का जॉइंट रिप्लेस करने से
1: जी
0: लेके, और 4.5 से 4 लाख दोनों साइड का जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं। बाकी इम्प्लांट सिलेक्शन, जैसे हम पेशेंट की यंग लाइफ होती है तो हम बोलते हैं कि ऐसा इम्प्लांट लगाएंगे जिसकी लाइफ 30-35 साल की होती है,
1: जी जी
0: तो वो इम्प्लांट थोड़े कॉस्टली आते हैं, तो उस कंडीशन में फिर जो है खर्चा करीब करीब 5.5 लाख तक पहुंच जाता है दोनों साइड का करने की।
1: अंत में डॉक्टर साहब एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा आपसे कि आमतौर पर जोड़ों के दर्द से बचने के लिए क्या हमारा खान पान रहना चाहिए, किस तरह की एक्सरसाइज आम लोगों को करनी चाहिए जिससे कि हम इन रोगों से, इन चीजों से बच सकें।
0: अगर बचना है तो कुछ चीजें लाइफ में आपको बदलनी पड़ेंगी।
1: जी
0: अगर हम देखें, हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि अति हर चीज की खराब है।
1: जी
0: अगर आपको खाना खाना है तो अपने पेट के हिसाब से खाना खाइए, टेस्ट के हिसाब से मत खाइए। ठीक
1: बिल्कुल
0: है,
1: बिल्कुल
0: जहां पे इंसान ने टेस्ट पे कंट्रोल नहीं किया, सो अपनी इंद्रियों को काबू में नहीं किया,
1: जी
0: तो
1: जी
0: टेस्ट के हिसाब से खाते चले जाओगे तो वजन बढ़ता चला जाएगा।
1: बिल्कुल
0: दूसरा है रेगुलर एक्सरसाइज,
1: जी
0: ऐसी चीज जो आप लाइफ लॉन्ग कर सकते हो,
1: जी
0: जैसे कि वॉकिंग,
1: जी बिल्कुल
0: साइकिलिंग, स्विमिंग, ये चीजें आप लाइफ लॉन्ग कर सकते हो। किसी भी एज में आपको कोई रुकावट नहीं आएगी इस चीज के
1: बिल्कुल
0: लिए। अगर आप बैडमिंटन खेलते हो तो वो भी काफी लोग 60-70 साल तक खेल पाते
1: खेलते हैं
0: हैं।
1: जी
0: क्रिकेट ऐसा गेम है जो आप नहीं खेल सकते बहुत दिनों तक। इनमें से कोई भी एक गेम सेलेक्ट करिए, आधा घंटा हफ्ते में 5 दिन जरूर करिए,
1: जी
0: वजन पे कंट्रोल करिए, और दिन में एक बार सारे जॉइंट्स का, 10 बार दिन में सारे जॉइंट्स की एक बार पूरा रेंज ऑफ मोशन होना चाहिए।
1: जी जी
0: पूरा मूवमेंट होता है तो जो मसल्स जॉइंट को चलाती हैं वो अपनी पूरी लेंथ पे आती हैं और पूरी छोटी भी होती हैं।
1: जी
0: जब मसल हमारी चलती है तो वो स्ट्रेच भी होती है और कॉन्ट्रैक्ट भी होती है,
1: जी
0: सिकुड़ती भी है। अगर हम उसको सिकुड़ के ही रखेंगे, पूरी एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो कभी वो स्ट्रेच होना भूल जाएगी,
1: जी
0: पूरी
1: बिल्कुल
0: लेंथ में नहीं आएगी। और जब पूरी लेंथ में नहीं आएगी तो वो घुटने को मोड़ना शुरू कर देगी,
1: जी
0: या कूल्हे को मोड़ना शुरू कर देगी, या स्पाइन को बेंड करना शुरू करेगी।
1: जी
0: इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये बोन और मसल का एक मिलाप है,
1: जी जी
0: और दोनों का कॉम्बिनेशन अगर सही चलेगा तभी ही आप लाइफ में सही चल पाओगे।
1: तो श्रोताओं, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि प्रॉपर एक्सरसाइज करें, अपने सारे जोड़ों को, शरीर के जितने भी जोड़ हैं उसको प्रॉपर मोशन दें, एक्सरसाइज करें, साइकिलिंग करें, जॉगिंग करें, रनिंग करें, कोई भी एक खेल जो आपको पसंद हो उसको अवश्य खेलें और स्वस्थ रहें कुल मिलाकर के। तो आज के कार्यक्रम में हमारे साथ रहे वरिष्ठ अस्थि रोग विशेषज्ञ, जॉइंट रिप्लेसमेंट कंप्यूटर नेविगेशन, डॉक्टर सुभाष जांगीर। डॉक्टर साहब, आप आए स्टूडियो में, इतनी उपयोगी और अधिक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आज के स्वास्थ्य कार्यक्रम का विषय था ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। वार्ताकार थे डॉक्टर सुभाष जांगिड़, और इनसे भेंट कर रहे थे देवराज कृष्ण दीक्षित। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 MHz पर। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
3: मीडियम वेव 401।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए प्रयागराज और गाजियाबाद जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं प्रयागराज जिले की हलचल, आलेख और स्वर है प्रवीण मिश्र का।
2: जून माह के मध्य में प्रयागराज के प्रभारी मंत्री जलशक्ति विभाग उत्तर प्रदेश स्वतंत्र देव सिंह जी की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभागार में उत्तर प्रदेश श्री अन्न मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम अंतर्गत मिलेट्स रेसिपी एवं उपभोक्ता जागरूकता पर आधारित प्राकृतिक खेती कार्यशाला, विकसित कृषि संकल्प अभियान एवं खेत बचाओ अभियान कार्यक्रमों का आयोजन सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री ने केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर युवा, महिला एवं गरीब कल्याण को समर्पित सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। साथ ही विकसित उत्तर प्रदेश 2047 पर आधारित 4 दिवसीय प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर परिवर्तनकारी यात्रा का उत्सव है, जिसने गांव, गरीब, किसान को विकास की

0: मुख्य धारा में लाने का कार्य किया। 21 जून को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रयागराज के ऐतिहासिक और पवित्र संगम नोच पर एक भव्य सामूहिक योग अभ्यास कार्यक्रम जिला प्रशासन एवं आयुष विभाग प्रयागराज के तत्वाधान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए और योगाभ्यास किया। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस बृहद कार्यक्रम में योग अभ्यासियों सहित 9,000 से अधिक लोगों ने एक साथ योगाभ्यास कर स्वास्थ्य और कल्याण का संदेश दिया। इस अवसर पर योग और स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा, योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि शरीर मन और आत्मा को जोड़ने का पवित्र माध्यम है। नियमित योग करने से न केवल हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहता है बल्कि यह हमें मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा भी प्रदान करता है। आज पूरी दुनिया भारत की इस प्राचीन विधा को अपना रही है जो हर भारतीयों के लिए गर्व का विषय है। जून माह के तीसरे सप्ताह में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 140 नव दंपतियों का विवाह कार्यक्रम आयोजन सकुशल सम्पन्न हुआ। वैवाहिक कार्यक्रम में जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं संबंधित विकास खंडों के खंड विकास अधिकारी उपस्थित रहे। प्रयागराज उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जून माह के अंतिम सप्ताह में मेजा ब्लॉक परिसर में एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम SCP का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं, महिलाओं एवं स्वरोजगार के इच्छुक लोगों को विभाग द्वारा संचालित विभिन्न रोजगार परक योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना था। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख मेजा गायत्री देवी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। इस दौरान उपस्थित लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई तथा आवेदन प्रक्रिया, पात्रता एवं लाभ प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया से भी अवगत कराया गया। साथ ही स्वरोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लाभार्थियों का मार्गदर्शन भी किया गया। इस माह के प्रथम सप्ताह में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज के ऑडिटोरियम में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण BVG रामजी योजना लॉन्च कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने संबोधन में BVG रामजी योजना के लॉन्चिंग के सभी को बधाई देते हुए कहा कि BVG रामजी योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले श्रमिकों के पारिश्रमिक को 252 रुपए से बढ़ाकर न्यूनतम 300 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत पहले 100 दिन रोजगार की गारंटी मिलती थी परंतु जी रामजी योजना के अंतर्गत इसे बढ़ाकर 125 दिन रोजगार की गारंटी उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकसित भारत, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लक्ष्य के साथ साथ अब हमारा लक्ष्य विकसित ग्राम सभा बनाने का है। और जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा,
1: देश के लिए भी, उत्तर प्रदेश के लिए भी, प्रयागराज के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी मनरेगा के स्थान पर आए। विकसित भारत जी राम जी आने के बाद गांव का सर्वांगीण विकास होगा। गांव की जो सड़कें हैं, इंटरनल सड़कें हैं, वह भी बनेंगी, तालाब भी बनेंगे, भी सभी क्षेत्रों में यह बहुत ऐतिहासिक काम होगा।
0: जुलाई माह के प्रथम सप्ताह विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का उद्घाटन अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉक्टर राजेश कुमार, संयुक्त निदेशक डॉक्टर आशु पांडे एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से संयुक्त रूप से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। संचारी अभियान का संचालन दिनांक 1 जुलाई से 31 जुलाई 2026 एवं दस्तक अभियान 11 जुलाई से 31 जुलाई 2026 तक संचालित किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी ने स्वास्थ्य विभाग की विशेष भूमिका के विषय में चर्चा की एवं दस्तक अभियान में स्टॉप डायरिया कैंपेन के अंतर्गत आशा एवं आंगनवाड़ियों के द्वारा घर घर पर जाकर डायरिया प्रभावित परिवारों को जिंक, ORS एवं क्लोरीन की गोली वितरण पर चर्चा की। क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय के द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक 3 रोजगार मेले का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें 35 से अधिक कंपनियों के द्वारा हजारों युवाओं को निजी क्षेत्र की कंपनियों में रोजगार प्रदान किया गया। युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिले इसको लेकर क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय पर अभ्यर्थियों के लिए हेल्प डेस्क, ऑनलाइन पंजीकरण और पोर्टल पर जनपद में समय समय पर आयोजित होने वाले रोजगार मेले की सूचना प्रदान की जा रही है। इस हफ्ते शुरू हुई हल्की बारिश और आसमान में छाए बादलों से भीषण गर्मी से राहत मिली है। वहीं मानसून की दस्तक से किसानों के चेहरे खिले हैं, साथ ही कृषि कार्यों में भी तेजी से कार्य शुरू हो गया है। खरीफ की प्रमुख फसल धान की खेती को लेकर कृषि विभाग द्वारा सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं।
2: प्रयागराज जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गाजियाबाद जिले की हलचल। आलेख और

0: स्वर है मनोज कुमार शर्मा का।
1: गाजियाबाद स्थित नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन यानी नेट्रा का 52वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। केंद्रीय राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा भी इस अवसर पर मौजूद रही। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। केंद्रीय मंत्री ने नेट्रा की 52 वर्षों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में वस्त्र क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश का वस्त्र उद्योग लगातार नए आयाम स्थापित कर रहा है और भारत अब केवल अपनी जरूरतें ही नहीं बल्कि दूसरे देशों की मांगें भी पूरी कर रहा है। उन्होंने बताया कि देश में वस्त्र क्षेत्र में बड़े जुड़े हुए कई अनुसंधान संस्थान आधुनिक तकनीक और परीक्षण सुविधाओं के साथ कार्य कर रहे हैं जिससे शोध और नवाचार को बढ़ावा मिला है। मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वस्त्र क्षेत्र में अनुसंधान और स्टार्टअप को लगातार प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उन्होंने अयोध्या का हालिया घटना पर कहा कि मामले की जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और कानून अपना काम करेगा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गाजियाबाद में वाल्मीकि पार्क में आयोजित 12 साल बेमिसाल कार्यक्रम में भाग लिया और सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने उनके कार्यों की सराहना करते हुए स्वच्छ अभियान में उनके योगदान का महत्वपूर्ण बताया। इसके बाद उप मुख्यमंत्री विकास भवन पहुंचे जहां उन्होंने सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। दौरे के दौरान आयोजित किसान कार्यशाला में उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि रासायनिक खादों और कीटनाशकों से अत्यधिक उपयोग से स्वास्थ्य एवं पर्यावरण दोनों प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए किसानों को कंपोजिट खाद और पारंपरिक कृषि पद्धतियों को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका है।
2: विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर किसानों की कार्यशाला में हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। हम प्रदेश के किसानों से अपील करते हैं कि हम सबको प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़ना होगा। हमारे जो पुराने संसाधन थे उन पर हमें जाना है, हमें कंपोस्ट खाद का उपयोग मिलाना है।
1: उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध हो सके। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। गाजियाबाद में जिला प्रशासन अवैध कब्जों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में गाजियाबाद जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ के निर्देश पर गांधीनगर क्षेत्र में एक महिला को उसकी वर्षों पुरानी आवंटित दुकान का कब्जा वापस दिलाया गया। पीड़िता सुमन बत्रा ने सोमवार को जिलाधिकारी से मिलकर शिकायत की थी कि वर्ष 1992 में नगर पालिका से लीज पर मिली दुकान पर अवैध कब्जे कर लिए गया है। शिकायत मिलने के बाद जिला प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया। राजस्व और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर दुकान को खाली कराया और उसका कब्जा सुमन बत्रा तथा उसके परिवार को सौंप दिया। जिलाधिकारी रविंद्र मादड़ ने कहा कि अवैध कब्जों से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है।
3: प्रमोद बत्रा जी मेरे पास आए थे और इनकी एक पीड़ा थी कि पिछले 28 वर्ष से के दुकान पे कब्जा किया हुआ था और वो कब्जा खाली नहीं कर रहा था। जनता दर्शन में मेरे पास आए थे, इन्होंने अपनी शिकायत मुझे बताई तो हम लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में तुरंत एक स्क्रीनिंग कमेटी गठित की और जब ये पुख्ता हो गया कि सारे कागज इनके नाम पे, दुकान इनकी है, जिस दुकान को खाली करा लिया गया और इन्हें कब्जा वापस प्रदान कर दिया गया।
1: उन्होंने कहा कि सरकारी अथवा वैध रूप से आवंटित संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी और पात्र लोगों को उनका अधिकार दिलाने का अभियान आगे भी जारी रहेगा। गाजियाबाद के डासना क्षेत्र में दिल्ली मुरादाबाद हाईवे के निकट स्थित करीब 250 बीघा सरकारी भूमि को जिला प्रशासन ने अवैध कब्जे से मुक्त कराया।
0: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
4: FM 102.2 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। प्रस्तुत है कार्यक्रम आबोहवा, जिसमें आज का विषय है मोबाइल विकिरणों के दुष्प्रभाव के सुझाव और उपाय। आलेख और वचन है डॉक्टर R.S. मीणा का।
5: ई-वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, एक आम मोबाइल हैंडसेट की जो एवरेज लाइफ है 5 से 10 साल के बीच में होती। करोड़ों अरबों मोबाइल उपभोग

होता हर 5 से 10 साल में 10 से 20 करोड़ मोबाइल हैंडसेट डिस्चार्ज कर देते। तो जैसे कंप्यूटर, टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उनकी तरह हमारे वातावरण में ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और मोबाइल का कचरा भी बढ़ता जा रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, ये प्लास्टिक की तरह ही नॉन डिग्रेडेबल कैटेगरी में आता है। इनका डिग्रेडिंग लाइफ मानी जाती है वो 4 से 5 हजार साल मानी जाती है। इन हैंडसेट को बनाने में जिन चीजों का यूज किया जाता है, उनमें बहुत सारी टॉक्सिक मेटल्स का यूज किया जाता है, धातुओं का उपयोग किया जाता है, जिनमें से मुख्य धातुएं हैं कैडमियम, लेड, निकिल, मरकरी, मैग्नीज, लिथियम, जिंक, आर्सेनिक, एंटीमनी और कॉपर। ये जो धातुएं हैं, जब ये कचरा पर्यावरण में काफी लंबे समय तक पड़ा रहता है, तो इन धातुओं को पर्यावरण की वायु, जल और सभी में धीरे धीरे मिक्सअप करता रहता है। इनमें से बहुत सारी धातुएं मानव स्वास्थ्य के लिए और जीव जंतुओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही घातक है। इनमें किडनी फेल्योर, आमाशय के कैंसर और तरह तरह के दुष्प्रभाव को बढ़ावा देती। कैडमियम, लेड, आर्सेनिक और कॉपर, ये हमारे वाटर को भयंकर प्रदूषित करती है और उसका मानव स्वास्थ्य पर बहुत दुष्प्रभाव होता है। इसलिए इन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को मैनेजमेंट बुद्धिमानी तरीके से, ताकि हमारे जो स्वस्थ वायु और जल है, उनको ये कम से कम प्रदूषित करें। अंतरराष्ट्रीय अध्ययन से पता लगाया है कि मोबाइल विकिरण धूम्रपान से 20 से 30% ज्यादा दुष्प्रभावी है। ये हमारे बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग को लॉन्ग टाइम तक अफेक्ट कर देते हैं और इसके जो दुष्परिणाम होते हैं दीर्घ काल तक प्रदूषित होते हैं। अगर आप छोटे बच्चे का ब्रेन काफी देर तक मोबाइल किरणों से एक्सपोज करते हो, तो उसका जो डेवलपमेंट है वो नॉर्मल न रह करके एबनॉर्मल हो गया, उसकी मेमोरीज हमेशा के लिए डिस्टर्ब हो जाती है। मोबाइल के जो टावर्स लगे हुए हैं, उसकी सराउंडिंग्स की इंटेंसिटी ज्यादा होती है। ऐसे एरियाज जहाँ पर एक से ज्यादा टावर लगे हुए हैं, तो उस जगह इंटेंसिटी बढ़ जाती है। जितने ज्यादा उपकरण इन तरंगों के, जितने ज्यादा शोर्स एक से ज्यादा उपस्थित होंगे, तो उस जगह पर ये एडिटिव इफेक्ट प्रभावित होता है। इंटेंसिटी लेवल उसी हिसाब से बढ़ती जाती है। हानिकारक दुष्परिणामों को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने या अंतर्राष्ट्रीय साइंटिफिक बॉडीज ने इसके कुछ लेवल्स निर्धारित किए गए हैं। उन लेवल्स के अंदर अगर इसको यूज किया जाए, लेकिन आजकल इन पैमानों का सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है और हानिकारक दुष्परिणाम लोगों में आम बात हो गई। मोबाइल विकिरणों के इन दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए हमें मोबाइल्स को सावधानी से और जितना कम हो सके उतना यूज करना है। दूसरा पर्यावरण पर जो इफेक्ट देखा गया है, वो हमारे जो मधुमक्खी है, कीड़े पतंगे हैं, वो मोबाइल विकिरणों के प्रभाव से दिग्भ्रमित हो जाते हैं। इनको कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर कहते हैं। तो जिस जगह मोबाइल विकिरण ज्यादा होती है, तो इन तितलियां, मधुमक्खियां पर्यावरण के प्रेमी कीड़ों को की दैनिकचर्या को भंग करते हैं। माइग्रेट होने वाले पक्षी अपनी दिशा भूल जाते हैं और जो नॉर्मल उनकी वर्किंग साइकिल है उसको डिस्टर्ब करते हैं। मोबाइल विकिरण ज्यादा होने से जलीय जंतुओं में उनका भ्रूण, उनके जो अंडे हैं, उनके जो लार्वाज हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और डेस्ट्रॉय हो जाते हैं। इन मधुमक्खी उस पर्टिकुलर एरिया जहां मोबाइल रेडिएशन बहुत ज्यादा है, गायब पाई गई है। और इन सारे जीव जंतुओं जो हमारे डायरेक्ट खेती के उत्पादन पे भी इफेक्ट करते हैं, तो पर्यावरण में इन मोबाइल तरंगों का स्तर जितना कम किया जा सके उतना कम होना चाहिए।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबो हवा। विषय था मोबाइल विकिरणों के दुष्प्रभाव के सुझाव और उपाय। आलेख और वाचन था डॉक्टर R.S. मीणा का।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सब

0: ने भरी उड़ान।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से, प्रस्तुत है गांधी चर्चा। गांधी

0: गांधी चर्चा में पहले सुनिए बापू के विचार।
1: मैं अपनी पत्नी को आदर्श स्त्री बनाना चाहता था। मेरी ये भावना थी कि वो स्वच्छ बने, स्वच्छ रहे, मैं सीखूं सो सीखे, मैं पढ़ूं सो पढ़े, और हम दोनों एक दूसरे में ओतप्रोत रहें। कस्तूरबाई में ये भावना थी या नहीं इसका मुझे पता नहीं। वो निरक्षर थीं, स्वभाव से सीधी, स्वतंत्र, मेहनती और मेरे साथ तो कम बोलने वाली थीं। उसे अपने अज्ञान का असंतोष न था। अपने बचपन में मैंने कभी उसकी ये इच्छा नहीं जानी कि मेरी तरह वो भी पढ़ सके तो अच्छा हो। इससे मैं मानता हूं कि मेरी भावना एक पक्षी थी। मेरा विषय सुख एक स्त्री पर ही निर्भर था और मैं उस सुख का प्रतिघोष चाहता था। जहां प्रेम एक पक्ष की ओर से भी होता है, वहां सर्वांश में दुख तो नहीं ही होता। मुझे कहना चाहिए कि मैं अपनी स्त्री के प्रति विषयासक्त था। शाला में भी उसके विचार आते रहते, कब रात पड़े और कब हम मिलें, ये विचार बना ही रहता। वियोग असह्य था। अपनी कुछ निकम्मी बकवासों से मैं कस्तूरबाई को जगाए ही रहता था। मेरा ख्याल है कि इस आसक्ति के साथ ही मुझमें कर्तव्य परायणता अगर न होती तो मैं व्याधिग्रस्त होकर मौत के मुंह में चला जाता, अथवा इस संसार में बोझ रूप बनकर जिंदा रहता। सवेरा होते ही नित्य कर्म में तो लग ही जाना चाहिए, किसी को धोखा तो दिया ही नहीं जा सकता। अपने इन विचारों के कारण मैं बहुत से संकटों से बचा हूं। कस्तूरबाई निरक्षर थी, उसे पढ़ाने की मेरी बड़ी इच्छा थी, पर मेरी विषय वासना मुझे पढ़ाने कैसे देती। एक तो मुझे जबरदस्ती पढ़ाना था, वो भी रात के एकांत में ही हो सकता था। बड़ों के सामने तो स्त्री की तरफ देखा भी नहीं जा सकता था, फिर बातचीत कैसे होती। उन दिनों काठियावाड़ में घूंघट निकालने का निकम्मा और जंगली रिवाज था, आज भी बड़ी हद तक मौजूद है। इस कारण मेरे लिए पढ़ाने की परिस्थितियां भी प्रतिकूल थीं। इसलिए मुझे ये स्वीकार करना चाहिए कि जवानी में पढ़ाने के जितने प्रयत्न मैंने किए वे सब लगभग निष्फल हुए। जब मैं विषय की नींद से जागा तब तो सार्वजनिक जीवन में कूद चुका था, इसलिए अधिक समय देने की मेरी स्थिति नहीं रही थी। शिक्षक के द्वारा पढ़ाने के मेरे प्रयत्न भी व्यर्थ सिद्ध हुए। मैं मानता हूं कि अगर मेरा प्रेम विषय से दूषित न होता तो आज वो एक विदुषी स्त्री होती। मैं उसके पढ़ने के आलस्य को जीत सकता था, क्योंकि मैं जानता हूं कि शुद्ध प्रेम के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यूं अपने पत्नी के प्रति विषयासक्त होते हुए भी मैं किसी कदर कैसे बच सका, ये बताने लायक बात है। सैकड़ों अनुभवों के सहारे मैं इस परिणाम पर पहुंच सका कि जिसकी निष्ठा सच्ची है उसकी रक्षा स्वयं भगवान ही कर लेते हैं। हिंदू समाज में यदि बाल विवाह का घातक रिवाज है तो साथ ही उसमें से थोड़ी मुक्ति दिलाने वाला रिवाज भी है। माता पिता बालक वर वधु को लंबे समय तक एक साथ रहने नहीं देते। बाल पत्नी का आधे से अधिक समय पीहर में बीतता है। यही बात हमारे संबंध में भी हुई। मतलब ये कि 13 से 19 साल की उम्र तक हम छुटपुट मिलकर कुल 3 साल से अधिक समय तक साथ नहीं रहे होंगे। 6-8 महीने साथ रहते इतने में माँ बाप के घर का बुलावा आ ही जाता। उस समय तो वो बुलावा बहुत बुरा लगता, पर उसी के कारण हम दोनों बच गए। फिर तो 18 साल की उम्र में मैं विलायत गया, जिससे लंबे समय का सुंदर वियोग रहा।

0: आयत से लौटने पर भी हम करीब 6 महीने ही साथ में रहे होंगे, क्योंकि मैं राजकोट और बंबई के बीच जाता आता रहता था। इतने में दक्षिण अफ्रीका का बुलावा आ गया। इस बीच तो मैं अच्छी तरह जागृत हो चुका था।
1: ये थे बापू के विचार, और अब हम आपको सुनवाते हैं बापू का

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब आपको सुगम संगीत के अंतर्गत सुनवाते हैं कुछ गैर फिल्मी गजलें।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10 बज चुके हैं और आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

0: देखो शबनम शराब हो गए,
1: हो देखो शबनम शराब हो गए,
0: देखो शबनम शराब हो गए, देखो शबनम शराब हो गए।
2: अजूबा फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक, सुदेश भोसले और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं हिना फिल्म से, आवाज है लता मंगेशकर की, गीत और संगीत है रविंद्र जैन का।

अनु मलिक के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे सुरेश वाडेकर और साधना सरगम को फिल्म घातक में। गीत रचना थी मजरूर सुल्तानपुरी की। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं हद कर दी आपने, इस फिल्म से। गाया है आनंद राज आनंद ने, गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और धुन भी बनाई है आनंद राज आनंद ने ही।

प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। शब्द रचना थी इंदिवर की और संगीत रचना थी पप्पी लाहिरी की। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं तमाशा फिल्म से, गाया है अलका याग्निक और अरिजीत सिंह ने। बोल इरशाद कामिल के हैं, धुन बनाई है ए आर रहमान ने।

पापुन और रोहिणी गुप्ता की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे सुई धागा फिल्म का गीत, जिसे लिखा था वरुण ग्रोवर ने और धुन बनाई थी अनु मलिक ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, इस फिल्म से गाया है अभिजीत और अलका याग्निक ने, बोल जावेद अख्तर के हैं, धुन बनाई है जतिन ललित ने।

बॉम्बे फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे ए हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में, संगीत था ए आर रहमान का। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं 2 और 2:05 फिल्म से, गाया है किशोर कुमार ने।

तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं।

0: अरे तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं।
1: किशोर कुमार और साथियों के गाए इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। प्रस्तुति है देवराज कृष्ण दीक्षित की।
2: हेलो हेलो आकाशवाणी। हेलो आकाशवाणी। हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का अभिवादन, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आज के कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ देवराज। जी हां श्रोताओं, एक बार फिर से हाजिर है आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, जिसमें हमारे श्रोता करते हैं फोन के माध्यम से अपने दिल की बात और हम सुनवाते हैं उनको उनकी पसंद का गाना। जी हां श्रोताओं, हम आपको बता दें इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। हमारा टेलीफोन नंबर है 25 30 135। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 STD कोड लगाकर हमें फोन करें। और अब आइए आरंभ करते हैं आज का हेलो आकाशवाणी।
3: हेलो आकाशवाणी,

0: तो सर राधे राधे।
1: राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत आपका।
0: मैं ब्रज रेडियो श्रोता मित्र नेत्रपाल जी ग्राम नंगला विजयी राया से आपसे बात कर रहा हूँ जी। सर
1: नेत्रपाल जी, क्या हाल चाल है आपके?
0: ठीक है सर, मौसम ठंडा हो गया बहुत।
1: जी जी, गर्मी से राहत मिल गई है, अच्छा लग रहा है अब ये मौसम।
0: बहुत बढ़िया सर
1: जी, मौसम तो अच्छा है लेकिन सावधानी भी रखना जरूरी है।
0: हाँ सर, उम्र हो गई 77 साल की तो सावधानी रखनी पड़ेगी।
1: जी बिल्कुल, बताइए आज क्या सुनेंगे नेत्रपाल जी?
0: फिल्म है क्रांति,
1: बोल क्या है गाने के?
0: चन्ना चोर गरम लाया बाबू, चन्ना चोर गरम।
1: लीजिए सुनिए अपनी फरमाइश, बहुत बहुत धन्यवाद
0: सर। राधे राधे
1: राधे राधे।

0: हेलो
1: हेलो आकाशवाणी
0: सर जी, नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: रामेश्वर चौधरी बोल रहा हूँ सर, सासनी से।
1: स्वागत है चौधरी साहब।
0: और कैसे हैं सर जी आप सभी लोग?
1: हम तो बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
0: बहुत अच्छे हैं सर, अब तो बारिश भी हो गई है।
1: जी
0: गई
1: जी,
0: इस समय
1: बहुत अच्छा हो गया है।
0: हाँ जी, हाँ जी, फिलहाल जो धान की जो रोपाई चल रही है उसमें बहुत फायदेमंद है।
1: जी अच्छी बात है
0: जी सर जी, तो एक साथ बारिश का सा ही कोई गीत सुनवा दीजिए सर।
1: बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
0: सावन का महीना आया है,
1: जी
0: आई मिलन की रात।
1: लीजिए सुनवाते हैं आपको ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्ते सर जी।
1: नमस्ते।

0: हेलो,
1: हेलो आकाशवाणी,
0: आदरणीय दीक्षित जी को सादर से प्रेम प्यार भरा नमस्कार।
1: नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में आपका।
0: बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षित जी। आपका ब्रज रेडियो श्रोता मित्र राजू लवानिया कनौली से बोल रहा हूँ सर।
1: जी लवानिया साहब, मौसम के क्या हाल चाल है आगरा में?
0: बिल्कुल सर, मौसम सुहाना है, छेड़ना तराना है आकाशवाणी मथुरा के माध्यम से।
1: जी जी, मौसम खुशनुमा हो गया है।
0: बिल्कुल सर, यहाँ बारिश का दौर शुरू हो गया है और 3 बजे से बारिश पड़ी है और अभी भी लगभग लगभग छिटपिट छिटपिट बूंदाबांदी चली रही है।
1: जी जी, बताइए आज के कार्यक्रम में फरमाइश क्या रहेगी, कौन सा ताराना सुनेंगे?
0: भीगा भीगा मौसम आया, बरसे घटा घनघोर।
1: जी सुनवाते हैं लवानिया साहब आपकी फरमाइश। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी, नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: नमस्ते भैया, प्रणाम।
0: नमस्ते, स्वागत आपका कार्यक्रम में।
1: ये बहुत दिनों बाद मेरा फोन लगा भैया।
0: शुभ नाम बता दीजिए अपना।
1: कोदवा साझा छत्तीसगढ़ से राम स्वरूप गुप्ता।
0: गुप्ता जी कैसे हैं?
1: सब बढ़िया भैया, आप लोग?
0: एकदम अच्छे हैं हम भी। बहुत दिनों के बाद बात हो रही है आपसे।
1: हाँ भैया, 4 महीने बाद फोन लगा है मेरा।
0: जी जी, खुशी की बात है, फोन लग गया।
1: हाँ भैया,
0: और कैसे हैं परिवार में सब?
1: सब बढ़िया भैया परिवार में।
0: और काम अच्छा चल रहा है?
1: हाँ भैया, अब अभी फिर बनाया हूँ सेकंड टी वी। 15 अगस्त को रामेश्वर जाने का प्रोग्राम, अब देखो सवारी इकट्ठा हो जाए। वैसे 15-20 सीट सवारी जानकारी मिला है अभी।
0: जी
1: हाँ, उसके बाद फिर सितंबर फिर आऊंगा भैया मथुरा वृंदावन।
0: बिल्कुल, स्वागत है आपका आकाशवाणी केंद्र, आ सकते हैं आप।
1: हाँ भैया,
0: बताइए आज के कार्यक्रम में फरमाइश क्या रहेगी आपकी?
1: रफू चक्कर का है,
0: गाने के बोल क्या हैं?
1: किसी के दिल अगर आ जाए तो क्या होता है,
0: वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।
1: हाँ
0: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: राधे राधे
0: राधे राधे।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: कैसे हैं सर?
0: एकदम अच्छे हैं। हमारे कौन से श्रोता बोल रहे हैं?
1: मैं आपका नियमित श्रोता चौधरी धर्मवीर सिंह नंगला भूपलाती से मालदा से सर।
0: स्वागत है चौधरी साहब, क्या हाल चाल है आपके?
1: हालचाल बढ़िया है। मौसम में ये मानसून दस्तक दे दी है हमारे ब्रज में भी।
0: खूब बारिश हो रही है, रिमझिम रिमझिम।
1: हाँ, बड़ा ठंडा मौसम महसूस हो रहा है। खेती
0: खेती के लिए भी अच्छा है।
1: के लिए बहुत अच्छा है ये।
0: बताइए चौधरी साहब, आज के कार्यक्रम में आपकी फरमाइश क्या है?
1: नाच में भी बुलबुल तो पैसा मिलेगा, रोटी फिल्म से है सर।
0: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार।

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम चंद्रा खत्री के साथ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तत्से नमो नमः।

अभी आप सुन रहे थे स्वर्ग से सुंदर फिल्म से लिया ये गीत। इस गीत को अपनी आवाज़ें दी लता मंगेशकर किशोर कुमार ने।

शकील बदायूनी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था नौशाद ने। फिल्म मुगले आजम से लिया ये गीत। अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे फागुनी पाठक और साथियों को फिल्म लीला में। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है और अभी आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम का।

संत ज्ञानेश्वर। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म में मुकेश को। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत के कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं।

साथियों, आज है राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस यानी नेशनल फिश फार्मर्स डे, जो कि हर साल 10 जुलाई को मनाया जाता है। तो करेंगे अपने कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस में इसी विषय पर चर्चा। आप भी अपने विचार साझा करना चाहते हैं तो लिख भेजिए 9412255 पर।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आरंभ करते हैं आपका अपना कार्यक्रम गीत बात और SMS। स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम गीत बात और SMS में। आज आपके साथ मैं हूं आपकी RJ मित्र चंद्रा खत्री। नमस्कार साथियों, संदेश पहुंच चुके हैं नवरेल महाराष्ट्र से, PS नवाकर, निर्मला विशाल, मलकापुर से हैं नारायण इंगले एंड सोपान आशीष, आप सभी का बहुत अभिनंदन हमारे कार्यक्रम में। नीतीश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग, पूना राम देवांगन एंड कृष्णा, आप सभी छत्तीसगढ़ के श्रोता हमसे जुड़े हैं। प्रकाश, प्रिंस, निखिल, यशस्वी छत्तीसगढ़ पलारी से हैं। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी, बिहार से डॉक्टर W अंसारी और डॉक्टर सोनम अदीबा। नसीब रेडियो श्रोता संघ, आप सभी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी जी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सभी का शुक्रिया। कल्याण मुंबई से किशोर, सुजाता और प्रतीक हमसे जुड़ चुके हैं। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति एंड ओजस्विनी, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा, उमेश, प्रमिला बंछोर, आप सभी जुड़ चुके हैं हमसे छत्तीसगढ़ से। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा, स्वागत है आप सभी का। अनुगढ़ राजस्थान के हैं मंगल जनागल, श्रीमती रोशनी, अंकुर, इंदु और डॉक्टर सुनील। गोगुल चौक गंग जला सरहसा बिहार से राधे कुमार, सविता, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम, अच्छे लाल, बुल्की वाली और फलना झा। उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशुदासु, अन्नवानंद एंड सत्यम, आप सभी हमसे झारखंड से जुड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं।

आप सभी का बहुत शुक्रिया। सिद्धार्थनगर धरेपुर बावली से हैं गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप एंड अशोक। शेरी बनेर अकोला से हैं अरुणा, बलदेव, आदित्य, आप सभी कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। कुमारगली श्रीरामपुर से अशोक गले, सविता दवले एंड अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका, सानिका। पुनावली पुणे से हैं अजय, करिश्मा, अभिका, विशाखा, सौरभ, प्रकाश, बिल्लू, तरुण, श्रीनिका, श्रीनिजा, आप सभी रायगढ़ छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हैं। तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फजानुल्ला, फरहानुल्ला, समायरा, आजमीन, गुड़िया। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज, कोरवाल, कमला रानी।

अजय, करिश्मा, अभिका, विशाखा, सौरभ, प्रकाश, बिल्लू, तरुण, श्रीनिका, श्रीनिजा, आप सभी रायगढ़ छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हैं। तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फजान अल्लाह, फरहान अल्लाह, समायरा, आजमीन गुड़िया। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल ने अपना संदेश हम तक पहुंचा दिया है। फुटानी चौक नारायण स्ट्रीट से ललन मिश्रा, नूतन मिश्रा, अमन पारासर, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित। जी हाँ साथियों, भारत में हर साल 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस यानी नेशनल फिश फार्मर्स डे मनाया जाता है, जो कि आज ही का दिन है। यह दिन देश के मछुआरों, मत्स्य किसानों और वैज्ञानिकों के अपार योगदान को सम्मानित करने के लिए समर्पित है, जिन्होंने इंड्यूस्ड ब्रीडिंग की सफलता के जरिए देश में नीली क्रांति को संभव बनाया।

संदेश हम तक लिख भेजा है तेलंगाना चोटुप्पल से कस्तूरी रामडू, उमा देवी और पृथ्वी नारायणा ने। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गीत।

कार्यक्रम में संदेश लिख भेजा है छत्तीसगढ़ से फनीश कुमार चंदन, सवित्री देवी, मोहित कुमार, देवी करानी, गजेंद्र कुमार और हेयांश कुमार ने। मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शाबिस्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी हमसे जुड़ चुके हैं। गंगाधर सावनकर, विजया लक्ष्मी सावनकर कुंडलवाड़ी से अपना संदेश लिख रहे हैं। बंडू लोहार, माया, शिवांश, चंद्रकला पोपलगढ़, देवीदास पोपलगढ़, आप सभी निवासा खुपटी से अपना संदेश हम तक पहुंचा रहे हैं। मेहर अरोरा, ममता अरोरा, कीर्ति अरोरा, भूमिका अरोरा, आप श्री गंगाधर गंगानगर राजस्थान से हमसे जुड़ रहे हैं। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगला बहन, राजेंद्र पीशा, नेपाल नगर से आप हमसे जुड़ चुके हैं। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। महाराष्ट्र के रूपेश, संगई महेश, प्रज्ञेश, प्रीतेश और पूरा ही संगई परिवार हमारा कार्यक्रम सुन रहा है। ओम प्रकाश, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, आप सभी नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से जुड़ रहे हैं। गाजीपुर से प्रतीक, श्रीमती रोशनी एंड प्रांजल, आप सभी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू, पप्पी जमशेदपुर से अपना संदेश हम तक पहुंचा रहे हैं। गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज इसी के साथ जुड़ रहे हैं। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा से तुलसी, वीना, आशीष, चैतन्य, मेघा और पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रुचिता एंड केशु रिधान, आप सभी हमसे जुड़ रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बेनीपट्टी से कामेश्वर प्रसाद गुप्ता, प्रदीप कुमार नायक, गोदावरी, राजबहादुर शाह, शंभू शाह, रजनी सिंह, सागर बाबू और जय वीरू, निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बीबी आलिया, आयन बाबू, आप सभी तेलीवाला से अपना संदेश हम तक पहुंचा रहे हैं। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण, कोमल, किरण, कपिल, कुणाल, नमस्ते जी, आपको भी नमस्कार। छत्तीसगढ़ से गुणवंत श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आयुष, विवेक, बीबी आयुषी, सुषमा सुरोशी, परिधि सुरोशी, मायरा, आप सभी महाराष्ट्र के श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। छत्रपति शिवाजी नगर खंडवासी राजेश, सुरेखा, शुभम, अक्षय, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। छन्नूलाल, अनीता, पुष्पा, अंजू, योगिता, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी, छत्तीसगढ़ के श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। इसी के साथ अगला संदेश हम तक पहुंच चुका है। बुलढाणा महाराष्ट्र से भागवत देठे पाटिल, श्रीमती लक्ष्मी देठे पाटिल, समर्थ दादा एंड कुमारी सानिका, जिला सांगली से हनुमंत शिंदे, संगीता शिंदे, साथियों हम बात कर रहे हैं आज अपने दिवस की। जो दिवस आज हमने पकड़ा है वो है PMMSY। जी हाँ साथियों, 10 जुलाई ये क्यों मनाया जाता है, इसका इतिहास क्या है, ये बहुत ऐतिहासिक महत्व रखता है साथियों। जी 10 जुलाई 1957 को साइंटिस्ट डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर KH अली कुन्ही ने ओडिशा के कटक स्थित

तालाब में भारतीय मेजर कार्प मछलियों में प्रेरित प्रजनन तकनीक यानी कि इंड्यूस्ड ब्रीडिंग में पहली बार ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की थी, इसीलिए आज ये दिन मनाया जाता है।

लेते हैं अगला संदेश। श्रीगंगानगर राजस्थान से लाल गिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, बेगम मिश्रत, वसीम अकरम, रुबीना, आरिज, नदीम, शमीम, ममता रानी, पूनम कुमारी, आप सभी हमसे जुड़ रहे हैं सीतामढ़ी से। आप सभी का स्वागत हमारे कार्यक्रम में। छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं दीपेश, पूनम, ज्योति एंड शिवांश। तेलंगाना से जुड़ रहे हैं मोहम्मद अमजद एंड सलमा फिरदोस, मीनू मुनी रुनीसा, सभी का स्वागत। मधुबनी बिहार से राजू कुमार गुप्ता, वनीता गुप्ता, रविराज, गौरव कुमार और मित्रगण। इसी के साथ छपरा दाल दली बाजार से संजय कुमार, संजीत, सर्वजीत एंड सुधांशु। अगला संदेश पहुंचा रहे हैं सोहन जोशी, हरमिंदर चावला, लोकेश जोशी, आकाश शर्मा, मनीष वर्मा, रिहान खान, आप सभी छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार के श्रोता हैं। इसी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे अगले श्रोता, पूरा खुश दिल परिवार पंजाब से झूमता हुआ हमें मैसेज लिख रहा है। पप्पू राजा, संगीता रानी, पप्पू महक, सुनीता रानी, आरजू पप्पू, हसमुख लाल, बुलबुल, शक्ति, संजीव बंटी और पूरा खुश दिल परिवार। जजर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत और मयंक हम तक अपना संदेश पहुंचा चुके हैं। हर्षा, दिलीप, अक्षय, रुद्रा, रुचिका एंड रामेकर परिवार महाराष्ट्र से हमसे जुड़ चुका है। मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा, छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से। धर्मेंद्र, शिवा, कपिल, ईशान, पूजा, आप सभी भोपालगढ़ राजस्थान से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद।

सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्लाह, सबाहत, किरत एंड रेहान। आइए सुने आप सभी की पसंद का ये गीत।

कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस में हमारे अगले श्रोता हैं गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र रौनक सेन, आप सभी हमसे जुड़ रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। साथियों, आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन गाजीपुर से, अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, आप सभी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, हमसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोरा,

सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, भाई यशवंत साहू, रमेशिया, हर्ष, अंशु साहू, आप सभी हमसे लोहारी डी से जुड़ रहे हैं। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। बुलडाणा महाराष्ट्र से नारायण इंगले, मंगला इंगले, राजकुमार, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए साथियों। मधुबनी बिहार से जुड़ रहे हैं मोहम्मद साबिर परवाना, मोहम्मद साजिद अली, मोहम्मद जाहिद अली, मोहम्मद साहिद अली, सभी का शुक्रिया। हर्षा, दिलीप, अक्षय, रुद्रा, रुचिका, आप सभी महाराष्ट्र से अपना मैसेज हम तक पहुंचा रहे हैं। पंजाब से हरजिंदर, जसवीर, सीता और गीता। इसी के साथ अगले श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं। तेलंगाना से कानगुला, गोपाल, माहेश्वरी, प्रवालिका, विष्णुवर्धन, विग्नेश, आप सभी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर सुरेश यादव, अनीता, आरती, प्रसाद, सोनल एंड बेबी सिया। प्रतिष्ठान रेडियो श्रोता संघ नेहरू चौक पैठणा से जुड़ रहे हैं। कमल साहनी, मिस्टर पिंकी साहनी, मिसेस पिंकी साहनी, डॉक्टर अफजल मलिक, संदीप मक्कड़, बेगम इफ्जाल, आप सभी नागपुर महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं। पप्पू श्रोता क्लब मेन रोड से जुड़ रहे हैं प्रकाश कुमार पप्पू, नैतिक पीहू, कुमार बिमल और पूर्णिया बिहार से ममता रानी, छवि अनोखी, अर्पिता।

साथियों, आज का जो दिन है यानी कि राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस, नेशनल फिश फार्मर्स डे, उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य है इस दिन किसानों को आधुनिक एक्वाकल्चर यानी जल कृषि टेक्निक्स के लिए प्रोत्साहित किया जाए, मछली उत्पादन को बढ़ाना और फिर किसानों की आय में वृद्धि करना, मेन इसका उद्देश्य यही है। इसी के साथ सरकारी सहयोग क्या क्या होते हैं? बिल्कुल, भारत सरकार मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी PMSY जैसी कई कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, जिसमें किसानों को आर्थिक संबल मिल सके। तो आप भी इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं।

कार्यक्रम का अगला संदेश हम पढ़ते हैं। कृष्णा कॉलोनी हांसी से सुभाष योगी, सुशील योगी, पप्पू डब्बू, राजू मिगलानी और ओम मिगलानी, आप सभी हमसे जुड़ रहे हैं, आप सभी का बहुत धन्यवाद। रायगढ़ से शिव कुमार, संक्रांति, रितेश एंड राजेश्वरी, उत्कर्ष, कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। संदीप, ज्योति, मन्नत, कमल, आप सभी पिंगा वाला चौक गोरैया जालंधर से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। चंदौली से विजय सरोज, सुंदर सुमन, जमशेदपुर से रोहन आर्य और मुराहू देवंती, बड़े ही आप स्टाइल में अपना अपने मैसेज लिख भेजा है भाई। गंज डुंडवारा से मोहम्मद गलीम, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, आप सभी का बहुत शुक्रिया। शमशुल कमर राही, शाहीना, अदनान, फैजान, अन्नू, उस्मान, कलीम अंसारी, गंज डुंडवारा के ये श्रोता हम तक अपना संदेश पहुंचा रहे हैं। राम कुमार हुड्डी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार, आप सभी जिला हिसार से जुड़ रहे हैं। सीताराम कांगड़ा, बबीता, निखिल, तन्वी रोहतक से जुड़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर, करण और चंपा। दीवाना रेडियो लिसनर क्लब जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश उर्मिला, दीपक स्वाती, जमशेदपुर से विपिन स्वाती और देव कुमार, आर्य कुमार, आइए सुनवाते हैं आपको एक सदाबहार गीत।

मोहल्ला चौक चौखंडी बुलंद शहर से मोहम्मद सैद अब्बासी निगहत परवीन अब्बासी शाहनवाज सरफराज फरदीन सुहान अरजान अवान और सारा अब्बासी परिवार हमसे जुड़ रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी हमसे जुड़ चुके हैं, श्रोताओं ऐसे ही जुड़े रहिएगा। और कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जुड़ा सिटी दीवाना। बस इसी के साथ गीत बात और SMS कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं, इसी के साथ कि आप हमसे यूं ही जुड़े रहिए, अपने संदेश हम तक पहुंचाते रहिए और हम आपके संदेश अपने कार्यक्रम में शामिल करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। साथियों नमस्कार।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है ब्रज लोकगीतों का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं दामोदर शर्मा।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ

0: अब लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ब्रज लोकगीतों के कार्यक्रम में अभी आप आनंद ले रहे हैं दामोदर शर्मा के गाय लोकगीतों का।

0: जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी।
1: दूसरा कोई मैच है क्या?
2: ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके।
1: हाँ यार, उम्र हो जाती है तो रनर तो लगता ही है,
3: पर बैंकिंग में नहीं।
4: वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं, डिफरेंटली एबल्ड है और आप बैंक नहीं जा सकते, तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर।
3: सीनियर सबसे पहले, RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुकी हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
6: FM 102.2 MHz पर अभी आप आनंद ले रहे हैं दामोदर शर्मा के गाए लोकगीतों का। आइए सुनते हैं इन्हीं का गाया एक और लोकगीत।

0: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए

0: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
1: आराम से मैडम।
0: क्या
1: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
3: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: ब्रज लोकगीतों के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे दामोदर शर्मा के गाए लोकगीत। इसी के साथ कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। दोपहर का 1 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुन सकेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भी भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। और अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं प्रधानमंत्री की यात्रा को कवर करने गई हमारी विशेष संवाददाता मंजू मीणा से। मंजू, प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर वहां के लोगों में कैसा उत्साह है और क्या तैयारियां की गई हैं?
1: जी हाँ कनक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारियां यहाँ पे काफी जोर शोर से चल रही है। प्रधानमंत्री जी बस कुछ ही समय में यहाँ पे पहुंचने वाले हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग ठंड में और अंधेरा हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि भारत और यहाँ के समय के बीच में 6.5 घंटों का फर्क है ऑकलैंड में। उसके बावजूद जो है लोग यहाँ पर, हमने देखा कि 4-5 घंटे पहले से ही जो है वो कतारबद्ध होने लग गए हैं। भारतीय समुदाय के अंदर यहाँ पे काफ़ी उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। और साथ ही आज जो है न्यूजीलैंड में माओरी समुदाय अपना नववर्ष का जो पर्व होता है मातारी की, वो भी मना रहा है। और ऐसे में माओरी समुदाय के लोग भी पारंपरिक अंदाज में किया ओरा मोदी कहकर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर भारतीय समुदाय और स्थानीय न्यूजीलैंड वासियों दोनों में ही प्रधानमंत्री मोदी की इस ऐतिहासिक यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जी कनक,
0: जानकारी के लिए धन्यवाद मंजू।

नीति आयोग के सदस्य डॉ. जोराम अनिया ने यूनिसेफ इंडिया की प्रतिनिधि सिंथिया मैक्रफी और उनके प्रतिनिधिमंडल से नई दिल्ली में मुलाकात की। इसमें बच्चों के विकास, स्कूली शिक्षा और मानव विकास पर सहयोग मजबूत करने पर चर्चा हुई। नीति आयोग के अनुसार बैठक में विशेष रूप से आकांक्षी जिलों और खंडों में सुरक्षित और समावेशी शिक्षण, मूलभूत साक्षरता, अध्यापकों की शिक्षा, विद्यार्थियों के कल्याण, साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा पर बातचीत हुई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि लगातार दूसरी बार स्वच्छ ऊर्जा ने देश की 50% से अधिक बिजली की मांग पूरी की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने बताया कि 6 जुलाई को नवीकरणीय स्रोतों से 50.2% बिजली आपूर्ति हुई। उन्होंने इसे भारत के स्वच्छ ऊर्जा इकोसिस्टम की

0: आपूर्ति हुई। उन्होंने इसे भारत के स्वच्छ ऊर्जा इकोसिस्टम की बढ़ती मजबूती और विश्वसनीयता का प्रमाण बताया। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि आज 5 जिले कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सिरमौर और सोलन जिलों के सभी शिक्षण संस्थान आज बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर में बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 747 अंक बढ़कर 77,488 पर, जबकि निफ्टी 223 अंक की बढ़त के साथ 24,186 पर पहुंच गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए अब जानते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। ब्रजेंद्र सिंह वर्मा की लिखी नौटंकी अखंडता में एकता सुनिएगा रात्रि 10 बजे से। कार्यक्रम की प्रस्तुति नरेश मल्होत्रा की रहेगी। रात्रि 10:30 पर आप सुन सकेंगे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में ध्रुपद और धमहर गायन। कलाकार होंगे श्री कामोद मिश्राव।

आज दोपहर 1:15 पर बहनों के लिए कार्यक्रम लेकर आएंगे वनिता लोग। इस कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे बरसात के मौसम में बच्चों की देखभाल, नशा मुक्त परिवार बनाने में महिलाओं की भूमिका। इसी के साथ श्रोता साथी विजय यादव की लिखी वार्ता विनोद वार्ता सुनेंगे अतिथि। अपनी सांध्यकालीन सभा का आरंभ करेंगे 5:30 पर कार्यक्रम युववाणी से। इस कार्यक्रम में आज की बात क्रम में आज के विषय रहेंगे सामाजिक बदलाव लाने में युवाओं की भूमिका, अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति। इसी के साथ श्रोता साथी फिल्म संगीत का भी आनंद ले सकेंगे।

ब्रज साहित्य का कार्यक्रम संध्या 7:05 पर प्रसारित किया जाएगा। किसान भाई और बहनों के लिए कार्यक्रम होगा 6:15 पर ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय किसानों के लिए कम लागत में अधिक उत्पादन के उपाय, इसी के साथ जल भराव से फसलों के बचाव के भी उपाय बताए जाएंगे। इसी कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे वार्ता, विषय रहेगा पशुओं में बरसात के मौसम में बीमारियां और जल बचाव। इस विषय पर जानकारी देंगी डॉक्टर प्रभा कटियार।

संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी का समय रहेगा, संध्या 7:31। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे आज दोपहर 2:30 से।

संध्या वंदन, यह कार्यक्रम संध्या 6:45 पर आप सुन सकेंगे। एक ही फिल्म से यह कार्यक्रम रात्रि 8:30 से प्रसारित होगा। फिल्म संगीत का कार्यक्रम नवरंग

0: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
1: आराम से मैडम।
0: क्या?
1: आराम से पहुंचेंगे मैडम, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
3: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुकी हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: आइए अब करते हैं अपनी मातृभूमि को नमन।

0: संवेद शुरू में भी आपने सुना देशगान एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
0: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत बहनों के लिए कार्यक्रम वनिता लोक। आज की प्रस्तुति आशु रावत की है।

रिमझिम रिमझिम बारिश आई, रिमझिम रिमझिम बारिश आई, काली घटा फिर है छाई, सड़कों पर है बहता पानी, कागज की है नाव चलानी, चुन्नू मुन्नू आते हैं पानी में नाव चलाते हैं, बारिश का मौसम आया है और बच्चों के मन को भाया है। नमस्कार बहनों, मैं हूँ आज आपके साथ आशु रावत, लेकर आपका अपना कार्यक्रम वनिता लोक, जिसे आप सुन रही हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से 102.2 MHz पर। बहनों, बारिश का मौसम अब अपना असर अच्छे से दिखाने लगा है। हर रोज खूब तेज बारिश होती है और फिर कहो तो थोड़ी देर के लिए धूप निकल आई और फिर खूब तेज बारिश होने लगती है। अब एक तरफ तो बारिश से राहत मिलती है, थोड़ी गर्मी में उमस में थोड़ा सा राहत हो जाती है, तो दूसरी तरफ बहुत सी परेशानियां भी खड़ी हो जाती हैं। अगर बारिश में घर पर रह रहे हैं तो चाय के साथ गर्मा गर्म नाश्ता बहुत अच्छा लगता है, और वो नाश्ता जितना अच्छा लगता है, बाहर निकल कर पता चलता है कि बाहर बारिश की वजह से क्या हो रखा है। हालांकि हर मौसम की अपनी ज़रूरत है और बारिश से हमारा जीवन चलता भी है, लेकिन कुछ बातें हैं, कुछ ऐसी बीमारियां हैं बहनों, जो इस मौसम में पनपने लगती हैं, उनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, खासकर छोटे बच्चों में। हालांकि बारिश में ध्यान तो सभी को रखना चाहिए, बड़ों को भी रखना चाहिए, लेकिन बच्चों का क्या है कि थोड़े छोटे होते हैं, नासमझ होते हैं, अपनी परेशानी ज़्यादा बता नहीं पाते, तो उनका ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि बारिश के मौसम में ही इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा रहता है, फंगस का बहुत डर रहता है, तो अगर कहीं खेलते समय उन्हें चोट लग जाए और फिर वो बेफिक्री से फिर भी खेल रहे हैं, इसमें मिट्टी लग जाए या कुछ भी ऐसा लग जाए जिससे कि वो एरिया परेशानी में आ जाए या बच्चा खुद परेशानी में आ जाए, तो इसका बहुत डर रहता है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं खासकर, उनका इस मौसम में विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। ऐसे मौसम में बहनों मच्छरों से विशेष बचाव करना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि बाहर तो बारिश की वजह से पानी जमा ही हो जाता है, हमारे घरों में भी कूलर में या बहुत सी ऐसी जगह

होती हैं जहाँ हम या हमने फ्लावर पॉट रखा हुआ है उसमें पानी जमा है, तो उनमें भी मच्छर पनप जाते हैं छोटे छोटे, जो कि घर में ही बच्चों को काटते हैं, तो फिर बाद में दिक्कत बनती है। इसलिए कोशिश करिए कि घर में पहली बात तो पानी जमा ना हो, और साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखिए। घर में तो रखिए ही रखिए, अपने घर के बाहर भी अगर कोई ऐसी जगह है कि जिसको आप कर सकते हैं आसपास घर के, तो उसको भी साफ रखिए। जब कभी बच्चे, क्या होता है बहनों, स्कूल से आए, बीच में बारिश पड़ गई या बाहर बारिश में खेलने लगे उनका मन हुआ, तो ऐसा ना करें कि बारिश में से आने के बाद उन्हें तुरंत खाने पीने के लिए या सिर्फ केवल कपड़े ही उनके चेंज कर दें। उन्हें बारिश में से आने के बाद एक बार नहलाएं ज़रूर, पानी ज़रूर उनके शरीर पर डालें, और इसके बाद उन्हें साफ टॉवल से पोंछ कर बिल्कुल उनका शरीर ड्राई हो जाए, इस तरह के बाद फिर उन्हें सूती कपड़े पहनाएं, क्योंकि सूती कपड़े जो होते हैं वो थोड़ा सा मॉइस्चर जो होता है शरीर का उसको भी सोख लेते हैं और शरीर के लिए भी हल्के फुल्के रहते हैं। दूसरी बात बहनों, इन दिनों पानी में बहुत गंदगी आने की शिकायत रहती है, क्योंकि बारिश का पानी इधर उधर भर जाता है, और अगर पानी हमें बाहर से आ रहा है, टंकी के नलों में से आ रहा है, तो वो फिर दिक्कत करता है। तो ऐसे में या तो आप फिल्टर का इस्तेमाल करिए, नहीं तो फिर उबला हुआ पानी बच्चों को तो क्या, सभी घर के सदस्यों को लेना चाहिए, क्योंकि पानी से ही बहुत हद तक बीमारी हमारे शरीर में पहुँचती है। और अगर बच्चा आपका बहुत छोटा है, डायपर पहनता है, तो कोशिश करिए कि समय समय पर डायपर को हटा के उस त्वचा पे पाउडर आते हैं बहुत तरह के, उनको डाला जाए, या फिर उस त्वचा को 2-4 घंटे के लिए दिन में ऐसा रखिए कि वो सूख जाए, जिससे कि बच्चे के रैशेस ना हो। इसके अलावा बहनों, घर का जो खाना होता है उसी को लें, आप भी लें, बच्चों को भी दें, क्योंकि इन दिनों बाहर इन्फेक्शन का इतना डर होता है कि कैसे तेल में बन रही है चीज़ें, कैसे मसालों में बन रही है, या कैसा पानी इस्तेमाल हो रहा है उनमें, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात होती है। तो इससे अच्छा है कि बाहर खाया ही ना जाए, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर फास्ट फूड के भी शौकीन होते हैं। तो कोशिश करिए इन दिनों में बच्चे फास्ट फूड यानी कि बाहर का तो कुछ भी हो वो बिल्कुल ना खाएं, जो भी कुछ बनाएं, जैसा भी आप बनाएं, घर का ही उनको दें। और एक बात सबसे ज़रूरी कि जब भी वो कुछ भी खाएं, हाथ ज़रूर साफ करवाएं उनके, जिससे कि हाथों के जो जर्म्स वायरस होते हैं वो उनके खाने में उनके शरीर में ना पहुँचें। और क्योंकि बहनों बच्चों को बारिश में खेलना नहाना तो बहुत पसंद होता ही है, तो कोशिश करिए कि जब भी वो बारिश में खेल कर या मौज मस्ती करके अंदर आए, तो आप उन्हें साफ करके कुछ गर्मा गर्म जरूर खिलाएं पिलाएं, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर गर्म गर्म दूध भी आपने दे दिया तो उससे उनको काफ़ी राहत पड़ जाती है, सर्दी जुकाम होने का खतरा कम रहता है। और सबसे ज़रूरी बात तो बहनों यही है कि आसपास सफाई रखी जाए, जिससे कि मक्खी मच्छर न पनपें। और एक बात और कि जो बच्चे ज़्यादा छोटे होते हैं, जो अपने नेल्स नहीं काट सकते, आप उनके नाखून ज़रूर काट के रखें, क्योंकि नाखूनों में भी बहुत गंदगी जमा हो जाती है, और ये भी बीमारी का बहुत बड़ा पर्याय बन जाते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं बहनों कुछ, जिनसे अगर आप बच्चों की देखभाल इस तरह से करें, इन बातों को थोड़ा सा फॉलो करें, तो बहुत हद तक बच्चों को परेशानी से बचा सकती हैं। और बारिश का मौसम है, सुहावना तो होता ही है, इसलिए थोड़ा बच्चों के साथ आप भी लुत्फ़ लीजिए, लेकिन सावधानी से।

0: बहनों, जीवन अगर हंसते खेलते बीते तो हर समस्या भी बड़ी सरल और सहज लगती है। जिंदगी की उथल पुथल में खुद की खुशी की जिम्मेदारी भी हमारी ही है, इसलिए हंसी विनोद जीवन में चलते रहना चाहिए और जीवन का हिस्सा होना चाहिए कि जब भी ऐसा कुछ लगे कि जीवन थोड़ा सा मोनोटोनस हो रहा है, तो कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी हंसी ठिठोली होनी चाहिए जिससे कि जीवन में थोड़ी सी सदाबहार पने की चीजें आ सकें। तो इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक विनोद वार्ता अतिथि, जिसे प्रस्तुत किया है विजय यादव ने।
1: अतिथि देवो भव। यह उक्ति मेरे परिवार के संस्कारों की वजह से हमेशा मेरे मस्तिष्क में गूंजती रहती है। अतिथि देवता स्वरूप हैं। न जाने कब कौन किस रूप में आता है और न जाने क्या ले और देकर चला जाता है। यही बातें मेरे बड़ों ने मुझे सिखाई हैं, लेकिन आज आज आज तुम्हारे चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि? तुम सोफे पर बैठे निसंकोच धुएं के गोल गोल छल्ले उड़ा रहे हो और मैं अपनी गोल होती जेब को टटोलकर मन महसूस रहा हूं। तुम्हारे ठीक सामने कैलेंडर टंगा है, देख रहे हो ना? इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखा दिखा कर तारीखें बदल रहा हूं, ये तुम जानते हो। अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि आज तुम्हें 4था दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का 4था भारी दिन, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद नील आर्मस्ट्रांग भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके।

तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैगनी चट्टानों को देख लिया। अब तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके हो। लौट जाओ अतिथि, लौट जाओ। क्या तुम्हें तुम्हारी धरती नहीं पुकारती? उस दिन जब तुम आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अंदर ही अंदर मेरा बटुआ कांप गया था। उसके बावजूद एक स्नेहिल मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर प्रणाम किया। तुम्हारे सम्मान में हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी कि तू दूसरे दिन किसी ट्रेन से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे, मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहां से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाने शहर के वातानुकूलित थिएटर में ले गए। बस हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है, जिससे आगे हम अब तक किसी के लिए नहीं बढ़े हैं। इसके तुरंत बाद भावविनी विदाई का वह बीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूं। यह आघात अप्रत्याशित था और इसकी चोट बड़ी मार्मिक थी। तुम्हारे सामीप्य की बेला एकाएक यूं रबर की तरह खिंच जाएगी, इसका मुझे अनुमान न था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदा देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। किसी ड्राई क्लीनर्स को दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे, मैंने कहा। मेरे मन ही मन एक विश्वास पनप रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। कहाँ है ड्राई क्लीनर्स? तुमने मोटे लेंस के चश्मे से झांकते हुए अपनी चिर परिचित मुस्कान बिखेरते हुए मुझसे पूछा। चलो चलते हैं, मैंने कहा और अपनी बनियान पर शर्ट डालने की औपचारिकता पूरी की। कहाँ जा रहे हो जी? पत्नी ने चिहकते हुए पूछा। शायद उन्हें यह सुखद आभास हो रहा था कि मैं अपने अतिथि को विदा करने जा रहा हूं। इनके कपड़े धुलवाने ड्राई क्लीनर्स की दुकान तक जा रहा हूं, खींचे निपोर कर बड़े ही रूखे अंदाज में मैंने जवाब दिया। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक गोल होकर बड़ी बड़ी हो गईं। आज से 20 साल पहले उनकी ऐसी आंखों को देखकर मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त की थी, पर अब जब वे ही आंखें बड़ी होती हैं तो मन छोटा होने लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अभी और दिनों तक ठहरेगा। आशंका निर्मूल नहीं थी। अतिथि, तुम जा नहीं रहे? तुम्हारे कपड़े धुलकर आ भी गए और अब भी तुम यहीं हो? तुम्हारे भारी भरकम शरीर से सलवटें पड़ी चादर बदली जा चुकी हैं। आज 5वां दिन है और तुम यहीं हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। ठाहकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे, अब दिखाई नहीं पड़ रहे। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनों से टप्पे खा खाकर फिर से कमरे के बीच आकर चुप पड़ी है। अब इसे न तुम हिला रहे हो और न मैं। कल से मैं मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास ना मन होते हुए भी पढ़ रहा हूं और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया, चर्चा के सभी विषय समाप्त हो गए। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, महंगाई, भ्रष्टाचार, साहित्य और यहां तक कि अपनी पुरानी यादों का जिक्र भी कर लिया। और अब एक चुप्पी है, निःशब्द। सारे शब्द चुक गए लगते हैं। सरल सौहार्द अब शनि शनि बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही

0: पर तुम जा नहीं रहे। किस अदृश्य गौंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहां चिपक गया है? मैं इस भेद को सपरिवार समझ नहीं पा रहा हूं। बार बार मन मस्तिष्क में यह प्रश्न उठता है कि तुम कब जाओगे अतिथि? कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये? मैंने अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कंधे उचका कर कहा, क्या कह सकता हूं, मैंने तो आज खिचड़ी बना रही हूं। हल्की रहेगी, पत्नी ने माथे पर बल डालते हुए धीरे से कहा। हाँ हाँ बनाओ। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी, डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना होगा। अतिथि, तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है। तुम जाओ ना अतिथि, तुम जाओ। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना? मैं जानता हूँ, दूसरों के यहाँ अच्छा लगता ही है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत शायद इसी कारण गाए जाते हैं। होम को शायद इसी कारण स्वीट होम कहा जाता है कि लोग दूसरे के होम को, स्वीटनेस को काटने के ना दौड़ें। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो मेरे दोस्त कि शराफत भी कोई एक चीज़ होती है और गेट आउट भी एक वाक्य होता है जो बोला जा सकता है। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो सूरज की पहली किरण तुम्हारे बिस्तर पर आ तुम्हें चूमेगी, मुझे आशा है तुम घर लौटने का सम्मानपूर्वक निर्णय ले लोगे। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। उसके बाद बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा और मैं बहक जाऊंगा। मेरे अतिथि, पहले दिन तुम भगवान थे इसलिए तुम्हारे लिए पलक पांवड़े बिछाए, दूसरे दिन इंसान थे इंसानियत के नाते तुम्हारा स्वागत सत्कार किया, तीसरे दिन हैवान थे, लेकिन अब क्या हो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हैवानियत की हद भी पार हो गई है। मैं जानता हूँ अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। मैं तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक दिनों तक साथ नहीं रहते। देवता दर्शन देकर लौट जाता है। तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे उससे पूर्व तुम लौट जाओ अतिथि, अब तुम जाओ अतिथि, तुम जाओ।
1: तो बहनों, अभी आप सुन रही थी एक विनोद वार्ता अतिथि। वार्ताकार थे विजय यादव। बहनों, किसी भी परिवार में महिलाओं की जो भूमिका होती है वो काफी अहम होती है, क्योंकि घर में बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक की करना, फिर उसके बाद बाहर के कामों को भी देखना, उसमें उनकी काफ़ी मशक्कत हो जाती है, क्योंकि महिलाओं का दिन भी बहुत बिजी होता है। लेकिन कभी कभी देखने में आता है कि कुछ घरों में ऐसे परिस्थितियां होती हैं, ऐसे हालात होते हैं जिनकी वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और महिलाओं को तो क्या ही, घर के जितने भी सदस्य होते हैं उन सबको परेशानी का सामना करना पड़ता है। कारण तो बहुत से होते हैं बहनों, लेकिन उन्हीं कारणों में से एक है किसी भी व्यक्ति को नशे की आदत होना। नशे की वजह से आज बहुत से परिवार बर्बाद हो रहे हैं, ये हम सब अच्छे से जानते हैं, क्योंकि नशे ने जिस तरह से जगहों पर अपनी पैठ बनाई हुई है, बच्चों को, बड़ों को बर्बाद किया जा रहा है, उससे हम अछूते नहीं हैं और हम बहुत सी चीज़ों को जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी रोक नहीं पाते हैं। तो ये नशे की आदत होना किसी भी व्यक्ति के लिए तो हानिकारक होता ही है बहनों, साथ में परिवार के सदस्यों को भी बहुत परेशान करता है, दुखी करता है। बहुत से परिवारों का सुख चैन इस नशे की आदत की वजह से छिन जाता है। अब उस व्यक्ति को ये आदत कैसे लगी, कहाँ से लगी, वो एक अलग बात है, लेकिन परिवार दुखी पूरा का पूरा रहता है। लेकिन बहनों, हम ये भी जानते हैं कि अगर महिलाएं दिल से, क्योंकि महिलाएं दिमाग के साथ साथ दिल से भी ज़्यादा सोचती हैं, और अगर वो ठान लें कि किसी भी व्यक्ति को, परिवार के किसी भी सदस्य को इस आदत से उन्हें छुटकारा दिलाना है, तो वो ये कर सकती हैं, और बहुत हद तक देखा जाए तो कर भी रही हैं, योगदान दे रही हैं इस बात में कि उनके किसी भी परिवार के सदस्य को इस तरह की, मतलब जो आदत है, लत है, वो ना लगे। महिलाओं का योगदान नशा मुक्ति में व्यक्ति के लिए काफ़ी सहायक हो सकता है। जैसे महिलाओं का अपने परिवार में जुड़ाव तो होता ही है, हम सब ये इस बात को अच्छे से जानते हैं, समझते हैं बहनों। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि शुरू से ही नशे के दुष्प्रभावों के बारे में अपने बच्चों को जागरूक करना, उसके बारे में बताना कि कैसे ये शरीर को नुकसान पहुँचाता है,

से ये जीवन को नुकसान पहुंचाता है, इस बारे में उनको जागरूक करके बहुत हद तक उनकी मदद कर सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति परिवार में इस आदत का शिकार भी है, तो पहले कुछ

सुनते हैं, समझते हैं बहनों, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि शुरू से ही नशे के दुष्प्रभावों के बारे में अपने बच्चों को जागरूक करना, उसके बारे में बताना कि कैसे ये शरीर को नुकसान पहुंचाता है, कैसे ये जीवन को नुकसान पहुंचाता है, इस बारे में उनको जागरूक करके बहुत हद तक उनकी मदद कर सकती हैं। और अगर कोई व्यक्ति परिवार में इस आदत का शिकार भी है, तो पहले कोशिश करिए कि लड़ाई झगड़ा ना हो, प्रेम से उसको समझाया जाए, सांत्वना दी जाए, थोड़ा सा उसको अटैचमेंट ऐसे रखा जाए, दिखाया जाए कि वो नशे की आदत से दूर होने में, मतलब ये सारी बातें उसकी मदद कर सकें। क्योंकि महिलाएं जो होती हैं बहनों, वो एक माँ के रूप में, एक बहन के रूप में, एक पत्नी के रूप में घर की धुरी होती हैं, इसलिए उनका जो भावनात्मक सिंबल होता है, उनका जो एक अटैचमेंट होता है आदमी के लिए, वो आदमी को इस बुरी लत से छुटकारा दिलाने में काफ़ी मदद कर सकता है। और सबसे बड़ी बात बहनों, घर का माहौल सकारात्मक रखने में, पॉजिटिव रखने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इस बात का भी खास ख्याल रख सकती हैं कि छोटी मोटी बातों को, अगर कोई बात ऐसी हो भी रही है घर में, तो उसको थोड़ा नज़रअंदाज करके, उन सब बातों से दूर रह के घर के माहौल को खुशनुमा रखा जाए। क्योंकि अपने मन को खुश रखना, आप खुश रहेंगी तो घर का माहौल भी खुशनुमा रहेगा, क्योंकि अपने मन को खुश रखना ये हमारी ही जिम्मेदारी है, कोई सामने वाला आपको खुश नहीं करेगा। तो आप भी खुश रहिए, इससे आपके परिवार का माहौल भी खुशनुमा रहेगा। और अगर काफ़ी कोशिशों के बाद भी जो पीड़ित व्यक्ति है, अगर किसी को लत है इस परेशानी की, इस नशे की, और वो नहीं संभल रहा है, तो नशा मुक्ति केंद्रों की मदद भी ली जा सकती है। इस तरह बहनों, अगर कोशिश करें तो सब कुछ हो सकता है। और कोशिश तो कर ही सकते हैं कि किसी की ज़िंदगी इस तरह नशे की वजह से ज़ाया ना हो।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम वनिता लोक FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

फिल्म परदेश से लिया ये गीत अभी आपने सुना कुमार सानू अलका याग्निक के युगल सुरों में। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत के कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। दोपहर के 2 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुन सकेंगे समाचार।

0: Auckland on 2-day visit to hold talks with his New Zealand counterpart. Centre amends drugs rules to regulate high alcohol-containing drug formulations. India strongly condemns conflict-related sexual violence at UNSC, describes it as tool of war and terrorism. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall in Uttarakhand today. In FIFA World Cup, Spain to face Belgium in second quarter-final tonight. And in women's cricket, India to take on England in historic one-off test match at Lord's Cricket Ground in London this evening. The details of these stories and more log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ के नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के 2 क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड पहुंच रहे हैं। श्री मोदी वहां न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। भारत और न्यूजीलैंड इस वर्ष अपने खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। हमारे विशेष संवाददाता मंजू मीणा ने बताया है कि हॉकी से शुरू हुई यह यात्रा आज भी दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग का मजबूत माध्यम बनी हुई है।
2: भारत और न्यूजीलैंड के खेल संबंधों की शुरुआत वर्ष 1926 में हुई, जब भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड दौरे पर आई। इस ऐतिहासिक टीम का हिस्सा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद भी थे। यही दौरा उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत माना जाता है और यहीं से उन्होंने दुनिया को अपनी अद्भुत हॉकी का परिचय कराया। 1 सदी बाद दोनों देशों के खेल संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। इसी वर्ष ऑकलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया। पूर्व हॉकी न्यूजीलैंड मुख्य कार्यकारी अधिकारी और 1976 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रमेश पटेल ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा से दोनों देशों के बीच खेल सहयोग को नई गति मिलेगी। सौ वर्षों की इस खेल यात्रा ने यह साबित किया है कि हॉकी केवल एक खेल नहीं बल्कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मित्रता, विश्वास और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों का एक सशक्त सेतु भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे।
0: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया।

0: इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: भारत ने युद्ध के दौरान की जाने वाली यौन हिंसा CRSV की कड़ी निंदा करते हुए इसे युद्ध, आतंकवाद, यातना और राजनीतिक दमन का एक हथियार बताया है, जिसका प्रयोग समुदायों को अधीन करने, असहमति को दबाने और मानवीय पीड़ा पहुंचाने के लिए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने युद्ध की अवधि में की जाने वाली यौन हिंसा पर कहा कि इस तरह के हिंसा में दंड न दिए जाने के कारण ये जारी है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे जघन्य कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हाल में हमलों के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सेना की नई गतिविधियों के बारे में जानकारी दी है। इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार दोनों नेताओं ने कल रात फोन पर बातचीत की और अमेरिका तथा इजरायल के बीच विभिन्न क्षेत्रों में तालमेल बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कल दावा किया कि उसने उत्तरी जॉर्डन में अमेरिका के अल अजराक सैन्य हवाई अड्डे पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। उसने कहा कि हमला तेहरान पर हाल ही में हुए अमेरिकी हमले के जवाब में किया गया था। उसने चेतावनी दी कि अमेरिका की ओर से किसी भी सैन्य कार्रवाई किए जाने पर जवाब में क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर और हमले किए जाएंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन यायर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonyayar.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा वाली औषधियों के नियमन को और सख्त करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इथाइल अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए अनुसूची के तहत लाइसेंस अनिवार्यता से मिली मौजूदा छूट समाप्त कर दी है। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा में 12% से अधिक इथाइल अल्कोहल वाली सभी औषधियों को अब छूट प्रदान नहीं की जाएगी। ऐसी औषधियों को औषधि और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इस संशोधन से अल्कोहल युक्त औषधीय उत्पादों पर नियामक निगरानी और मजबूत होने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज वर्चुअल माध्यम से शिमला स्थित भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान की प्रदर्शनी वंदे मातरम एक यात्रा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सरदार पटेल का दृष्टिकोण, एकीकरण, एकता और संघवाद विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता सेनानियों की कई पीढ़ियों को साहस, बलिदान और आशा से प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरदार पटेल ने एक राष्ट्र, एक संविधान और साझा राष्ट्रीय भविष्य की मजबूत नींव रखी।
2: टुडे भारत इज मार्चिंग कॉन्फिडेंटली टुवर्ड्स द विजन सेट बाय आवर हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ए विकसित भारत बाय 2047। नेशनल इंटीग्रेशन, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी रिमेन एज रिलेवेंट एज एवर। सरदार वल्लभभाई पटेल जी बिलीव्ड फॉर ए रिच डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया ए स्ट्रांग सेंटर वाज एसेंशियल टू मेंटेन यूनिटी एंड सिक्योरिटी।
1: गुजरात में राज्य सरकार ने सूरत के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य करने के लिए बड़े पैमाने पर राहत अभियान शुरू किया है। उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने प्रशासन को निर्देश दिया कि अगले 48 से 72 घंटों के अंदर सामान्य जीवन और कारोबार पूरी तरह से बहाल किया जाए। गोवा सरकार ने प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि इस कदम से सरकारों को विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और बेहतर शासन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट।
3: एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर विचार विमर्श के लिए गोवा आई संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष गोवा सरकार ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि एक साथ चुनाव होने से सरकारें विकास कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस संबंध में अपने सुझाव समिति को सौंप दिए हैं और विश्वास व्यक्त किया है कि यह प्रस्ताव सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया कि बैठक में शामिल मंत्रियों ने कहा कि विभिन्न राज्यों में बार बार होने वाले चुनावों का गोवा के पर्यटन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बैठक में मंत्री सुदीन ढवळीकर, सुभाष पल देसाई, सुभाष शिरोडकर और दिगंबर कामत भी उपस्थित थे। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से महेश चोपड़े।
1: पंजाब के मुख्य निर्वाचन

0: कार्यालय ने राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 11 और 12 जुलाई को 2 दिन का विशेष शिविर आयोजित किया है। इससे पात्र मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकेंगे। ये शिविर सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक जारी रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने 100% डिजिटल डेटा कलेक्शन के साथ जनगणना 2027 के पहले चरण यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। 1 महीने तक चले इस ऑपरेशन में केंद्र शासित प्रदेश के 24,000 से ज्यादा हाउस लिस्टिंग ब्लॉक शामिल किए गए। अब अगले चरण की तैयारी शुरू होगी। इसमें सितंबर में बर्फबारी वाले इलाकों में जनसंख्या की गिनती और इस साल अक्टूबर तक जिला जनगणना हैंडबुक तैयार करना शामिल है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे News on AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 दिन तक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी भारत के उत्तरी भागों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ जगह आज तड़के हल्की बारिश हुई। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर शशिकांत ने बताया कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में आज और कल बारिश की कोई चेतावनी नहीं है।
1: 1 जून से लेकर के 9 जुलाई तक भारत में -14% वर्षा कम दर्ज की गई है और आने वाले अगर हम 2 दिन की बात तो वर्षा का मुख्य जोन जो रहने वाला है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा शामिल है। कल भी जो है यही पॉकेट्स मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जहाँ पर वर्षा का स्पेल हैवी टू वेरी हैवी के रूप में ऑरेंज कलर के लिए हमने चेतावनी जारी की है।
0: हिमाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहां कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
2: शिमला, सोलन, बसरमौर जिलों सहित अन्य क्षेत्रों में व्यापक वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने व नदी नालों के आसपास न जाने की अपील की है। भारी बारिश के चलते सोलन और सिरमौर जिले में आज सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। लगातार वर्षा से प्रदेश में विभिन्न इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं और कई स्थानों पर बिजली व पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 1 सप्ताह तक प्रदेश भर में मौसम के खराब बने रहने की भावना जताई है। आज 5 जिलों कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निस्वार्थ कर्म मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सेवा और समर्पण की इसी भावना से प्रेरित होकर देश प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिल्ली सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और दिल्ली रिज इकोसिस्टम के संरक्षण के माध्यम से दिल्ली को हरा भरा बनाने की पहल का स्वागत किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में उन्होंने इस पहल को पर्यावरण संरक्षण और सतत शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। फीफा विश्व कप के 2वें क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। उधर फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बॉस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बाप्पे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। एम्बाप्पे 30 साल की उम्र से पहले विश्व कप में 20 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान में महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर में बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 755 अंक बढ़कर 77,497 पर जबकि निफ्टी 232 अंक की बढ़त के साथ 24,195 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच गए हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से, और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है CIET व NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: नंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: माँ पिता भगवान का वो अनमोल उपहार हैं जिनका प्रेम और आशीर्वाद जीवन को हर कठिनाई से पार करा देता है।
1: बहुत बहुत सुंदर विचार, इसके लिए आपका धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का। लिखते हैं,
2: विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार, जय जोहार। 18 तारीख को चिड़िया की बच्ची कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। अच्छी प्रस्तुति के लिए NCERT उमंग के साथ विमलेश जी और अजीत जी को बहुत बहुत बधाई।
1: और बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी।
2: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर।
1: और गांव बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से अमन वर्मा, रमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा और वर्मा परिवार के सभी सदस्य।
2: और कुतुबपुर तहसील हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा।
1: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों को भेजने के लिए। और आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी आपकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में कुछ और नई और रोचक जानकारियों के साथ।
2: श्रोताओं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ों की। जैसा कि हमने इस सप्ताह की पहली कड़ी में सुना था, पेड़ सिर्फ पेड़ ही नहीं, वे इस धरती के सबसे प्राचीन जीव हैं। उनके आने के बाद ही दूसरा जीव जगत शुरू हो सका, क्योंकि वे वर्षा, भोजन, औषधि और श्वसन के मुख्य स्रोत हैं।
1: श्रोताओं, क्या आप जानना चाहेंगे कि पेड़ों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो चलिए आपको बताते हैं।
2: पेड़ों की उत्पत्ति पृथ्वी के इतिहास की सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक है। कहते हैं लगभग 4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर पेड़ नहीं थे, केवल सूक्ष्म जीव थे। कालांतर में समुद्रों में शैवाल जैसे जीव विकसित हुए जो तैरते थे और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते थे।
1: धीरे धीरे ये शैवाल जैसे जीव समुद्र से निकलकर भूमि पर आए। इन्हीं से प्रथम स्थलीय पौधों का विकास हुआ।
2: प्रश्न ये है कि इन पौधों ने क्यों बढ़ना शुरू किया? इसका कारण ये था कि जीने के लिए वे अधिक सूर्य का प्रकाश पा सकें और दूसरे पौधों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। इसी क्रम में ये पौधे बढ़ते बढ़ते पेड़ बन गए। ध्यान दें तो इस प्रक्रिया में विकासवाद का सिद्धांत काम करता है, यानी सफलतम ही टिका रहता है।
1: तो श्रोताओ, ये थी पेड़ों की उत्पत्ति की वैज्ञानिक कथा। अब जरा ध्यान दें, गर्मी का मौसम है, राह चलते चलते जब बहुत गर्मी लगती है तो आप किसी पेड़ की छाया में शरण लेते हैं
2: जी।
1: क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ठीक उस समय जब आप उसकी छाया का आनंद ले रहे होते हैं, उस समय वो पेड़ क्या क्या कर रहा होता है?
2: ध्यान से सुनिए मित्रों, उस समय वो हवा को ठंडा कर रहा होता है, क्योंकि वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा एक प्रकार से प्राकृतिक एसी की तरह काम कर रहा होता है।
1: श्रोताओं, ठीक उस समय वो हमें ऑक्सीजन दे रहा होता है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अवशोषित कर रहा होता है जो हमारे लिए हानिकारक है।
2: उस समय वो शोर को कम कर रहा होता है, क्योंकि पत्तियां और शाखाएं प्रदूषित वायु को ही नहीं शोर को भी अवशोषित करती हैं। तभी तो कहते हैं पेड़ों के नीचे या जंगलों में एक

0: शांति का आभास होता है।
1: श्रोताओ एक बात और, ठीक उस समय वो पेड़ वर्षा और जल संरक्षण में योगदान दे रहा होता है, जिससे भविष्य में हमें भूजल और वर्षा का जल लगातार मिलता रहे।
0: उस समय वो हजारों कीटों, कवकों, पक्षियों और जीवों को आश्रय देकर प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में मदद कर रहा होता है।
1: सचमुच श्रोताओ, एक पेड़ हमारे और दूसरों के लिए मौन रहकर भी इतनी सेवा कर रहा होता है। वह बेशक मौन है, लेकिन मानो कहता है, मैं तुम्हारे लिए हवा को शुद्ध कर रहा हूँ, धरती को ठंडा करके जलवायु परिवर्तन की गति को यथासंभव रोक रहा हूँ,
0: स्वयं धूप सहकर तुम्हें छाया दे रहा हूँ, वर्षा लाने में सहायता कर रहा हूँ, मिट्टी के कटाव को रोक रहा हूँ। बदले में मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे और अन्य पेड़ों को जीवित रहने दो। हम सभी पेड़ धरती के फेफड़े हैं।
1: जी हाँ श्रोताओ, अब जब किसी पेड़ को देखें तो इन बातों को जरूर स्मरण कीजिएगा। पेड़ वास्तव में हमारे लिए प्रकृति के मौन लेकिन सबसे बहुमूल्य उपहार हैं।
0: तो ये थी पेड़ों के बारे में हमारी रोचक जानकारी इस सप्ताह की श्रृंखला में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
1: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो उस समय वो क्या क्या कर रहा होता है, कोई दो या तीन कारण बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो उस समय क्या क्या कर रहा होता है, कोई दो या तीन कारण बताइए।
1: 8800440559 पर जो हमारा IVRS नंबर है और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम जो एक गीत के रूप में देश को समर्पित है। शीर्षक है प्यारा भारत।
0: ये कक्षा 3 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक सितार की एक नज्म पर आधारित है। श्रोताओ, ये खूबसूरत नज्म आपको ले जाएगी भारत के गगनचुंबी पर्वतों, कलकल करती नदियों, लहलहाती फसलों के मैदानों, घाटियों और फलों के बगीचों में।
1: तो आइए करते हैं भारत भ्रमण इस नज्म के साथ। शीर्षक है भारत प्यारा।

0: प्यारा भारत।
1: अभी आप सुन रहे थे गीत भारत प्यारा,
2: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मौर्य कालीन पाटलिपुत्र।
1: इस कार्यक्रम में मौर्य साम्राज्य के महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में विस्तार से बताया गया है। विशेषकर ये उल्लेख किया गया है कि उनके शासनकाल में जनतांत्रिक मूल्य कितने ऊंचे थे, खुफिया व्यवस्था कैसी थी और चीन के यात्रियों ने उनकी कीर्ति की कैसी प्रशंसा की।

मेरा नाम है पाटलिपुत्र। अब लोग मुझे बिहार प्रदेश की राजधानी पटना के नाम से जानते हैं। मेरा इतिहास बहुत पुराना है।

इस बात को 2000 वर्ष से भी अधिक बीत चुके हैं जब एक छोटा सा गांव था। मैं नाम था पाटली। यहां वहां कुछ खेत, कुछ झोपड़ियां, पास में कल कल करती गंगा की निर्मल धारा। एक घाट था गंगा पार जाने के लिए। वहां एक दो नौकाएं खड़ी रहती। उसी घाट से महात्मा बुद्ध ने नदी पार की थी वैशाली जाने के लिए।

0: महात्मा बुद्ध का नाम मशहूर हो रहा था।
1: उन दिनों मगध पर मौर्यों का राज्य था, जो बिहार के पटना और गया जिलों में फैला हुआ था। मगध की सीमाओं को बढ़ाया बिंबिसार ने। एक बार वहां भयानक आग लग गई। इसके बाद बिंबिसार ने पास ही में नई राजधानी राजगृह का निर्माण करवाया।

0: राजा बिंबिसार के बाद मगध के सिंहासन पर बैठा अजात शत्रु। महात्मा बुद्ध के सम्मान में अजात शत्रु ने घोषणा करवाई।
1: सुने सुने सुने, सभी ग्रामवासी सुने, सम्राट अजात शत्रु ने महात्मा बुद्ध के सम्मान में ये घोषणा की है कि आज से पाटली दुर्ग का मुख्य द्वार गौतम द्वार और गंगा नदी का घाट गौतम घाट कहलाएगा।

महात्मा बुद्ध ने पाटली के विषय में भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में पाटली एक प्रमुख नगर और व्यापार का बड़ा केंद्र बन जाएगा। जब बुद्ध पाटली ग्राम आए थे तो वे 79 वर्ष के थे। इसके एक वर्ष बाद ही कुशीनगर में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया।

अजात शत्रु के बाद राजा बना उसका पुत्र उदाई भद्र। उदाई भद्र अपने पिता अजात शत्रु की तरह विजेता तो न था, पर उसे नए नए राजमहल बनवाने का शौक था। उदाई भद्र ने ही मुझे मगध की राजधानी बनाया।

0: वो 16 वर्षों तक मगध का राजा बना रहा।
1: समय बदला, मगध का सिंहासन महापद्म नंद के पास चला गया। इसी ने नंद वंश चलाया था।
0: पर मैं खुश नहीं था। मैं एक बड़ा नगर जरूर बन गया था। मेरा नाम दूर दूर तक मशहूर हो गया था, लेकिन मगध की जनता दुखी थी। महापद्म नंद के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे।

महापद्म नंद के बाद मगध का राजा बना धन नंद। बड़ी सेना, अपार धन संपत्ति थी उसके पास, मगर था वो बहुत ही घमंडी। धननंद ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी जो उसके पतन का कारण बनी। उसने तक्षशिला के प्रसिद्ध आचार्य कौटिल्य का भरे दरबार में अपमान कर दिया। अपमानित कौटिल्य ने प्रतिज्ञा की

0: अत्याचारी धननंद, मैं कौटिल्य आज प्रतिज्ञा करता हूं कि तेरा सर्वनाश करूंगा, सर्वनाश।
1: और अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को चुना। मौर्य कुल का वो वीर युवक अपना देश छोड़कर भटक रहा था। कौटिल्य ने उसे तक्षशिला में शिक्षा दी।
2: और उधर भारत से बहुत दूर मैसिडोनिया में साहसी सिकंदर अपने पिता फिलिप के बाद राजा बना था। समय था ईसा से 336 वर्ष पूर्व। सिकंदर का सपना था विश्व विजेता बनने का। उसकी आंधी सारी दुनिया पर छा जाने के लिए उमड़ने लगी।

सिकंदर बढ़ता गया, उसकी आंधी बढ़ती गई। 11 वर्षों में हर तरफ अपनी जीत के डंके बजाता हुआ सिकंदर भारत की सीमा पर आ खड़ा हुआ। छोटे छोटे राज्यों में बटा था तब का भारत। लोग वीर थे लेकिन आपस में लड़ते रहते थे। अभिसार के राजकुमार आम्भी ने सिकंदर का स्वागत किया, लेकिन राजा पुरु ने

0: सिकंदर का डट कर मुकाबला किया।
1: अरे

पोरू की पराजय हुई। सिकंदर जीत तो गया, परंतु अब उसके सैनिक थक गए थे। उनका मनोबल गिरता जा रहा था। उन्हें कदम कदम पर कड़ी टक्कर मिल रही थी। आगे बढ़ने की हिम्मत खत्म हो रही थी।

0: गजब हो गया। सेना आगे बढ़ने से मना कर रही है वीर सिकंदर।
1: क्या आगे बढ़ने से मना कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैसिडोनिया का विश्व विजयी बनने का सपना चूर चूर हो जाएगा?
2: वीर सिकंदर, आप स्वयं सैनिकों से बात क्यों नहीं करते?
1: मैं ऐसा ही करूंगा। जाओ, सारे सैनिकों को एक जगह इकट्ठा करो। ये सिकंदर का आदेश है।
3: जी सम्राट, ऐसा ही होगा।
2: ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा।
1: मेरे वीर सैनिकों, क्या मैंने ठीक सुना है कि मैसिडोनिया की बहादुर सेना ने अब आगे बढ़ने से इनकार कर दिया है और वो वापस लौटना चाहती है? मैं पूछता हूं, ऐसा क्यों? जिस काम के लिए हमने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, जिस काम में हमने अपने बहादुर साथियों की जान की बाजी तक लगा दी, आज उसी काम से तुम सब भागना चाहते हो? याद है तुम्हें, हमारी आंधी के सामने बड़े बड़े सम्राट तक उखड़ गए और आज चारों ओर सिकंदर का डंका बज रहा है। चुप क्यों हो? मुझे जवाब चाहिए। क्या हमारी तलवारों की धार खत्म हो गई है? क्या हमारी भुजाएं खोखली हो गई है? ये व्यास नदी देख रहे हो ना, इस नदी को पार करते ही
3: हम वापस लौटना चाहते हैं।
1: सुनो मेरे वीरों, व्यास नदी को पार करते ही हमें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा।
3: हमें कुछ नहीं चाहिए, हम
0: मैसिडोनिया चलो,
3: वापस चलो
0: सम्राट।
1: सुनो मेरे वीरों, सुनो मेरे वीरों,
3: सबर करो साथियों। अरे कुछ तो सबर करो साथियों, जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो आगे क्यों ना बढ़ा जाए? अगर मैसिडोनिया वापस चले भी गए तो लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? हम सम्राट की बात नहीं डाल सकते।
1: शाबाश मेरे वीरों, मुझे तुमसे यही आशा थी।

0: तुम सब सैनिकों के घेरे में हो। इस निर्जन खंडहर में आधी रात को क्या षड्यंत्र हो रहा था हम जान चुके हैं।
1: महाराज चंद्रगुप्त आप?
0: हाँ
2: महाराज, देखिए आचार्य कौटिल्य भी आ रहे हैं।
0: आचार्य प्रणाम, आप इस वक्त यहाँ?
3: आश्चर्य न करो चंद्र, मगध को असंख्य नेत्रों वाली गुप्तचर व्यवस्था चाहिए। मैं सावधान हूं।
0: धन्य हो आचार्य, मौर्य साम्राज्य को आपकी बहुत आवश्यकता है।
4: धन्य हो आचार्य,
5: धन्य हो
4: आचार्य,
5: धन्य हो।
6: मगध सुखी था। चंद्रगुप्त प्रजा की भलाई करने वाला न्यायप्रिय शासक था, मगर एक बार फिर संकट सिकंदर के सेनापति निकेटर सेल्यूकस के रूप में बढ़ा आ रहा था।

0: सेल्यूकस भारत को जीतने का सपना लेकर आ रहा था, लेकिन अब भारत बदल चुका था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को बुरी तरह पराजित किया।
1: बेचारा सेल्यूकस भारत को जीतने आया था, पर उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। मेगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत बनकर आया था। वो 4 वर्ष तक दरबार में रहा।

0: समय बदला। चंद्रगुप्त के शासन के 25 वर्ष बाद बिंदुसार राजा बना और फिर बारी आई उसके मझले बेटे अशोक मौर्य की। अशोक बहुत वीर था। उसने उज्जैनी और तक्षशिला के विद्रोह को सफलतापूर्वक शांत कर दिया और फिर हुआ कलिंग युद्ध।
1: ये क्या कर डाला मैंने, इतना रक्त बात सिर्फ विजय प्राप्त करने के लिए? नहीं नहीं, आगे ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अशोक मौर्य प्रतिज्ञा करता हूं, कभी युद्ध नहीं करूंगा। अब कभी युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, अब कभी युद्ध नहीं करूंगा।
0: कलिंग ने अशोक का जीवन बदल डाला। उसकी रुचि अहिंसा में, बौद्ध धर्म में हो गई।

उसने बौद्ध विहार बनवाए, शिलालेख खुदवाए। अगर अशोक का स्तंभ लेख न होता तो हम कभी ना जान पाते कि बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। तभी श्रीलंका के राजा तिस्स का मैत्री संदेश आया तो अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। इसी तरह बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा एशिया के और हिस्सों में भी हुआ। अशोक के बाद मौर्य वंश सशक्त नेतृत्व के अभाव में बिखरता चला गया। सम्राट आए, सम्राट गए, किसी को ऐश्वर्य मिला, किसी की सत्ता छीनी, पर मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। समय के बहाव को देखते हुए और भारत की गोद में अपना स्थान बनाए हुए,

0: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
1: आराम से मैडम।
0: क्या?
1: आराम से पहुंचेंगे मैडम। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
3: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
4: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 3 बज चुके हैं। अब हम इस सभा के प्रसारण यहीं संपन्न करते हैं। अपने सांध्यकालीन सभा में संध्या 5:30 पर फिर आपसे भेंट करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: मौर्यकालीन पाटलिपुत्र अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओं इसी कार्यक्रम के साथ अब हम अपने कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है और अब से कुछ ही पलों में आपको सुनवाएंगे आकाशवाणी दिल्ली से कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत आज सुनिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे आशीष अग्रवाल के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ आज विशेष मेहमान है आशीष अग्रवाल जी, जो हम सबको राह दिखाते हैं कि अपनी जीवन शैली को सरल बनाकर कितना फायदा हमें हो सकता है और हमारी प्रकृति को भी कितना फायदा हो सकता है। सो आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में। आशीष जी, सर्वप्रथम जो आपका एक मुहिम है उससे ही शुरुआत करते हैं, सस्टेनेबिलिटी माइंडफुल कंजम्पशन अ वे टू मिनिमलिस्टिक लिविंग। ये जो आपका तथ्य है, जो कॉन्सेप्ट है, इसको आप अगर हमें सरल शब्दों में समझा सकें, जो हमारे श्रोता सभी समझ पाए कि क्या है ये कॉन्सेप्ट और इसके पीछे की मूल सोच क्या है।
2: तो मैं इसके वाई से शुरू करता हूँ कि ये मुहिम शुरू क्यों हुआ। तो आज के डेट में समाज में तीन तरह के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। पर्सनल लेवल पे अगर देखा जाए तो तनाव बहुत बढ़ गया है, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। सोशल लेवल पे देखा जाए तो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे देश में सिविक सेंस की थोड़ी कमी है। और अगर ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज, वातावरण का जो बदलाव हो रहा है वो बहुत ही तेजी से हमारे सामने आ रहा है। तो ब्रिज फॉर चेंज एक मिशन पर है जहां वो यस आई एम माइंडफुल मूवमेंट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें माइंडफुल कंजम्पशन को एज अ प्रोफाउंड टूल हम लोग प्रेजेंट करते हैं, जिससे हमारी वेलबींग इंप्रूव होगी। और हमारी वेलबींग इंप्रूव होगी, हमारे एक्शंस इंप्रूव होंगे, तो आसपास होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप मिटिगेट होना शुरू हो जाएंगे। जिसमें हम लोग कहते हैं युवाओं से कि छोटे छोटे एक्शंस लेने हैं, जहां पॉसिबल हो वहां एक्शंस लेने हैं, जितना पॉसिबल हो उतना करना है। तो इसको हम लोग टर्म देते हैं PRR, कि क्या हम लोग कभी पॉज लें, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा रिफ्लेक्ट करें और जिस भी पैरामीटर्स पे, चाहे वो फूड है, फैशन है, टेक्नोलॉजी है, रिलेशन है, प्रोफेशन है, किसी भी आयाम पे जहां उनको लगता है रेगुलेट कर सकते हैं उस चीज को रेगुलेट करें। और ये एफर्टलेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा एफर्ट लगाएंगे तो वही 2 दिन 4 दिन 10 दिन करेंगे, उसके बाद फिर हमारा मोटिवेशन कहीं ना कहीं लैक करने लगता है। तो छोटे छोटे स्टेप्स, टाइनी एक्शंस कैन ब्रिंग जाइगेंटिक रिपल्स, तो वो हमारा ध्येय है। और सरल जीवन जहां आपको सही लगता है और उसमें छोटे छोटे स्टेप्स, तो यही पूरा मूवमेंट का थॉट प्रोसेस है।
1: आशीष जी, आप जो बात कर रहे हैं माइंडफुल कंजम्पशन की, वही धुरी है आपके पूरे जो मुहिम की। उसको और गहराई से समझने के लिए अगर हम ये आपसे जानना चाहें कि माइंडलेस कंजम्पशन क्या होती है, जिसको काउंटर करने के लिए आप ये जो माइंडफुल कंजम्पशन लेके आए हैं, ताकि हम बेहतर समझ पाए कि इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या है।
2: जो माइंडलेस कंजम्पशन की बात करें तो जो नीड वर्सेस वांट जो बोलते हैं
1: जी,
2: कि हम लोग सबको कहीं ना कहीं पता है कि हमारी नीड तो इतनी ही है, लेकिन कई बार हमारी चाहते होती हैं, पीयर प्रेशर होता है, समाज का स्टेटस होता है, उस चीज को अकॉम्प्लिश करने के लिए हम लोग बहुत सारी चीज ऐसी खरीदते हैं, बहुत सारी चीज ऐसी इस्तेमाल करते हैं, एक लाइफस्टाइल ऐसा फॉलो करते हैं जिसकी शायद हमें उतनी जरूरत नहीं हो। और उस जर्नी में फिर बहुत सारे अलग अलग माध्यम से हम लोग ओवर कंजम्पशन करते हैं, अनरियलिस्टिक एम्बिशंस सामने रखते हैं। तो उस चीज को ही हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस अनरियलिस्टिक जो हमारे एम्बिशन है उसको कैसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए, थोड़ा सा बेहतर और मोर रिस्पॉन्सिबल लाइफ स्टाइल की तरफ युवाओं का, हमारे जो भी ऑडियंस है उनका ध्यान लाया जाए।
1: तो आपने जो नीड्स और वांट्स की बात करी कि एक तो है हमारी जरूरत और एक है हमारी ख्वाहिश,
2: बिल्कुल,
1: ये नीड और वांट का जो अंतर है, क्या आप हमें और गहराई से इसको समझा सकते हैं?
2: ये बहुत मुश्किल है। नीड का तो हमारा मानना है कि सॉफ्टवेयर ही हमारा वैसा डेवलप है कि हमें पता है कि ये हमारी जरूरत है, कब वो जरूरत वांट हो रही उतना हमें अंदर से आवाज आ जाती है। लेकिन चूंकि हम लोग इतने कॉम्पिटिटिव सोसाइटी में रहते हैं, इतने फास्ट इवॉल्विंग सोसाइटी में, कि वांट का कहीं ना कहीं ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाता है और वहीं पे फिर प्रॉब्लम शुरू होती है। प्रॉब्लम इसलिए शुरू होती है कि सपोज मैं आज आशीष एक्स पर हूं, मुझे वहां 5x तक पहुंचना है, जस्ट बिकॉज मेरे पीयर ग्रुप में कोई वहां पर है, तो मैं ये नहीं देखता कि मेरे स्किल्स क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटीज क्या है, राइट टाइम राइट प्लेस पे मैं हूं कि नहीं। मैं बस भागता रहता हूं कि मुझे 5x तक पहुंचना है, क्योंकि मेरे चाचा का बेटा या XYZ इन माई फैमिली इज एट दैट पॉइंट। तो उसमें दो चीजें होती है। पहला तो होता है कि मैंने बहुत मेहनत की लेकिन सही समय पे सही जगह पे नहीं था, तो मैं x से 3x तक पहुंचा। तो सोसाइटी इतनी कॉम्पिटिटिव है, इतनी शॉर्ट साइटेड है कि वो उस चीज के लिए मुझे अप्रिशिएट नहीं करेगी 3 गुना आगे बढ़ा, बट उस चीज के लिए रेडिक्यूल करेगी कि देखो अभी भी वो इंसान तुमसे कितना आगे है। तो वो जो स्यूडो कमी है ना, जो समाज बताता है कि तुम में कुछ कमी है, तुम इतने स्मार्ट नहीं हो, तुम इतने स्किल्ड नहीं हो, उस कमी को छुपाने के लिए हम लोग माइंडलेस कंजम्पशन करते हैं, उस भड़ास को दबाने के लिए। किसी का वो भड़ास, फ्रस्ट्रेशन, वो वॉइड खाने पे निकलता है, किसी का फैशन पे निकलता है, किसी का रिलेशन पे निकलता है, किसी का दिन भर इंस्टाग्राम और ये सब पे निकलता है। दूसरे केस में क्या हो रहा है कि अगर मैं x से 5x पहुंच भी गया, राइट टाइम राइट प्लेस, बहुत मेहनत की, सही लोग मिले, तो भी अगर मैं 5x पे पहुंचा तो ये समाज मुझे शांति वाली जिंदगी, एक सिंपल जिंदगी जीने के लिए प्रेरित नहीं करता है।

0: वो बोलता है अब तुम्हारी तुम 6 फिगर सैलरी कमा रहे हो तो तुम्हें इस तरह का मोबाइल, इस तरह का घर, इस तरह के वैकेशंस होने चाहिए। तो हमने जो रिसर्च किया उसमें यही पाया कि वेदर वी आर सो कॉल्ड सक्सेसफुल और नॉट, दोनों ही केस में मैं माइंडलेस कंजम्पशन करता हूँ बिकॉज ऑफ द पीयर प्रेशर।
1: जी
0: और वही सारे स्ट्रेस की, वही सारे नॉइस की जड़ है। इसीलिए माइंडफुल कंजम्पशन के प्रति हम लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं डेटा की मदद से।
1: जी, तो कैसा डेटा, किस तरह से फायदा, जब आप कह रहे हैं कि माइंडफुल कंजम्पशन होती है, जितनी आपको जरूरत है उसके अनुसार आप कंज्यूम करते हैं, तो इसका जैसा आप कह रहे हैं कि आपको खुद को फायदा होता है, क्लटर कम हो रहा है,
0: बिल्कुल
1: आप एक पीसफुल लाइफ लीड कर रहे हैं, उसके अलावा पर्यावरण को भी इसका लाभ होता है, जो आप डेटा की बात कर रहे हैं उसको आप हमें थोड़ा समझा सकते हैं।
0: तो कोई भी चीज जब हम लोग करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी यूज होती है किसी भी फॉर्म में, और उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ ना कुछ एमिशंस, कुछ पॉल्यूशन हुआ। उस पॉल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट के मेजरमेंट में नापा जाता है। जैसे हम लोग होते हैं दूरी को किलोमीटर में नापते हैं, वजन को किलोग्राम्स में नापते हैं, वैसे पॉल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, कार्बन फुटप्रिंट जो बोलते हैं हम लोग। तो कोई भी काम करते हैं उसका कुछ ना कुछ कार्बन फुटप्रिंट है। तो ये एक अच्छी बात भी है और मुश्किल भी है कि हर

0: मिशंस बचाया जा सकता है।
1: इस संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में जो शुरू किया था मिशन लाइफ,
0: बिल्कुल
1: लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, तो उसमें भी उन्होंने हरेक नागरिक की सक्रिय भागीदारी को एक महत्वपूर्ण बताया था जो पर्यावरण संरक्षण है उस दिशा में। तो वहां पर आप हमें बताएं कि कौन सी ऐसी छोटी छोटी आदतें हैं, किन किन आदतों से हम हमारा जो भी वातावरण है उसको हम ज्यादा शुद्ध करने में या उसके संरक्षण में हम अपना योगदान कर सकते हैं।
0: तो इसको शेयर करने के लिए मैं 5 R का यूज करूंगा, रिड्यूस, रियूज, रिसाइकिल। तो 5 R में सबसे पहले वही रिड्यूस आता है। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि अगर हम लोग अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो कितना भी पेड़ लगाएं, कितना भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, एमिशंस कम नहीं होंगे तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी लाइफस्टाइल को, जीवन शैली को थोड़ा बदलना ही पड़ेगा, जो कि मिशन लाइफ का भी ध्येय है कि अपने लाइफस्टाइल को एनवायरमेंट से कैसे अलाइन किया जाए। तो रिड्यूस के कॉन्टेक्स्ट में जैसे यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम का डेटा बताता है कि हर साल करीब 50 किलो खाना हर भारतीय वेस्ट करता है ऑन एन एवरेज। तो फूड वेस्ट एक ऐसी चीज है जो हमें इमिडिएटली रोक देनी चाहिए अगर अभी तक हम लोग के जीवन शैली में वो चीज नहीं आई है। तो वैसे ही एनिमल वेस्ट प्रोडक्ट्स का कार्बन फुटप्रिंट बहुत होता है, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो मीट बेस्ड चीजें हो, जो भी चीज एनिमल से आ रही है, तो उसको हम लोग थोड़ा रेगुलेट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। वैसे ही एयर ट्रेवल का कार्बन इमिशन बहुत होता है, तो रिड्यूस के कॉन्टेक्स्ट में एक आम नागरिक जो करता है तो फूड वेस्ट ना करे और एयर ट्रेवल कम हो। रिड्यूस के बाद अगर रिप्लेस की बात करते हैं तो बहुत सिंपल सा है, जैसे कपड़े का थैला यूज करें। तो आमतौर पर हर दिन अगर हम लोग सब्जी वब्जी लेने जा रहे हैं तो 3 प्लास्टिक 4 प्लास्टिक यूज हो जाता है, तो सिर्फ एक बैग यूज करेंगे तो साल भर में अगर 3 × 365 भी करें तो 1000 प्लास्टिक की बैग्स सिर्फ और सिर्फ सब्जी के मायने में कम हो सकती है। और वही वो प्लास्टिक भी जैसे हम लोग बोलते हैं ना, सिंगल यूज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो रिप्लेस के कॉन्टेक्स्ट में प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से। आजकल टिश्यू पेपर को यूज करने का बहुत फैशन चला है, तो टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रूमाल वगैरह से, जो हमारे घरों में हमारे माता पिता और दादा दादी हमेशा ही करते आए हैं। तो इससे बहुत सिंपल सा एक्ट है लेकिन बहुत सारा पानी, बहुत सारा कचरा, बहुत सारा कार्बन इमिशन बच सकता है। रिपेयर, आजकल हमारी लाइफस्टाइल इतनी फास्ट हो गई है कि रिपेयर कराने का उतना टाइम नहीं है। तो अगर मैं 2 घंटे जाऊंगा रिपेयर कराने, फिर वापस लेने आऊंगा, इतने में तो मैं नया सामान मंगा लूंगा। लेकिन रियल कॉस्ट हम लोग नहीं पे करते किसी भी चीज का। अगर इन्वायरमेंटल कॉस्ट भी जोड़ा जाए, वेस्ट मैनेजमेंट का भी कॉस्ट जोड़ा जाए, तो किसी भी प्रोडक्ट का रियल कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। तो जहां जहां पॉसिबल हो रिपेयर कराएं। इन सब में जब सब हो गया, रिड्यूस हो गया, रिप्लेस हो गया, रिपेयर हो गया, तब जो बचा है उसको रिसाइकलिंग के लिए दें।
1: आशीष जी, युवाओं की अगर हम बात करें, आप युवाओं को प्रेरित करने पर काफी बल देते हैं। अब युवा महत्वाकांक्षी भी होते हैं और वो अपने जो स्वप्न है उनको भी बहुत गहराई से देखते हैं, गंभीरता से देखते हैं, और एक आधुनिक जीवन शैली भी वो जीना चाहते हैं। तो ऐसे में आप कैसे उनको कन्विंस करते हैं कि आप अगर साधारण अपनी जीवन शैली को करेंगे, मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे, तो उससे आपकी प्रगति में कोई बाधा नहीं आएगी बल्कि आपका जीवन बेहतर होगा। तो ये बताइए कितना चैलेंजिंग है और कैसे आप इसको अचीव करते हैं जो युवा है उनको इस दिशा में ले जाने की ओर।
0: थोड़ा चैलेंजिंग होता है बट इनफ रिपोर्ट्स आर देयर इन मार्केट जहां पे ये पता है कि हमारा जो सोशियो

0: इकोनॉमिक ग्रुप है जिसको अब अपर मिडिल क्लास बोलते हैं, उसके ऊपर फिर जो इलिट क्लास एफ्लुएंट क्लास होता है। तो आज के डेट में जितनी भी मॉडर्न एज बीमारियां हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, डायबिटीज हो, कोलेस्ट्रॉल हो, ओवरवेट हो, लोनलीनेस हो, स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, ये सब उसी एफ्लुएंट क्लास में आ रहा है। तो इसलिए बहुत एविडेंट है कि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल गेन करने से हमारा लाइफ की क्वालिटी ओवरऑल नहीं बढ़ सकती। उसके लिए अपने लिए समय निकालना जरूरी है, अपनों के लिए समय निकालना जरूरी है, सेहत पे ध्यान देना जरूरी है, रिलेशंस पे ध्यान देना जरूरी है। तो इस पूरे मुहिम में, इस पूरे मिशन में वही थॉट प्रोसेस होता है कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, समृद्धि बहुत जरूरी है, लेकिन अगर सादगी के साथ वो समृद्धि लाई जाए तो उसमें चार चांद लग जाते हैं। और वो आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है, तो अगर सादगी भरा जीवन रहेगा आपका, माइंडफुल अगर आप रहोगे जीवन में, तो आपका ही ये जो तनाव है, ये जो स्ट्रेस है, कम होगा, आपकी फिजिकल और मेंटल वेलबींग इम्प्रूव होगी। और आपकी अगर वेलबींग इम्प्रूव हो रही है तो आपकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी, जिससे आपका काम और बढ़ेगा। तो ग्रो करने के अगेंस्ट नहीं है कोई भी थॉट प्रोसेस, बट वी शुड बी ग्रोइंग नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ, वी शुड बी ग्रोइंग नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर रिलेशंस। तो वही थॉट प्रोसेस है। और गांधी जी ने भी बोला है कि कैपिटल में बुराई नहीं है, उसका यूज किस तरीके से करते हैं वो डिफाइन करता है वेदर इट इज एन एविल और ब्लेसिंग। तो हम लोग वही बोल रहे हैं कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, समृद्धि और सादगी को साथ में लेके चलने की कोशिश करो।
1: कोई ऐसे डेटा पॉइंट्स भी हैं जिनसे उनको समझाते हैं कि कैसे आप एक इंडिविजुअल लेवल पर अगर माइंडफुल कंजम्पशन करते हैं, अपने लाइफस्टाइल को मिनिमलाइज करते हैं जरूरत के अनुसार, तो किस तरह का फायदा होता है एनवायरमेंट को, ये थोड़ा सा आप हमें बता सकते हैं एग्जांपल्स देके?
0: आज के यूथ बहुत इंस्पायर्ड हैं, बहुत मोटिवेटेड हैं, बहुत ब्लेस्ड भी हैं, और हमने देखा है कि दे वांट टू डू समथिंग गुड फॉर दी सोसाइटी, बस उन्हें थोड़ा सा नज की जरूरत है, थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत है। तो अगर रैशनैलिटी बेस्ड बातें की जाए, लॉजिकल तरीके से कोई चीज पुट की जाए, तो उनका सपोर्ट काफी मिलता है। तो ये जो माइंडफुल लिविंग है, ये तो हमारे एंसेस्टर्स हमेशा से करते आए, कोई नई चीज नहीं, हमारे सभ्यता में, हमारे ट्रेडिशंस में है। बस डेटा की मदद से जब हम लोग पुट करते हैं उनके सामने कीप इट, तो उनका इमोशंस एक्शन की जर्नी है बहुत इजी हो जाती है। अगर अभी कपड़े की बात करें, तो एक कंपनी का भी रिसेंटली सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट आया था, उसमें उनका कहना था कि जो वो एक जीन्स बनाते हैं उसके लाइफ साइकिल में, मतलब डेनिम बनाना, स्टिच करना, शॉप पे ले जाना, फिर हमारे जैसे लोग उसको परचेज किए, यूज किए, धोए, यूज किए, धोए और फाइनली फेंके, तो उस पूरे जीवन काल में एक जीन्स के करीब 3800 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। तो हम लोग यही बोल रहे हैं कि आपके प्रेजेंट लाइफस्टाइल जैसा भी हो बहुत बढ़िया है, क्या उसमें छोटा सा बदलाव ला सकते हैं।
1: सो आशीष जी, एक जो प्रोजेक्ट 333 है, अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, शायद आपने उसको खुद अपनाया भी है, तो आप बता सकते हैं अपने अनुभव से कि किस तरह से ये बेनिफिट करता है, न सिर्फ पर्सनली जो भी उसको अपना रहा है, जो भी अडॉप्ट कर रहा है उस व्यक्ति के लिए वो लाभदायक है, हमारे पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है।
0: जब हम लोगों ने ये मूवमेंट शुरू किया 2021 में, तो बहुत इंपॉर्टेंट था कि पहले हम लोग कुछ प्रैक्टिस करें और फिर उसके बाद उसकी शेयरिंग करें। तो उसमें जब रिसर्च किए तो ये एक इनिशिएटिव आया, प्रोजेक्ट 333, जहां पे पार्टिसिपेंट को इनवाइट किया जाता है कि वो 33 पर्सनल आइटम्स के साथ 3 महीने की जिंदगी जिए। वो पर्सनल आइटम्स मतलब जो आप अपने साथ कैरी करते हैं, जिसके बिना आपका जीवन नहीं हो सकता, आपका किचन वेयर, आपका सोफा, वो नहीं, आपका खुद का 33 आइटम्स।
1: कुछ अगर आप एग्जांपल दे सकते हैं,
0: जैसे मेरे कपड़े हुए, मेरे स्टेशनरी हुई, मेरा सैनिटरी किट हुआ, मेरा ट्रैवल बैग, लैपटॉप वगैरह हुआ, तो जो चीज अगर मैं कहीं जा रहा हूं तो अपने साथ रखूंगा। तो वो चैलेंज हम लोगों ने लिया 2021 में, और आज 5 साल हो गए मैं उसी 33 सामान के साथ जिंदगी जीता हूँ। तो उससे बहुत वही लिब्रेशन हुआ, क्योंकि मुझे सोचना नहीं है कि मुझे क्या पहनना है, बहुत सारी चीज कैरी करने की जरूरत नहीं है, घर में बहुत सारा स्पेस होने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा रिसोर्स मुझे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो वही चीज, अगर अगेन 33 इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट पुटिंग सम फिगर इज इम्पॉर्टेंट। तो जिसको जो इम्पॉर्टेंट लगता है, जिसको जो कम्फर्टेबल लगता है, वो एक दायरा बना ले कि मुझे 50 चीजें या 55 चीजें के साथ 3 महीना 6 महीना ट्राई करना है, तो वो एक जो फ्रीडम है उसका कोई जवाब ही नहीं है। तो ये सारे तरीके होते हैं अपने क्लटर को कम करने का, जिससे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उस पर फोकस कर सके। आजकल ऑनलाइन ऑर्डर्स हमारे लाइफ का बहुत इंटीग्रल पार्ट हो गई है, तो उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है कि जितना भी कर रहे हैं उसमें क्या थोड़ा कम किया जा सकता है। तो 2 तरह के ऑनलाइन ऑर्डर्स आजकल हो रहे हैं, एक तो ग्रोसरीज वगैरह मंगाने में, तो उसमें भी अगर हम लोग बल्क में मंगाते हैं या खुद जाके ले आते हैं तो अननेसेसरी जो पैकेजिंग है वो कम होगी
1: जी।
0: और उससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है क्लाइमेट के दृष्टिकोण से, वेस्ट मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से, वो है पैकेज्ड फूड, उसको कहीं ना कहीं कम करने की जरूरत है, क्योंकि उसमें फिर जब सामान आता है तो 1 टाइम प्लास्टिक, 1 टाइम कटलरी और उसमें फिर जो वो खाना लगा हुआ होता है उसको वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत होती है उसको रिसाइकिल करने में। तो क्या हम लोग इस तरह के ऑनलाइन ऑर्डर्स जो करते हैं उसको थोड़ा सा कम करें, एलिमिनेट कर पाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो एटलीस्ट शुरुआत तो करें, तो ये भी बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है।
1: तो इसी से जुड़ा है मेरा अगला सवाल कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें एवरेज

0: एक आम नागरिक कैसे ये पहचान करे कि क्या चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, माइंडफुल कंजम्पशन के दायरे में आती है, और कौन सी चीज इम्पोर्टेंट नहीं है जो माइंडलेस कंजम्पशन के दायरे में आती है और जिसको हम हटा सकते हैं।
1: तो इसमें दो तीन प्रश्न हमेशा मिलेंगे आपको जब भी हम लोग परचेज करने की सोच रहे हैं या शॉपिंग करने का या किसी भी तरीके का कंजम्पशन करने की सोच रहे हैं। तो क्या हमें इसकी जरूरत है इमिडिएटली? अगर मैं इसको 3 महीने बाद भी लूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? तो जो 3 महीने का गैप है या 2 वीक का गैप है उससे आपको इमिडिएटली पता चल जाए कि ये रियल में नीड है या वॉन्ट है। तो एक बार नीड वर्सेज वॉन्ट की चीज हो गई तो जैसा बोलते हैं ना कि गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए, वैसे ही कंजम्पशन के कॉन्टेक्स्ट में भी इम्पल्स शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। तो जब हमें महसूस हो रहा है इम्पल्स है तो बोले कि चलो 2 घंटे बाद ही कर लेंगे, तो फिर हम लोग जजमेंट लेने के लिए बेहतर पोजीशन में होंगे कि ये सही में नीड है या वॉन्ट है। और फिर नीड है कि वॉन्ट है फिर वो क्वेश्चन से पूछ सकते हैं कि आज इसको मैं नहीं खरीदता हूँ या खरीदती हूँ तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, 2 हफ्ते बाद खरीदूंगा। तो फिर 2 हफ्ते कम से कम वो चीज टली, तो 2 हफ्ते तक तो कम से कम वो इमिशन इनडायरेक्टली बचे।
0: जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, वही वॉन्ट में ये भी आ जाता है कि आप अपने आसपास वाले जो लोग हैं उनके साथ कंपीट करना चाह
1: बिल्कुल
0: रहे हैं, उनके पास कोई चीज है तो आप भी वो ले लेते हैं हालांकि आपको उसकी जरूरत नहीं है। तो ये भी बहुत सारे पहलू हैं वॉन्ट के,
1: बिल्कुल
0: जिसमें शायद अगर हम थोड़ा सा कहें कि हार्श वर्ड है लेकिन उसको लालच या ग्रीड भी कह सकते हैं,
1: बिल्कुल
0: तो उससे हमें बचना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल ग्रीड का तो कोई एंड ही नहीं होता ना। देयर इज इनफ रिसोर्सेज फॉर नीड बट नॉट फॉर ग्रीड, वो तो हमने सुना ही है। और उसका वो रेस का एक स्पाइरल है, वो कभी खत्म नहीं होगा। और उससे स्ट्रेस ही होना है, जो पहले मैंने एक बार शेयर किया एक्स से 3x और 5x की बात, वो वही चीज है। तो हमें देखना है कि हमारी जर्नी क्या है, क्योंकि हम लोग सबकी जर्नी अपनी अपनी है। और हमारे कैनवास पे जिस चीज की जहां जरूरत है उस पे अगर फोकस करेंगे तो बहुत लाइफ सिंप्लीफाइड रहेगी और बहुत ही तन हेल्दी लाइफ जी पाएंगे हम लोग।
0: हेल्थी लाइफ भी जी पाएंगे, और शायद ये भी है कि आपका जो फिजिकल स्पेस जब फ्री होता है तो आपका मेंटल स्पेस भी फ्री होता है, आपको कम चीजों का ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो ऐसे में हम अपनी हॉबीज का या अपने रिलेशनशिप्स को ज्यादा टाइम दे सकते हैं,
1: बिल्कुल
0: अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट है उनको ज्यादा टाइम दे सकते हैं। आपका क्या अनुभव रहा है?
1: 100% मैम। तो अभी हम लोग क्या है कि कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज का जो लाइफस्टाइल है उसके तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, डेवलपमेंट इज ऑलवेज गुड। लेकिन उसी में डेटा भी बताता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में ही बहुत ज्यादा लोनलीनेस है, वहां के बच्चों में बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है। तो हम लोग इतने स्मार्ट हैं कि वी नीड टू टेक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। तो हमारी जो अच्छी चीजें हैं उसको बनाकर वेस्ट की जो अच्छी चीजें हैं उसको इनग्रेन करनी है। तो बोलते हैं ना, मॉडर्निटी और सभ्यता को मिलाने की जरूरत है।
0: तो जो एक सादगी वाला जीवन शैली है, जिसे आप मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल कहते हैं, उसको लेकर अलग अलग धारणाएं हैं सबके बीच। सो आप हमें बताएं कि प्रमुख गलत फहमियां क्या है मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल को लेकर, और उनको दूर करना कितना इम्पोर्टेंट होता है जब आप युवाओं को कन्विंस करना चाहते हैं इस राह की ओर बढ़ने की तरफ।
1: तो जब भी हम लोग माइंड और सस्टेनेबल लिविंग की बात करते हैं ना, तो आम तौर पे ये धारणा बनी है कि हमें बहुत रिस्ट्रिक्टिव लाइफस्टाइल के लिए बोला जाएगा,
0: जी
1: बोला जाएगा ये मत करो वो मत करो, होता है ना साधु बन के हिमालय पे चले जाओ। तो उस कारण से क्या होता है कि लोग इस लाइफस्टाइल को, इस जीवन शैली को ट्राई नहीं करने चाहते हैं, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन महसूस होता है शुरुआत में। तो ये जो मिथ है उसको हम लोग ब्रेक करने की कोशिश करते हैं कि माइंडफुल होने के लिए डे वन पे छोटे छोटे एक्शन लेने की जरूरत है, और वो छोटे छोटे एक्शन किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया, इतनी सारी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, फूड, फैशन, ट्रेवल, टेक्नोलॉजी, किसी भी मायने में अगर आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा रेगुलेट करती हैं तो आपकी वेलबींग बढ़ेगी, वेलबींग बढ़ेगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो उससे आपका प्रोफेशनल ग्रोथ होगा, वेलबींग बढ़ेगी तो आपकी पर्सनल जर्नी, पर्सनल रिलेशन इंप्रूव होंगे तो आपका पर्सनल ग्रोथ होगा। तो उस चीज को बताना कई बार होता है कि डे वन पे हम लोग बहुत बड़ा टारगेट सेट कर लेते हैं, तो वो हम लोग कहते हैं कि मत कीजिए, और किसी भी चीज में वो हेल्पफुल नहीं है। क्योंकि हमें अगर कुछ 6 महीने बाद कोई चीज अचीव करनी है तो हमें वी हैव टू ब्रेक डाउन दैट टारगेट, उस टारगेट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना जरूरी है। तो माइंडफुल लिविंग में भी वैसा ही है, एक छोटे सी चीज से शुरुआत करते हैं और वो चीज भी आपको डिसाइड करनी है। तो देयर इज नो फिक्स गाइडलाइन कि अगर आप एक्स करते हो तो आप माइंडफुल हो, अगर आप वाई करते हो तो माइंडफुल नहीं हो। ये एक्स और वाई हर इंडिविजुअल अपने लिए डिसाइड करे
0: जी
1: कि वो सैकड़ों चीजें कंज्यूम कर रहा है उसमें कहां वो किस चीज को रेगुलेट कर सकता है, और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफस्टाइल, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग पीस। क्योंकि लाइफस्टाइल और पीस से कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो अगेन वो सस्टेनेबल नहीं होगा।
0: हमारे जो श्रोता हैं जो आपकी बात सुनकर इंस्पायर होंगे और वो तुरंत कुछ ऐसा करना, बदलाव लाना चाहें अपने जीवन शैली में जो सिर्फ त्वरित ना हो, लंबे समय तक उसका पर्यावरण को फायदा हो, तो कोई ऐसी कॉमन चीजें बता सकते हैं जो हरेक के लिए लागू है, कोई सरल 2-3 ऐसे उपाय, ऐसी बदलाव अपनी जिंदगी में जो वो ला सकते हैं?
1: जहां जहां अगेन पॉसिबल हो, तो अगर हम लोग कार यूज कर रहे हैं तो हफ्ते में अगर एक बार कार पूल कर ले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लेते हैं तब तो बहुत ही अच्छा है। महीने में मैं एक

0: ट्रैवल कर रहा हूँ तो साल में 12 ट्रिप ले रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एयर ट्रैवल, तो 12 एयर ट्रैवल करने से कम करके अगर एक भी कम करके मैंने ट्रेन ले लिया तो एयर ट्रैवल का बहुत ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट होता है।
1: यस
0: वैसे ये टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज हर इंसान, चाहे वो युवा हो चाहे वो बड़े लोग हो, दिन भर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टेक्नोलॉजी से हमारा मिलना होता ही है, चाहे वो काम के कॉन्टेक्स्ट में हो या वो लेजर एक्टिविटीज के कॉन्टेक्स्ट में हो। तो डेटा बताती है कि एक आम हिंदुस्तानी करीब 3 घंटे रोज सोशल मीडिया पे स्पेंड करता है। काम पे तो जो हम लोग करते हैं वो करते ही हैं, तो उस 3 घंटे को घटा के 2 घंटे भी किया जाए तो उसका भी बहुत बड़ा इमिशन है। तो अगर 1 घंटे भी कम किया जाए तो साल भर में 365 घंटे हमने स्ट्रीमिंग कम की तो उसका बहुत बड़ा इमिशन बचेगा। सिमिलरली जो वर्किंग लोग हैं हमारे मेल्स में, हम लोग बहुत सारे लोग को मैंने देखा है इन अनरीड मेल्स, 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, तो वो अनरीड मेल क्या हुआ, कहीं ना कहीं वो किसी कंपनी के सर्वर में सेव है, तभी तो आपके लिए वो जब आप खोलते हैं वहां अनरीड दिखाता है। तो हर मेल का 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम इमिशन है, कितना बड़ा मेल है, उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है। तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे इमिशंस बच सकते हैं। तो जो भी पहलू है हमारी जिंदगी का, किसी भी चीज को काम करने में चूंकि एमिशन हो रहे हैं तो किसी भी चीज को में हम लोग थोड़ा माइंडफुलनेस लाते हैं तो एमिशन बचेंगे, चाहे वो फूड हो, फैशन हो, ट्रेवल हो, टेक्नोलॉजी हो।
1: कुछ और एग्जांपल्स भी आप बताना चाहेंगे?
0: तो जैसे IIT बॉम्बे के एक सर है सोलंकी सर, तो उनका बहुत सुंदर सा एक इनिशिएटिव है वाह का, रिंकल्स अच्छे हैं, तो उनका कहना है कि हफ्ते में एक दिन अगर हम लोग बिना आयरन किया हुआ कपड़ा पहने तो कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आयरनिंग का एमिशन बहुत है, 150 ग्राम, 200 ग्राम एक कपड़े को आयरन करने में एमिशन होता है। एनर्जी हमने यूज की बिजली को, बिजली उत्पन्न करने में जो इमिशन हुआ, हाँ, तो कार्बन इमिशन वैसे कैलकुलेट हुआ कि हमने डायरेक्ट इसके लिए तो बिजली यूज की लेकिन ये बिजली को पहुंचाने में क्या इमिशन हुआ वो मेजर होता है। तो अगर एक कुर्ते में मैंने 100 ग्राम यूज किया एग्जांपल के लिए तो 52 हफ्ते में मैं सिर्फ 52 कपड़े कम करूंगा तो 5.5 किलो इमिशन हमने कम किए। तो जहां पे भी पॉसिबल हो, जितना पॉसिबल हो वो करने की जरूरत है, और वो जरूरत इसलिए कि कई बार हमें लगता है इस छोटे से एक्ट से बहुत ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आएगा, लेकिन 150 करोड़ लोग हैं, 150 करोड़ लोग छोटा छोटा ही बदलाव लाएंगे तो कलेक्टिवली बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। और हर देश का चूंकि वर्ल्ड को एक कमिटमेंट है एमिशंस को लेके, तो उस कमिटमेंट में बहुत बड़ी भागीदारी हो सकती है वो।
1: एक तरह से आप कह रहे हैं कि हम सबके पास ये शक्ति है कि हम योगदान दें, जो हम अपने पर्यावरण को संरक्षित करना चाहते हैं, एमिशंस कम करना चाहते हैं। एक और पहलू जिस पर हम आपकी राय चाहेंगे कि पिछले कुछ समय में किस तरह के बदलाव आए हैं, किस तरह के नवाचार आए हैं जो आपको प्रमुख लगते हैं, जिनसे ये उम्मीद जगती है कि हम सही दिशा में प्रगति कर रहे हैं।
0: सबसे बड़ा एग्जांपल तो ये इंटरव्यू ही है कि इतने बड़े स्केल पे इतने सारे लोगों को आप बुला रहे हैं और इस पे चर्चा कर रहे हैं। देश की बात करें मिशन लाइफ के बारे में, ग्लोबल लेवल पे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 17 गोल 2030 तक के लिए जो है, तो 17 में से 3 गोल, गोल नंबर 3, 12 एंड 13 सीधे सीधे जो हम लोग बातें कर रहे हैं उससे अलाइंड है, क्लाइमेट एक्शन, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, एंड गोल नंबर 3 इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो संयुक्त राष्ट्र मतलब पूरे विश्व ने भी इस चीज को समझा है कि वेलबींग और माइंडफुल लिविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनीज में आजकल ESG के ऊपर बहुत फोकस है कि उनकी सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, उनके जो ऑपरेशंस हैं वो एनवायरनमेंट से अलाइंड होने चाहिए। ई एनवायरनमेंट, एस सोशल एंड जी इज गवर्नेंस, तो इन तीनों ही मामले में उनको अलाइन होना चाहिए। तो उसपे बहुत सारा काम हो रहा है, हर कंपनी इस पे फोकस कर रही है कि उनके एमिशंस को वो लोग कैसे कम कर सके। सेम चीज अगर कॉलेजेस की बात की जाए तो कॉलेजेस में भी आज बहुत सारी रैंकिंग में होता है ना, गवर्नमेंट रैंकिंग देती है कि आपका ए है, ए प्लस है, बी है, तो उस रैंकिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है कि आपके कैंपस में क्या सस्टेनेबिलिटी के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो इंसान के लेवल पे, इंस्टीट्यूशन के लेवल पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स पूरे देश में, पूरे विश्व में हो रहे हैं।
1: आशीष जी, जो भी युवा चाहें कि हम एक लॉन्ग लास्टिंग प्रभाव छोड़ें एनवायरनमेंट पर, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, अपनी जीवन शैली को साधारण करके खुद भी ज्यादा खुश हो, डीक्लटरिंग जैसा आप कह रहे हैं कि जब डीक्लटरिंग होती है तो फिजिकल स्पेस क्रिएट हो रही है, मेंटल स्पेस क्रिएट हो रही है, आप और चीजों के बारे में सोच सकते हैं, जो चीज जरूरी है उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, तो इस पूरी जर्नी में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आजकल के यूथ को कि किस तरह के वो एक दृष्टिकोण अपनाएं, माइंडसेट अपनाएं, या कौन से ऐसे प्रमुख बदलाव लाएं ताकि वो एक बहुत ही सक्रिय भागीदार बने इस पूरी यात्रा में, इस पूरे मुहिम में?
0: तो इम्पोर्टेंट बस वो है कि वी हैव टू डू आवर बिट, क्योंकि उस चीज को इनसिग्निफिकेंट हम लोग समझने की गलती नहीं कर सकते। या इस चीज को अगर मैं ऐसे प्रेजेंट करूं कि जब तक हर इंसान अपनी भागीदारी नहीं करेगा तब तक कोई भी पॉलिसी अपना जो डिजायर्ड इम्पैक्ट है वो नहीं ला पाएगी, क्योंकि पॉलिसी को धरातल में सक्सेस या अनसक्सेसफुल जनता करती है, इसलिए हमें हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत है। किस मायने में कर सकते हैं?

0: तो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया कि कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी अगर हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, जहां भी उस इंसान को, मुझे मेरा पर्पस अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, किसी एक्स वाई जेड का अलग हो सकता है, अपनी अपनी जर्नी को मैं पॉज करें, रिफ्लेक्ट करें, और जहां लगता है कि हाँ ये चीज थोड़ी इंप्रूव करने की जरूरत है, उस चीज को इंप्रूव करें। जैसे मुझे मालूम है मुझे 2 किलो वजन कम करना है, तो मेरा फोकस वेट पे होगा, मेरा फोकस थोड़ा एक्सरसाइज करने पे होगा। किसी को लगता है कि वो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है मोबाइल पे, तो उसका फोकस डिजिटल डिटॉक्स पे होगा। किसी को लगता है कि उसको बहुत इंपल्सिव आदत है वो शॉपिंग करने की। तो अपने हर अलग अलग इंसान का अलग अलग फोकस हो सकता है और उसका जज वो खुद ही होगा। तो यहाँ पे कोई गाइडलाइन नहीं है कि आपको ये ही करने की जरूरत है, जो भी आपको सही लगता है वो कीजिए, लेकिन करना जरूरी है। जब तक वो नहीं करेंगे, तो हम लोगों ने जो रिसर्च किया था उसमें यही पाया कि इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द चेंज, बींग द चेंज वाला कंपोनेंट कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। तो हम लोग बदलाव चाहते हैं लेकिन होने में थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं। तो अभी भारत जिस स्टेज में है, हमें बदलाव होने की भी बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है।
1: सो आशीष जी, आप जो इस राह पर चले हैं माइंडफुल कंजम्पशन को बढ़ावा देने की राह पर, आप बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा आपका अनुभव रहा जिसने आपको प्रेरित किया?
0: तो मैम, मैंने इरमा के बाद साबरमती गांधी आश्रम अहमदाबाद में पर्यावरण मित्र नाम की एक संस्था स्टैब्लिश की, जो कागज बिनने वाली बहनों के साथ काम करता है। तो इट इज ए कोऑपरेटिव ऑफ रैग पिकिंग सिस्टर्स। तो वो इनिशिएटिव अभी भी चल रहा है, 12 साल हो गए। लेकिन 2014 से 2020 की जर्नी में दो चीज बहुत सामने आई, बार बार आई, कि हमारे जो यूथ है, हमारे सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के अर्बन यूथ प्रिविलेज्ड सेक्शन में जो है, वो बहुत ज्यादा समय कम्युनिटी को नहीं दे पा रहे। वो आते हैं एज एन इंटर्न, अपना 2 वीक 4 वीक रहते हैं, चले जाते हैं। तो वो एक सवाल था कि सब कुछ है जिंदगी में, फिर भी गिव बैक क्यों नहीं कर पा रहे। और दूसरा सवाल था, 2020 की बात है ये, कि 75 साल हो गए आजादी को, लेकिन हम लोग अभी तक वो भारत क्यों नहीं बना पाए जिसको कल्पना हम लोग करते हैं, डिजायर्ड इम्पैक्ट क्यों नहीं आ पाया। तो 2021 में 15 महीने की एक यात्रा की मैंने, प्रोजेक्ट मंथन, जहां 2500 घंटे हम लोगों ने इन्वेस्ट किए 95 ऑर्गेनाइजेशंस विजिट करने में, जहां 8 अलग अलग डोमेन के लोगों से हम लोग मिले, किसान से, हाउसवाइफ से, वर्किंग प्रोफेशनल से, आईएएस, आईपीएस, एमएलए, सोशल चेंज मेकर, सबसे ये समझने की कोशिश किए कि ये जो इम्पैक्ट है उनके दृष्टिकोण में उनके काम का क्या रहा। तो उस पूरे 15 महीने की जो जर्नी थी उसका निचोड़ यही निकला, इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द चेंज वी समटाइम्स फॉरगेट टू बी द चेंज। तो माइंडफुल लिविंग, माइंडफुल कंजम्पशन, सादगी भरा जीवन है उसका एक सार बन के निकला, कि ये जो चीज है वो इस दोनों ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हम लोग सब लोग बी द चेंज भी हो पाएंगे और सादगी भरे जीवन से तनाव भी कम होगा। और इसीलिए फिर इस पूरे मूवमेंट को हम लोगों ने लॉन्च किया, और उस पर फिर ये थोड़ा सा समय लिया कि ये बातें अगर युवाओं तक पहुंचानी है तो उनकी भाषा में पहुंचानी होगी। तो वहां पे फिर डेटा बेस्ड अप्रोच हम लोगों ने लिया कि कैसे डेटा के माध्यम से, एक्सपीरियंशियल गेम्स के माध्यम से ये सारी बातों को सामने रखा जाए। तो यहां से शुरुआत की, और एक नंबर अपने आप को इंस्पायर करने के लिए हम लोगों ने एज ऑर्गेनाइजेशन ये नंबर लिया कि 10 लाख लोगों तक ये बात 2030 तक पहुंचानी है। तो इसीलिए ब्रिज फॉर चेंज उस मूवमेंट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जहां पे ये बातें हम लोग बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से, इंटरैक्टिव तरीके से, गेम्स के तरीके से युवाओं तक पहुंचा सके।
1: आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस गहन बातचीत के लिए और हमें बताने के लिए कि सादा जीवन शैली सभी के लिए कितनी फायदेमंद है, हमारे पर्यावरण के संरक्षण के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, और हम सब उसमें अपना अपना दान करें ये कितना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे आशीष अग्रवाल के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी सोनू सूद। आप इस कार्यक्रम को हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: युववाणी कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले आज की बात के अंतर्गत बात करते हैं सामाजिक बदलाव लाने में युवाओं की भूमिका इस विषय पर। जी दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति और भविष्य के निर्माता होते हैं। उनकी ऊर्जा, उत्साह, नवीन सोच और कार्य करने की क्षमता समाज को नई दिशा प्रदान करती है। आज का युवा केवल अपने व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि वह समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए भी निरंतर प्रयासरत है। इसलिए कहा भी जाता है कि आज का युवा कल का भविष्य है। सामाजिक बदलाव में युवाओं का योगदान, यदि हम इस विषय पर बात करें तो युवाओं में नई सोच और बदलाव को अपनाने की क्षमता बहुत ही अच्छी तरह होती है। वे समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वास, जातिवाद, लैंगिक भेदभाव और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं के विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं। शिक्षा, जागरूकता और तकनीकी के माध्यम से वे लोगों को सही राह दिखाते हैं। आज के युवा सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता फैलाने के लिए भी कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता अभियान, रक्तदान, वृक्षारोपण, महिला सशक्तिकरण का और साथ ही साथ शिक्षा का अधिकार, इसी के साथ नशा मुक्ति जैसे अभियानों में भी उनकी सक्रिय भागीदारी समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला रही है। शिक्षित युवा समाज को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करते हैं। शिक्षा के माध्यम से वे वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देते हैं और अंधविश्वास तथा रूढ़िवादी विचारों को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। राष्ट्र की प्रगति में युवाओं का योगदान सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ईमानदारी, अनुशासन, परिश्रम और देशभक्ति की भावना से प्रेरित युवा देश को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ विज्ञान, शिक्षा, खेल, राजनीति, चिकित्सा, कृषि और उद्यमिता जैसे सभी क्षेत्रों में युवा अपनी प्रतिभा से देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो रही बात सामाजिक बदलाव लाने में युवाओं की भूमिका इस विषय पर। और कार्यक्रम में आइए सुनते हैं झलकी 9-2-11। आलेख योगेश अग्रवाल का है, प्रस्तुति आर के त्रिपाठी की।
1: आइए सुने

0: हुजूर पकड़ा गया।
1: कौन पकड़ा गया?
0: दरोगा जी पकड़ लिया। इनसे मिलिए, ये है 420 4/25।
1: बहुत
0: करना,
1: बहुत खेल। ये हुई ना बात, शाबाश नजर सिंह। तुम्हें इस बदमाश को पकड़ने का इनाम मिलेगा। तुमने फिर पुलिस का नाम रोशन किया।
0: जी सर बहुत बेहतर। हुजूर मुझे कई दिन से इस बदमाश की तलाश थी। इससे दो रोज पहले ये सिनेमा हॉल से मुझे चकमा देकर 9-2-11 हो गया था।
1: यकीनन नजर सिंह, हमें तुम्हारी काबिलियत पर पक्का भरोसा है। तुम्हारी नजर से बचना कठिन है।
0: जी सर, क्यों मैं बदमाश? अब बता दे अपनी बदमाशी, नहीं तो मार तीन का अंक बना।
1: अरे सुनो तो सही नजर सिंह, पिछली बार जब मैंने इसे लाल किले पर धोखाधड़ी करते पकड़ा तो बड़ी 3-5 कर रहा था। बच्चू

0: दूसरी बार तो तू 3-5 करके भाग गया, अब तू खेल देख। लेकिन इस बार तू 440 के करण से नहीं छूट सकता।
1: देखा हुजूर, इसे आपका भी डर नहीं, किस तरह बत्तीस ही फाड़ रहा है। अरे सुन रे,
0: इसकी तो 32 ही बाहर निकाल दी जाएगी। ये बात ये खुद भी अच्छी तरह समझ रहा है कि ये दरोगा विद्वान सिंह के हत्थे चढ़ा है। दरोगा विद्वान सिंह के नाम से बड़े बदमाश के छक्के छूट जाते हैं, समझे लल्लू? 420 शोर कैसा है भाई, क्या हुआ?
1: कोई खास बात नहीं सर जी, वो मंदिर से पकड़े गए जेब कट से छोटे दरोगा जी दो दो हाथ कर रहे हैं। वो पट्टा अपना जुर्म कबूल नहीं कर रहा, उल्टा दरोगा जी से पंजा लड़ाने को कह रहा है।
0: अच्छा
1: हाँ।
0: अरे उस गिरे कट को इधर फॉलो करो, ऐसा छक्का लगा हुआ कि उसकी सारी फील्डिंग धरे के इधर ही रह जाएगी।
1: हाँ, हुजूर, हाँ। बड़ा शातिर बदमाश है, इससे पहले ये 376 में वांटेड है। आपको तो याद होगा जब वो 4 मंजिल होटल में इसने डांसर के संग मुंह काला किया था।
0: हाँ, मैं याद आया। फिर देर किस बात की है, आज इस मक्कार को 36 का आंकड़ा लागू कर दो। शाबाश। अरे मायादीन, जरा रजिस्टर नंबर 8 लाओ। एक पंथ दो काज, न नोमन तेल होगा न रहना चेगी।
1: बहुत ठीक, बहुत बेहतर सर। मुझे मालूम है कि अगर आपकी छाया भी इस पर पड़ जाए तो जानता हूं कि आप इसे वो 4 चांद दिखाएंगे, यानी कि एक पंथ दो काज।
0: बिल्कुल ठीक 420 और उस 376 दोनों को एक हवालात में बंद कर दो, एक ही रात में 99 के चक्कर में पड़ जाएंगे।
1: सर जी, एक बात कहूं,
0: बोलो।
1: इन बदमाशों को एक साथ रखना ठीक नहीं है हुजूर। लेकिन वो क्या है ना कि बड़ी पुरानी कहावत है कि एक और एक 11 होते हैं हुजूर।
0: ओहो, लेकिन तुम इस मुहावरे को अक्सर भूल जाते हो। नजर सिंह, जब अकेला चना भा नहीं फोड़ सकता तो क्या दो चने मिलकर हवालात के किवाड़ तोड़ेंगे?
1: बहुत ठीक सर, बहुत ठीक। दोनों को एक हवालात में मच्छरों के हवाले कर देता हूं,
0: हाँ
1: सारी चौकड़ी भूल जाएंगे सुसरे।
0: शाबाश नजर सिंह, शाबाश। तुम अपना प्रमोशन 100% पक्का समझो।

0: मायादीन, अरे कहाँ निकल गया? जाने कहाँ तीन तेरे करता रहता है। मायादीन।
1: जी सर, जी जी आये हुजूर।
0: वो ताल का बत के लिए फोर्स भेजा?
1: जी सरकार, रवाना हुआ।
0: और परीक्षाओं में फोर्स ड्यूटी का इंतजाम पूरा हुआ?
1: बहुत बेहतर तरीके से सरकार, सब काम 35 है।
0: और वो भिंडी बाजार की डकैती में मुलजिमों की तलाश का सिलसिला?
1: जी सर, सुलाग्रसी चल रही है उस केस में, मुखबिर अपने अपने काम पर है।
0: और बैंक डकैती का माल मिला?
1: जी जी,
0: ये तो वही हुआ ना, यानी 9 दिन को चले और कितने के? 2.5 को।
1: अजी साहब, एक अनार 100 बीमार, इसका झटका चल रहा है इस थाने में। मैं तो भागते भागते सरकार लकड़ी हो गया हूँ, भागते भागते सरकार।
0: बहुत ठीक। अब वो कहते हैं ना, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती।
2: जय लीजिए हुजूर, दरोगा साहब, आज हाथ लगा है ये बदमाश। शक्ल से ही एकदम बदमाश नजर आता है हुजूर। सदर चौराहे पर राह चलती जनानियों से आंखें चार कर रहा था।

0: यानी उनमें से किसका खेल खेल रहा था?
1: इसी खेल में मैंने आज से धर दबोचा है हुजूर। बहुत शातिर बनता था। कह रहा है इसने मेरे जैसे 365 सिपाही पहले देखे हैं।
0: अच्छा,
1: बात 3-5 करता है हुजूर।
0: इसका पहाड़ा मैं सुनूंगा हुजूर। बच्चू अब देखना। मायादीन इसे इधर लाओ, हम इसकी लाठी परेड करेंगे। बताओ एक म्यान में कितनी तलवारें रखी जा सकती हैं?
2: मुहावरा तो एक म्यान में सरकार एक ही तलवार रखने का है।
0: अरे हमने मुहावरा बदल दिया है मायादीन, हम एक म्यान में 3 तलवार रखेंगे। क्या बोला?
1: बिल्कुल ठीक सरकार।
0: इस बदमाश को हवालात में रशीद करो।
1: अच्छा हुजूर, एक बात समझ में आ रही है। जहां 2 तलवारें हैं, एक मयान में चुपचाप पड़ी गा रही है, वही ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11।
0: बिल्कुल ठीक। एक अकेला, 2 का बेला, 3 तिगाड़ा, काम बिगाड़ा।
3: अंधा क्या चाहे हुजूर, 2 आंखें।
0: नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। बंद कर दो इस बदमाश को हवालात में। वाकई ये तो शातिर किस्म का बदमाश है। ले जाओ इस चौदमी के चांद को।

0: सुना मायादीन तुमने, मेरा तो एक सूत्री कार्यक्रम है,
1: पाई पाई का हिसाब ऊपर देना पड़ेगा, समझे?
2: यही तो कहता हूँ भैया, 20 नखूनों की कमाई पे भरोसा करो, नहीं तो चारों खाने चित हो जाओगे। मुझे सब पता है, दरोगा जी की आजकल भैया पांचों उंगलियां घी में है, कहना नहीं किसी से।
1: अरे मैं क्या कहूंगा माता दीन, मुझे तो तू वो 00 समझता।
2: नहीं रे, तू तो लाखों में एक है।
3: 3, 2, 5 माया दीन, सब ठीक है ना?
2: अयूर, क्या क्या गलत क्या कही हमने? अपना तो वही ख्याल है कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात।
3: आज तुम्हें नुक्ते की बात बताता हूँ मायादीन।
2: जी सरकार।
3: यानी 1 पंथ 2 काज।
2: हाँ साहब, न 9 नकद न 13 उधार।
1: गजब हो गया हुजूर, गजब हो गया। ये हवाला से धुआं सा क्या निकल रहा है? दरोगा जी, दरोगा जी, अरे कोई गड़बड़ है। हाँ, धुआं तो बढ़ते ही चला जा रहा है, मेरा तो दम घुट जा रहा है।
4: हुजूर देखिए।
3: अरे खरे रे, पता करो, अरे पता करो इस धुएं का, जल्दी से फायरब्रिगेड को बुलाओ। क्या हुआ? जल्दी फोन करो फायरब्रिगेड को, जरूर कुछ गड़बड़ लगता है मायादीन।
1: साहब, हवालात में कुछ भी नजर नहीं आता, बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है।
3: मुझे तो घबराहट हो रही है। मैं तो पहले ही कह रहा था, 3 तलवारों को 1 म्यान में मत रखो, मत रखो। अरे धुआ बढ़ रहा है। मेरी आवाज को क्या हुआ मायादीन? मायादीन पानी लाओ।
1: आपकी आवाज है, पानी लेके आओ माता दी।

0: के वाला फोन भी नहीं मिलता है।
1: मैं छत पर जाकर देखता हूँ हुजूर, हवालात में कुछ अनहोनी हो रही है।
0: मेरी तो आंखें बंद हो रही हैं, मेरी तो आंखें बंद हो जा रही हैं, मुझे तो एक एक के चार चार नजर आ रहे
2: हैं। तुम हालात में देखो, अरे देखो उन तीन तिलंगों के करामात है ये। इन्हें मारते मारते भूत बना दूंगा। राजा सिंह, राजा सिंह तुम क्या करे हो?
3: अभी तक आपने सुनी है झलकी 9-2-11। आलेख योगेश अग्रवाल का था, प्रस्तुति आरके त्रिपाठी की थी।
4: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: श्रोताओं, और अब इसी के साथ आज का ये युववाणी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी तक आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की 3री बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाए गए हैं और 100

0: 5 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि अगले चरण में इसके अधिकतम उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली का कवच कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया है कि छत्तीसगढ़ के बलोद जिले ने पिछले एक वर्ष में वर्षा जल संग्रहण और संरक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 285,000 जल संरक्षण और पुनर्भरण संरचनाएं स्थापित की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कैच द रेन अभियान की गति बनाए रखने का आह्वान किया था। इसके बाद बलोद जिला जन भागीदारी के दूसरे चरण के अंतर्गत सामुदायिक जल संरक्षण का एक उल्लेखनीय उदाहरण बनकर उभरा है। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच समिति का गठन किया था। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पूर्वोत्तर भागों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स में एकमात्र टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 3 विकेट पर 122 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय।
2: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

लीजिए प्रस्तुत है सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी संध्या 6:15 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। इस कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय रहेंगे किसानों के लिए कम लागत में अधिक उत्पादन के उपाय और जल भराव से फसलों को बचाने के उपाय। इस विषय पर चर्चा, साथ ही सुनिएगा वार्ता, पशुओं में बरसात के मौसम में बीमारियां और बचाव। जानकारी देंगी डॉक्टर प्रभा कटियार।

संध्या वंदन कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे। संध्या 6:45 पर ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 7:05। आज इस कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं रेखा चित्र खेमा गुरु, प्रस्तुत करेंगे मनमोहन।

बजकर 5 मिनट। आज इस कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं रेखाचित्र खेमा गुरु, प्रस्तुत करेंगे मनमोहन अभिलाषी।

श्याम सुहानी। श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं संध्या 7:31 पर। फिल्म संगीत आपको सुनवाएंगे रात्रि 8:20 पर। सुनिएगा देशभक्ति परक रचनाएं।

एक ही फिल्म से। ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 8:30 पर। रात्रि 9:15 पर आप सुन सकते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नवरंग।

नौटंकी आपको सुनवाएंगे रात्रि 10 बजे। नौटंकी का विषय रहेगा अखंडता में एकता। लेखक होंगे विजेंद्र सिंह वर्मा, प्रस्तुति नरेश मल्होत्रा की होगी। रात्रि 10:30 पर आप सुन सकते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। कलाकार होंगे श्री कामोद मिश्रा।

रात्रि 11 बजे हिंदी में 11:05 पर होंगे अंग्रेजी समाचार। रात्रि 11:10 पर होगा हमारी द्वितीय सभा का समापन। अभी तक आप सुन रहे थे सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं।

अभी तक आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में देश गान। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण।

ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम सुनने वाले सब किसान भैया बहनन को दिलीप यादव की राम राम। किसान भैया, बरसात की शुरुआत भई है और खेती में काम शुरू भयो है। हम चर्चा कर रहे हैं किसानों के लिए कम लागत में अधिक उत्पादन के उपायों की। तो किसान भैया, जैसे कि आप सब कुछ जानो हो, लेकिन आपकी जानकारी के संग संग वर्तमान जो स्थिति परिस्थिति है उनके अनुरूप अपनी खेती में थोड़े प्रयोग करने की ज़रूरत है, वैज्ञानिकन की सलाह की ज़रूरत है, क्योंकि समय बदलो है और समय के हिसाब से चीज़ बदली है, प्रकृति बदली है, बरसात के दिन बदले हैं, ठंड के दिन की संख्या कभी घटी है कभी बढ़ी है, गर्मी कभी तेज़ भई है तो कभी कम पड़ी है। तो ये

ये स्थिति परिस्थिति है, उनने हमारी खेती खेती की प्रक्रिया सब कछु बदलो है। हमें भी या बदलाव के संग ही अपने तौर तरीकन में बदलाव की जरूरत है। खेती में अधिक उत्पादन और लागत में जो कमी है, बाकी काजे कौन कौन सी चीज जरूरी है, यह विषय पे हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज किसान भैयाओं, अच्छे उत्पादन के काजे अच्छे बीज की जरूरत होए। वैसे तो आप सब लोग नए बीज लाए पे लगे हो, चाहे सरकारी बीज गोदामन से लाओ या बाजार से लाओ, ज्यादातर किसान भैया नया बीज ला में। लेकिन यह बीज में देखने वाली बात यह होए कि सबसे पहले जो बीज अनुसंधान संस्थान से निकले, वहां से प्रजनक यानी ब्रीडर बीज निकले, या कोई उपज थोड़ी सी कम हुए, लेकिन या से जो बीज बने वो बने आधारीय, फाउंडेशन वन। तो फाउंडेशन बीज की जो उपज क्षमता है वो सर्वाधिक रहे, और फाउंडेशन वन के बाद जो बीज बने वो फाउंडेशन टू यानी आधारीय दो। और यह को जो टैग है, बीज को कट्टा आप लोगे तो वो सफेद रंग को टैग होगा, वहाँ पे बीज प्रमाणीकरण संस्था की मोहर लगी होगी। तो सफेद रंग वाले टैग को बीज को थैला आपको मिला है तो समझ लो कि अब सर्वाधिक उपज वालों बीज आपने लियो है। बीज की तीसरी श्रेणी आवे वो है प्रमाणित की, या को नीले से रंग को हल्के से हरे और नीले से रंग को टैग आवे, तो ये सबसे आखिरी श्रेणी को बीज हो, बाकी उपज भी थोड़ी सी फाउंडेशन के मुकाबले कम मिले हैं। तो पहली प्राथमिकता अच्छे बीज की है। तो अच्छे बीज आपको अगर फाउंडेशन वन आपने लियो है तो आप कोशिश ये करें कि अपने घर की जो फसल है वहाँ में से ही पहले ही काट के ठीक सो सुखाए के और जूट के बोरा में अपनी जितनी ज़रूरत है बीज की बाकू रख ले में। अब हम धान की ही बात करें, किसान भैया को धान 25 रुपया किलो जाए लेकिन बीज लेवे जाए तो 100 रुपया किलो हो। अरे भैया, तुम्हारे खेत में जो धान तुमने लगाया हो है, फाउंडेशन धान तुमने लगाया हो है, बाही में से बीज को काट छाँट के, अच्छे अच्छे पौधन को छाँट के या एक कोने पे ते छाँट के, झड़ा के सुखा के अपने जूट के बैग में रख लो, अगले साल बाकू बीज के रूप में 6 महीने बाद ही आपको बीज के रूप में बाकू प्रयोग कर सको। तो यानी अगर आपकी ज़रूरत 50 किलो बीज की है तो आपने 75 रुपया किलो के हिसाब से कम 3-3,500 रुपया की बचत तो कर ही ले। तो पहली ज़रूरत बीज की है। दूसरी चीज़ महत्वपूर्ण है फसल में, खेती में खाद। तो खाद की अगर हम बात करें तो हमारे किसान भैया को ये अंदाजा ना हो हमारी ज़मीन में कौन सी चीज़न की कमी है। पड़ोसी ने जिंक डाली है तो हम जिंक डाल रहे हैं, पड़ोसी ने जुबरेलिक एसिड डालो है तो हम जुबरेलिक एसिड डाल रहे हैं। यानी कि पड़ोसी की मेड़ पे जो पन्नी पड़ी है, बिना देख देख के हम खाद दवाई इन सब को प्रयोग करें। भैया, तुम्हारी ज़मीन की अगर मिट्टी की जांच आपने अगर कराई हो तो निश्चित रूप से आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी ज़मीन में कौन कौन से पोषक तत्वन की कमी है। जिन पोषक तत्वन की कमी है उनकी कमी कितनी है, कितनी मात्रा में है, ये भी जानकारी आपको मिट्टी की जांच से है जाए है। तो जिन तत्वन की कमी है आपको उन्हीं तत्वों को अपने खेत में डालना चाहिए। लेकिन किसान भैया करें कहाँ है, सब कछु मिलाए के और रड गड करके और अपने खेत में डालते रहे तो बस से उनकी जो लागत है वो ड्योढ़ी, कम से कम ड्योढ़ी तो है ही जाए और दोगुनी तक है जाए। तो अगर आपको अपनी लागत और कम करनी है तो मिट्टी की जांच जरूर करा। मैं मथुरा की हम बात करें तो देखो, प्राइवेट जो कंपनी है, कई उर्वरक की कंपनी है, वो भी जांच करें। इफको के जो सेंटर हैं उनके माध्यम से भी मिट्टी की जांच होए, और वेटनरी यूनिवर्सिटी यानी वेटनरी कॉलेज जाकू आप जानो हो, कचहरी से थोड़ा सा आगे है, वहाँ में कृषि विज्ञान केंद्र है और कृषि विज्ञान केंद्र में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है। तो आप वहाँ जाके भी अपने मिट्टी के नमूना लेके जा सको और जानकारी लेके आ सको कि भाई मिट्टी को नमूना कैसे लिया जाए, खेत में कितनी जगह से लिया जाए, बी आकार को गड्ढों कैसे खोदो जाए, कैसे मिट्टी को मिलाया जाए, कैसे सैंपल तैयार करो जाए और वहाँ पर दिया जाए। तो निःशुल्क या ज़्यादा से ज़्यादा 7 रुपया कीमत में आपकी मिट्टी की जांच है जाए, और यह जांच से आपको पता चल जाए कि आपको कौन कौन से तत्व अपने खेत में या अगली जो फसल लेनी है वहाँ डालने हैं। तो मिट्टी की बात है गई। अब देखो भैया, पानी बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो हमारे पास पानी की कैसी उपलब्धता है खेती में, अगर हमारे पास कम पानी की उपलब्धता है तो हम ऐसी फसल लें जब एक ही पानी में पक जाए, जैसे सौंफ है, जौ है, रवि के सीजन की हम बात करें तो जौ में एक पानी में ही जौ तैयार रह जाए, सौंफ भी एक पानी में तैयार रह जाए। ज़्यादा पानी हमारे पास है तो ज़्यादा पानी वाली फसल जिनमें बार बार पानी लगाना पड़े हम वो फसल उनको लगा सकें। तो पानी की उपलब्धता बहुत ज़रूरी है जानवो, और पानी

पे अगर अतिरिक्त धनराशि हमको खर्च करनी पड़ रही है तो हम कम पानी वाली फसलों को प्राथमिकता देंगे तो हमारी फसल की लागत और घट जाएगी। अब बात आवे कि लाभ, देखो फसल आपने अच्छी करी लेकिन मंडी में तो रेट ही ना है, तो अगर आपको रेट के माध्यम से, चूंकि देखो किसान की फसल की कीमत तो व्यापारी ही निर्धारित करे है, सरकार MSP घोषित करे और MSP पर खरीद हो करे, लेकिन उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो बहुत से केंद्रन पे, जैसे मेरी फसल कट रही है आज लेकिन जैसे सेंटर पे मुँह को बेचनो है वहाँ बारदानो ही ना है, ऐसी दिक्कत रहे, तो आपको अपनी फसल को उचित मूल्य अगर प्राप्त करना है तो मिश्रित खेती, जैसे बुंदेलखंड में कछु किसान भैया करें गेहूं के संग में ही मसूर और कई दलहन और कई सब चीज़ों को मिला के डारे, एक फसल में सरसों भी मिला दें, तो एक फसल में अगर नुकसान है रो तो दूसरी फसल से बाकी भरपाई करें, यानी कि नुकसान की जो बात है, चाहे फसल के नुकसान की बात है या रेट के माध्यम से नुकसान की बात है, मिश्रित खेती करके आप या नुकसान से अपनी फसल को बचा सको हो। दूसरा, सरकारी योजना बहुत सारी आम है, देखो सब्जी वाली खेती किसान भैया करें तो मथुरा की हम बात करें तो यहाँ जैसे उद्यान विभाग को जवाहर बाग में कार्यालय है, वहाँ से बहुत सारे FLD छोटे छोटे फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन या प्रक्षेत्र प्रदर्शन, यानी कि किसानों के खेतरन पर दो एकड़ से कम के FLD के काजे बीज है और खाद है, तकनीकी जानकारी है, ये सब चीज़ उद्यान विभाग के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई जावे हैं, और या को लाभ जी हो कि किसान भैयान को अच्छी उन्नत किस्म को बीज मिल जाए जो बाज़ार में, अब टमाटर के बीज की हम बात करें तो 1,00,000 रुपया किलो, 50,000 रुपया किलो और बहुत से बीज हैं जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा ज़्यादा है, तो कीमती हाइब्रिड बीज, ज़्यादा उपज देने वाले बीज आपको सरकारी योजनाओं के माध्यम से मिल सके। पानी के काजे हम बात करें तो देखो जैसे सरकार ने सोलर स्कीम चला रखी है, सोलर पंप योजना है, साल 6 महीने में निकलती रहे, कृषि विभाग के लोग ग्रुपन में डाले हैं तो आप अपने खेत पर सोलर लगा सको तो आपकी जो पानी को खर्चा है साल भर को वो पूरी तरह से ख़त्म, एक बार आपने 3 किलोवाट को सोलर लगाया 70-80,000 रुपया की किस्त सरकार को गई, बाकी बाद में 20-25 साल तक आपकी जो डीजल को या पानी के नाम पे जो खर्चा है वो खर्चा बंद है जाए, तो सरकारी योजना को लाभ लेके भी आप वो कर सको। अब कम पानी वाले इलाके हैं वहाँ देखो उद्यान विभाग के माध्यम से ही टपक सिंचाई है, स्प्रिंकलर सिंचाई है और कई तरह के जो संसाधन हैं वो सरकारी अनुदान पर मिले, ट्रैक्टर वो सरकारी अनुदान पर मिले, छोटे ट्रैक्टर अनुदान पर मिले, तो बागवानी से जुड़े हुए बहुत सी योजना है, इनको लाभ लेके भी आप अपनी खेती की लागत को कम कर सको, क्योंकि मुनाफा बढ़ावे की जहाँ तक बात है तो मुनाफा तो या तो उत्पादन बढ़े या कीमत बहुत ज़्यादा बढ़े, तो उत्पादन की बढ़वे की जो स्थिति है वो अब करीब करीब स्थिर है, वैज्ञानिक लगातार अनुसंधान कर रहे हैं, उत्पादन बढ़ावे वाली किस्मन पर काम कर रहे हैं, लेकिन बामे बढ़वार की बहुत ज़्यादा गुंजाइश फिलहाल ना है, तो उत्पादन ज़्यादा बढ़ेगा नहीं तो हम अपना लाभ मुनाफा कैसे बढ़ावें, मुनाफा बढ़ावे को तरीका यही है कि हम अपनी लागत को कम करें, तो खेती की लागत कम करके ही मुनाफे को बढ़ाया जा सके है, ये हो आज की हमारी चर्चा को पहला विषय भैया। अब देखो लागत की बात है गई तो खेती में तो देखो हर दिन किसान भैया सीखे है, अब बरसात को सीजन है और बरसात के सीजन में जल भराव वो एक समस्या बने, गर्मी है तो आदमी बहुत भयंकर है झेल जाओ, लेकिन बरसात अगर 2 घंटा की है गई तो 2 घंटा में चार ओर को हाय तो वो मचन लगे, तो दूसरी हम चर्चा कर रहे हैं जल भराव से फसल को बचाने के उपाय, तो किसान भैया जिन फसलन में पानी की ज़रूरत कम रहे, जैसे बाजरा है, बाजरे में पानी की एकाध की ही ज़रूरत रहे, तो हमें यह चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी फसल के कपास है, दलहनी फसलन में अरहर है, ये जो फसल है इनमें पानी की बेहद कम ज़रूरत रहे, तो कम पानी वाली फसलन में जल भराव से बचाव के उपाय पर हमें ध्यान देना चाहिए, और हमारे खेत के आसपास हमें ऐसी गूल या भरा पानी निकासी के काजे बनाकर रखना चाहिए कि जब भी बरसात ज़्यादा हो तो हमारे खेत को पानी निकल के ऐसे इलाके में चलो जाए जहाँ पानी की ज़रूरत है, तो हर जगह पे तो ये व्यवस्था हो संभव ना है, और जहाँ क्योंकि हमारे यहाँ जोत छोटी है, दूसरे तरीका राजस्थान में जहाँ बड़ी जोत है, पंजाब जहाँ बड़ी जोत है, वहाँ तो किसान भैया खेत के बीचों बीच में तालाब खुदवा दें तो जितना भी अतिरिक्त पानी है वो वह तालाब में इकट्ठा होते रहे और जब बाकी ज़रूरत हो वह लिफ्ट करके अपने खेती में काम में ले ले में, तो जल भराव से अगर हमको फसल को बचाना है तो यही हमारे पास एक विकल्प है, और दूसरा

0: विकल्प अगर ज़्यादा पानी भरने की स्थिति है तो पंप सेट से निकाल सकें, मोटर से निकाल सकें। तो हमें अपनी जो तैयारी है गर्मी के समय में जब हमारे खेत खाली रहे, वह हिसाब से करके रखनी चाहिए कि हमारी जो फसल है आगे हमें कौन सी लेनी है, और कम पानी वाली लेनी है तो पानी के निकास की व्यवस्था करनी है, और अगर ज़्यादा पानी वाली बात है तो कोई दिक्कत ही ना है। जैसे धान की फसल है, थोड़ा ज़्यादा भी पानी है जाए तो बाखूबी निकालना पड़े, क्योंकि ज़्यादा पानी जो पोषक तत्व तो हमारी फसल को मिलने हुए वह मिलवे में दिक्कत पैदा करे। यानी कि अगर आपने जिंक डाली है और पानी आपके खेत में, धान के खेत में भी पानी ज़्यादा है, तो पौधा को जितनी मिलनी चाहिए वो में से कहो तो आधी भी नहीं मिले। तो पानी की ज़रूरत तो रहे, लेकिन पानी वाली फसल में हूँ उतने ही पानी की ज़रूरत रहे जितनों ज़रूरी है। जिनाए के वहाँ 6 इंची पानी खड़ा कर दो, 1-2 इंची पानी, 3 इंची पानी तक तो पानी चले, लेकिन धान जैसी फसल में वहाँ से ऊपर पानी जाए तो दिक्कत पैदा हो जाए। तो किसान भैया, ये है कहीं आज की हमारी चर्चा। अब कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं आपको एक प्यारा सा लोकगीत।
1: जय गायो है वंदना सिंह ने, या के बोल हैं, बरखा की आई है बहार रे, मोए जामुन खवाए दे।

0: वंदना सिंह के स्वर में लियो आप सबने यह लोकगीत को आनंद। तो किसान भैया, अब सुन पा रहे हैं हम आपको एक वार्ता। बरसात के मौसम में पशुओं में होने वाले रोग और उनका निदान विषय पे वार्ताकार हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार। सुने ये वार्ता।
1: किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे पशुओं में बरसात से होने वाले जो विभिन्न प्रकार के रोग हैं उनके बारे में। तो जैसे जैसे बरसात शुरुआत होती है, तो बरसात जब आती है तो सभी को बहुत अच्छा लगता है, हर जगह हरियाली हरियाली दिखाई पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे हरियाली आती है वैसे वैसे कई प्रकार के रोग भी लाती है बरसात। तो बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस और परजीवी रोग पशुओं में शुरू हो जाते हैं। तो हम बात करेंगे कि जो मुख्य रोग हैं पशुओं में उनके बारे में और उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो जैसे जब बरसात आती है तो सबसे पहले क्या होता है कि जो तालाब के किनारे या नदी के किनारे, तो चारा जो होता है वहां पर छोटे छोटे घोंघे होते हैं। वो घोंघे क्या होते हैं, परजीवियों के लिए मध्यवर्ती पोषक या इंटरमीडिएट।

होस्ट होते हैं। जब बरसात में हर जगह से पानी भर जाता है तो फिर किसान भाई की मजबूरी हो जाती है कि चारा कहीं से काट के लाके खिलाए पशुओं को, तो उन चारे में छोटे छोटे घोंघे भी आ जाते हैं, जिनसे वो उन घोंघों के द्वारा पशुओं के पेट में जा करके विभिन्न प्रकार के परजीवी उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरा ये होता है कि जहाँ पशु बांधते हैं वहां पर क्या है, पानी भर जाता है, उनके बैठने का स्थान सूखा नहीं रह पाता है, जैसे बाहर के चारा आने से परजीवी रोग उत्पन्न होते हैं, और जहां पर पशु बांधते या बैठते हैं वहां गीला होने की वजह से कुछ बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, वायरस उत्पन्न हो जाते हैं, उनसे पशुओं में बैक्टीरियल और वायरल रोग भी हो जाते हैं। तो उन वायरल और बैक्टीरियल रोग में जैसे कि गला घोंटू हुआ, या खुरपका मुंहपका हुआ, या लंगड़ा बुखार कहते हैं, या एंथ्रेक्स जैसी भयंकर बीमारियां भी हो जाती हैं। तो हम एक एक करके इन बीमारियों पर चर्चा करेंगे। तो जैसे गला घोंटू है, गला घोंटू रोग क्या होता है कि पशुओं के गर्दन में एकदम से सूजन आ जाएगी, पशु सांस नहीं ले पाएगा, और उसमें घर घर की आवाज आएगी जो काफी दूर से सुनी जा सकती है। तो यह बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न रोग है। तो किसान भाइयों से अनुरोध यह है कि अगर इस तरह से कोई भी समस्या उनके पशुओं में आती है तो तुरंत ही अनदेखी न करते हुए नजदीक के पशु चिकित्सक से संपर्क करें और उनका उचित इलाज करवाएं। उनको ये ना सोचें कि ये स्वेलिंग या सूजन ऐसे ही आ गई होगी, ये एक भयंकर बीमारी का द्योतक है। ऐसे ही दूसरा रोग होता है बैक्टीरिया के द्वारा, थनैला रोग, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मैस्टाइटिस। तो थनैला रोग जो होता है वो भी बैक्टीरिया के द्वारा ही होता है। होता कैसे है कि जो विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, तो जब पशु को किसान भाई हमारे दूध दुह लेते हैं, दूध दुहने के बाद जो उनकी दूध की नली होती है वो तकरीबन 10 मिनट तक खुली रहती है। दूध दुहने के बाद जब उसको थोड़ी सी कमजोरी से महसूस होती है तो फिर वो बैठने की कोशिश करता है और बैठ भी जाता है। जब वो बैठ जाता है तो उस दूध जो नली होती है वो खुली होने के कारण उसमें बैक्टीरिया प्रवेश कर जाते हैं, और जब बैक्टीरिया प्रवेश करने के बाद फिर वो उसको अंदर इन्फेक्शन पैदा करते हैं, जिससे शुरुआती लक्षणों में क्या होता है कि दूध में छिछड़े आना, थनों में सूजन आना, दूध कई बार खून भी आने लगता है, तो दूध लाल रंग का दिखाई पड़ता है। इससे किसान भाई बहुत परेशान हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले उनको नहीं पता होता है तो उसकी सोचते हैं सूजन आ गई है तो सिकाई कर देते हैं। ऐसा कदापि ना करें। जब भी इस तरह के थनों में कोई सूजन दिखाई पड़े तो उसको ठंडे पानी से धो लें, और ठंडे पानी धोने के बाद हो सके तो बर्फ से सिकाई कर सकते हैं, लेकिन धुआं या गर्म पानी से कतई ही सिकाई मत करें। दूध धोने के बाद उसको हम लाल दवा से धो देते हैं, जिससे कि कोई गंदगी लगी ना रहे या दूध लगा ना रह जाए जिसमें कि बैक्टीरिया उत्पन्न हो पाए। और पशु जब बैठना चाहते तो उस समय पशु को बैठने मत दें जिससे कि बैक्टीरिया उसके थनों में प्रवेश कर पाए। तो इन सब चीजों से अगर हम अपनाएंगे तो हम पशुओं को थनैला रोग से बचा लेंगे। दूसरा एक बीमारी आती है खुरपका और मुंहपका रोग। तो जो खुरपका मुंहपका रोग होता है ये पशुओं में मुंह पे छाले आ जाते हैं, पैरों में छाले आ जाते हैं, इतने ज्यादा छाले आ जाते हैं कि पशुओं के मुंह से हमेशा लार टपकती रहती है, पशु लंगड़ा कर चलने लगता है क्योंकि छाले की वजह से। तो उस केस में क्या करते हैं कि अगर इस तरह के कोई लक्षण दिखाई पड़े तो पशु चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें, और पशु चिकित्सक को उनका उपचार मालूम होता है तो वो तुरंत उसका उचित उपचार करेंगे। दूसरा एक सलाह यह है कि अगर आपका स्वस्थ पशु और इस तरह का कोई संक्रमित पशु आपको दिखाई पड़ता है तो तुरंत संक्रमित पशु को स्वस्थ पशु से अलग करें और उसको ऐसी दिशा में बांधें कि जैसे हवा का प्रभाव संक्रमित पशु से स्वस्थ पशु की ओर ना हो, क्योंकि इसका वायरस हवा में भी पहुंच जाता है। तो एक दूसरे से संक्रमित पशु से स्वस्थ पशु में तुरंत इन्फेक्शन हो जाएगा। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि पशु को ऐसी जगह पे बांधें कि हवा विपरीत बहे स्वस्थ पशु की तुलना में। दूसरा आता है लंगड़ा बुखार या ब्लैक क्वार्टर या ब्लैक लेग भी कहते हैं, कहीं लंगड़ी भी बोल देते हैं। इस तरह से भी बीमारियां होती हैं हमारे पशुओं में। तो जब बरसात आती है तो जो बहुत सारे विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया हैं, तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि उनके शरीर में जगह जगह पर वो घाव टाइप के या फिर अंदर ही अंदर उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो जो जहां पर इस प्रकार के बैक्टीरिया अगर डेवलप हुए उत्पन्न हुए हैं तो वहां पर अगर आप हल्के से हाथ लगा के देखेंगे तो वो चीज वहां पर गर्म रहेगी, प्लस एक अलग तरह की आवाज आएगी। पशु इस प्रकार से संक्रमित हो जाता है कि इनमें भी वो लंगड़ा कर चलने लगता है, जिससे कि इसको लंगड़ा बुखार भी कहते हैं।

0: और पशु को हाई टेम्परेचर रहता है हमेशा। तो इस तरह के अगर लक्षण आपको दिखाई पड़ते हैं तो भी अपने पशु नजदीक के पशु चिकित्सक से सलाह लें और उचित उपचार करवाएं। एक बीमारी आती है एंथ्रेक्स, तो एंथ्रेक्स के भी जो स्पोर होते हैं ये भी बैक्टीरियल बीमारी है। तो अगर जब बीमारी का प्रकोप पशुओं में हो जाता है तो पशु तुरंत ही इसमें दम तोड़ देता है, उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। और क्या होता है कि जो उसके नेचुरल छिद्र हैं, जैसे एक नाक हुआ, मुंह हुआ, या जहाँ से पशु मलमूत्र त्याग करता है वहां से खून आने लगता है। तो ये आप ये जो बैक्टीरियल बीमारियां हैं जो बरसात के समय से शुरुआत के समय से ही होना शुरू हो जाती हैं, इनके ये लक्षण हैं। और अगर इन लक्षणों से आपको अगर कोई भी दिखता है तो तुरंत अपने पशु चिकित्सक से अवश्य सलाह लें, इधर उधर का कोई सलाह ना लें, हमेशा हमें पशु चिकित्सालय पर जाकर के उचित इलाज करवाएं। सबसे बड़ी बीमारियां आती हैं परजीवियों की, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि परजीवी रोग सबसे अधिक होते हैं इसमें, क्योंकि बरसात में परजीवियों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि कोई भी चीज आप उसको पशु को खिलाएंगे तो हम लोग उनको बचा ही नहीं सकते हैं। तो उपचार सिर्फ यही है कि पशु चिकित्सक के पास जाएं और उनकी गोबर की जांच करवाएं अपने पशु के, क्योंकि जो परजीवी अगर शरीर में पहुंच गया है तो वो अंडे जरूर देगा, तो वो अंडे गोबर में आने लगते हैं, तो जिससे पता चल जाता है कि इस पशु में इस प्रकार का परजीवी का प्रकोप हो चुका है। तो अपने पशु चिकित्सक के पास जाएं गोबर लेकर के, और वो गोबर की जांच करेंगे और जांच करके बता देंगे कि इसको ये प्रकार का परजीवी आपका संक्रमण हो चुका है, तो ये वाली दवा आपको खिलानी है। ऐसे ही आप किसी दुकान से की परजीवियों की दवा दे दो, इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि हमने गला घोंटू, थनैला, खुरपका, मुंहपका, लंगड़ा बुखार, एंथ्रेक्स और परजीवियों के बारे में चर्चा की। और हाँ, इन सब चीजों से बचने के लिए एक और है कि वैक्सीन आपको अपने पशु चिकित्सक से मिल करके लगवानी चाहिए। जैसे कि साल में 2 बार वैक्सीन लगती है, गला घोंटू की लगती है, खुरपका मुंहपका की लगती है, तो उनको पता रखिएगा कि वैक्सीन कब लग रही है और अपने पशु को वहां ले जा करके वैक्सीन जरूर लगवाएं। यह वैक्सीन बिल्कुल निःशुल्क लगती है सरकार की तरफ से। तो आप अगर वैक्सीन लगवा करके पशुओं को सुरक्षित रखेंगे तो हम समझते हैं आपको किसी भी प्रकार की पशुओं के संबंधित बीमारियां नहीं होंगे। धन्यवाद किसान भाई।
1: बरसात के मौसम में पशुओं में होने वाले रोग और उनका निदान विषय पे सुनिए आपने वार्ता। वार्ताकार है डॉक्टर प्रदीप कुमार। किशन भैया, वो घड़ी हमें इशारों कर रही है कि हमारे कार्यक्रम को समय पूर्ण हो चुका है। अगले कार्यक्रम में फिर आप सबसे होगी मुलाकात। तब तक सब किसान भैया बहनों को दिलीप यादव की राम राम।

अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण, FM 102.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम संध्या वंदन।

ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी लता मंगेशकर की और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में।

कार्यक्रम में ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी जगजीत सिंह की आवाज़ में। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संध्या वंदन।

कार्यक्रम के अंत में आपने सुनी ये भक्ति रचना अनूप जलोटा की आवाज़ में। और इसी के साथ संध्या वंदन कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

0: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ। भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: ब्रज साहित्यिक, इस कार्यक्रम में आइए आज आपको सुनवाते हैं रेखाचित्र खेमा गुरु। प्रस्तुत कर रहे हैं मनमोहन अभिलाषी।
4: गोरे चट्टे मुखारबिंद पे सुए सी नाक और हिरनी सी आंख, थोड़े फकवार और मोती सी दंतावली को धनी खेमा हो, जो कद काठी सो लंबो हैवे ते बिजली के खंभा ते कम ना लगे हो। सुवास में वो बिल्कुल जो है हसमुख, लेकिन जब गुस्सा आ जावे हो तो बस यूं समझ लो कि लालता तो है कि नहीं, वो 440 वोल्ट ते कम नहीं बैठे हो। तीखे में तो ऐसो यो हमारा खेमा। मास्टरी ते आजीव का प्रारंभ करवे बारे या खेमा ने शिक्षा विभाग में जिला शिक्षा अधिकारी के पदानु की ढाई छीन ली हती या दौड़ में

मुक्तिर पड़ावाय, जिन पे या खेमाने बाजी मार के नाई शिक्षा के क्षेत्र में सुनहरे स्थान पाए और मां महिम राष्ट्रपति महोदय तेउ सम्मान पाया हो। खेमा कर्तव्य परायणता में पूर्ण निष्ठा राखतो, भय और समय को पूरा पावन रहो करतो और अपनी आजीविका में सरकार को साल भर जो अवकाश

साल भर जो अवकाश देवे को जो नियम हो कर्मचारी के ताई बाको खेमा ने कबो उपयोग नहीं की नो बाको सिद्धांत हो कि जब हमें घर पे कछु काम ना आए तो फिर हम अवकाश को उपभोग क्यों करें। अरे बीमारी हारी हो तो हमें जो उपयोग करना चाहिए और झूठो डॉक्टर को जो है सर्टिफिकेट लेके नहीं और हम बीमारी को जो है अवकाश लें बाकू बाकी आत्मा गवाही ना दे भाई। अपनी ड्यूटी मांगते कबो हराम खोजी ना दिखाई बाने और न ही कई तरह आते बाने कोई सरकार को धोखा दियो हो माने तो अपने कर्तव्य को पूर्ण जो है पालन कियो और ड्यूटी पर जाके नहीं पूरा समर्पित है कि नहीं बालकन को पढ़ायो हो बिनकी हरेक जिज्ञासा को शांत करके बिनको आगे बढ़ाम तो होखेमा अपनी बेटी बेटान सो ज्यादा वाने शिष्यन में अपनत्व को प्रतिबिंब देखे हो या लिए तो वो बिनके ताई श्रद्धा को स्वर्णिम प्रतीक माने के सम्मान को पात्र बन गया हो। गैल में शहर के बीच चौराहे पे मिले या रेल और बस में यात्रा करते हुए हर ठोर पे खेमा के सामने व शिष्य नतमस्तक है के नाई वाकि पैरन में पर जावे है यात्रियां सो समाज में प्रेरणा को प्रतीक बन गया हो खेमा जाकु सम्मान सो गुरु जी कह के नाई सभी संबोधित करे है। बस यूं समझ लो कहूँ गुरु जी की चर्चा है रही हो तो बस खेमा गुरु जी की ही है रही होगी और काव की ना है। आखर ज्ञान के संग जे संस्कार देवो अपने जीवन को मूल मंत्र माने है अपने ते बड़ेन को सम्मान करेबो और मैया बाप की सेवा की प्रबल भावना के बीच वे बालक के बचपन में ही बो देते है या सो जीवन भर बाकी जे भावना अच्छे पेड़ का निर्माण करती और भविष्य के मीठे फल देती जो सुनहरे भविष्य को गढ़ देती। ऐसो हो खेमा गुरु स्वच्छ भारत और स्वच्छ निर्माण की भावना जो आज संपूर्ण भारत में आत्मीयता से अंगीकार करी जा रही है बापू खेमा गुरु ने अपने राज्य सेवा काल में 807 दशक पहले ही बालकन के बचपन में ही रोपित कर दिया हो। या सो तो खेमा गुरु के जो पढ़ाई भाई जो बच्चा हैं उनके परिवार जो आज समृद्धि के शिखर पर चढ़ के नाई अपना सुखी जीवन जी रहे हैं बिनके परिवार में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए है घर को कूड़ो करकट सफाई कर्मचारी के आवे पे बाकी ढकोला में ही डारियो जाए है। आज जो अभियान पूरे भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलायो है बाकू हमारे या खेमा गुरु ने अपने शिक्षण काल में ही चला के नाई अच्छे संस्कारों को जो बीज बो दियो हो जो आज मीठे मीठे फल दे रहे हो बाने शिक्षा में यू कही कि देखो रोटी पानी खावे ते पहले भैया साबुन नहाए तो राख ते हाथ दियो धोलियो क्योंकि तो चूलो घर में जरा ही है और राख के जो हाथ साफ हुए बाको तो मुकाबलो का है तो पूरा जो है ई शिक्षा पहले ही दे दी है यात्रियां सो और सम्मान सो या को श्रेय खेमा गुरु को ही दियो जा रहे हो। खेमा गुरु भारतीय संस्कृति में सांप्रदायिक सद्भावना की गंगा जमुना के प्रतीक है बाकी ये माए सब धर्मन को सम्मान और बरगन को आदरभाव कूद कूद के नाई भरे हो या लिए तो खेमा गुरु ईद पे मुबारकबाद देते और होली पे रामा कृष्णा को भव्य आयोजन करे है या सो असामाजिक तत्व बिनसो भौतिक डरे करे है। खेमा गुरु के सामयी विलम्ब लेट है के नाई दंडवत प्रणाम कर करे और अपनी करतूतन को सन दूर रखियो करे है। सब धर्मावलंबीन के पूज्य खेमा गुरु समाज के ताई प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं अपनी देशभक्ति कर्म निष्ठा और आत्मीय स्नेह की प्रबल भावना से ओत प्रोत मरकरी बलवन की सी रोशनी को उजीतो खेमा गुरु ने अपने जीवन काल में कर दियो है जो आज हो घर परिवार में श्रद्धा की चर्चा को पात्र बन गयो है। यही लिए तो खेमा गुरु को जीवन सबन के ताई श्रद्धा और सम्मान बन के नाई तन गयो है। खेमा गुरु ने समाज की हर बुराई को दूर करवे के ताई प्रयत्न की नहीं आज सो 70 वर्ष पहले ही बिनन ने महिलान के ताई खुले में जंगल जाए वो निषेध बतायो हो अब देख लियो बा गुरु की दूरदर्शिता को जे हम खातो न बखान करें बा को तो जे ज्ञान पहले ते ही है लियो हो तो बा ने अपने शिष्यन में या ज्ञान को दीपक जोर के नाई जागृति को आभास पहले ही जो है करा दियो हो जासो बिनके परिवारी जन खुशहाली और समृद्धि के दीप जोर के नाई पूरे समाज को

0: अज्ञानता के अंधेरे सो जो है मुक्त करें हैं। और बाकी जो है वह राष्ट्रहित में अमूल्य योगदान देवे हैं। खेमा गुरु अपने वेतन सो बचत कर कछु पैसा बचाए के नाई परोपकार में जय व्यय करे है। बताया जाए कि खेमा गुरु बड़े बूढ़े इनकी सेवा की ताई हर परिवार में इतवार की इतवार जाय को रहे। वहाँ वे नई पीढ़ी के ताई बड़े बूढ़े इनकी सेवा और बिनके सम्मान करवे की सीख जरूर देखे आयो करते। यासो नई पीढ़ी बिनसो प्रेरणा पाए धन्य जाती ही और बिनके परिवार में सुख की गंगा बह जाती ही। खेमा गुरु मात्र भाषा बोलवे के भारी पक्षधर थे। उनकी सीखी कि अपनी मातृभाषा में बोलो पर विदेशी भाषा के ताई खिड़की जरूर खोलो। बाको ज्ञान आन दे करो पर घर में बोल चाल कूटो बाय बाहर जान दे करो। खेमा गुरु की मान्यता ही कि हमें हमारी मातृभाषा में ही बोलना चाहिए। फिर सब भाषाओं को एक तराजू में ना तोलना चाहिए। सबको अपनो अपनो न्यारो महत्व है। हमें अपनो पहनावो अपनो परंपरागत शाकाहारी खाबो ही अंगीकार करना चाहिए। हमारी पुरातन विरासत को संरक्षण दे के नाई बाकू सुरक्षित अवश्य रखना चाहिए। चासो बाकी जीवन मूल्य बने रहें और हम विश्व में ऊंचो मस्तक करके नाई तने रहें। परंपरागत संस्कारण के पक्षधर खेमा गुरु की समाज को ये ही सीखी कि हमें इनको बनाए रखना चाहिए और नई पीढ़ी में ये संस्कार अवश्य डालने चाहिए।
1: ब्रज साहित्य कार्यक्रम में अभी तक आप सुन रहे थे रेखा चित्र खेमा गुरु, प्रस्तुत कर रहे थे मनमोहन अभिलाषी।

श्रोताओं, ये लोकगीत अभी आप सुन रहे थे बबीता शर्मा के स्वर में, और इसी के साथ कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक अब यहीं संपन्न होता है।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या और बस्ती को 936 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। कहा, प्रदेश में दिख रहा है विकास और विरासत का अद्भुत समन्वय। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान राशि की गिनती में लगे 23 कर्मचारियों का इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट चढ़ावा प्रकरण से जुड़ी याचिकाओं पर 13 जुलाई को करेगा सुनवाई। प्रदेश में कल से शुरू होगा दस्तक अभियान। संचारी रोग नियंत्रण के लिए घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीमें करेंगी जागरूक। और राज्य में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। मुख्यमंत्री ने 24 घंटे में पीड़ितों को मुआवजा देने के दिए निर्देश। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या के सुहावल में 432 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 217 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने यहां पूर्व मंत्री मुन्ना सिंह चौहान की प्रतिमा का अनावरण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में अब विकास और विरासत का अद्भुत समन्वय हो रहा है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में दर्शन करने के लिए देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालु यहां का विकास देखकर अभिभूत होकर जाते हैं।
1: आज अयोध्या में भक्ति पथ हो, राम पथ हो, जन्मभूमि पथ हो, ये सभी अयोध्या की पहचान बन रहे हैं। जो सिंगल लेन था, आज वो फोर लेन और सिक्स लेन की सड़कें हैं। चारों ओर से एयर कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी आज अयोध्या को नई पहचान दे।

0: ला रहा है। स्वाभाविक रूप से अयोध्या को पहचान मिलेगी तो बीकापुर को भी, रुधौली को भी, मिल्कीपुर को भी, गोसाईगंज को भी उसका लाभ प्राप्त होगा।
1: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने भदरसा नगर पंचायत का नाम भरतकुंड और ग्राम पंचायत खिरौनी सुचितागंज का नाम मां ज्वाला देवी के नाम पर करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने आज बस्ती में 504 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने हरैया में 27 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय के लिए भूमि पूजन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का एक आदर्श मॉडल बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्ती में मखौड़ा धाम, भद्रेश्वरनाथ धाम और तपसी धाम में चल रहे विकास कार्यों के साथ साथ अब करण मंदिर के सौंदर्यीकरण का कार्य भी आगे बढ़ाया जाएगा।
0: ये जो विकास कार्य हो रहा है, मखौड़ा धाम का हो, भदेश्वरनाथ धाम का हो, तपसी धाम का हो, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आस्था का सम्मान करते हुए उसके लिए भव्य अवस्थापना सुविधाओं का विकास भी करती है और इसीलिए तो 84 कोसी परिक्रमा का मार्ग भव्य बन रूप से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भी और अयोध्या धाम के रिंग रोड के रूप में भी वह काम करेगा। इस रूप में उसका विकास किया जा रहा है।
1: अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान राशि की गिनती के काम में लगे 23 कर्मचारियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। इन कर्मचारियों के इस्तीफे को चढ़ावे में अनियमितता का मामला सामने आने के बाद व्यवस्था में किए गए बदलावों से जोड़कर देखा जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को अब सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक ड्यूटी करनी होगी। इसके साथ ही छुट्टियों में भी बदलाव किया गया है। इन कर्मचारियों के इस्तीफे के बाद अब दान राशि की गिनती के लिए 13 कर्मचारी शेष बचे हैं। वहीं चढ़ावे की गिनती को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त की जा रही है। अब इस काम के लिए अलग से विशेष कर्मचारी रखे जाएंगे। इन कर्मचारियों को पुलिस से सत्यापित कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना होगा और बिना जेब वाली विशेष ड्रेस पहनकर काम करना होगा, जिससे दान राशि की निगरानी और पारदर्शिता बनाई जा सके। मामले की जांच कर रही पुलिस की विशेष टीम जांच का दायरा बढ़ाते हुए आरोपी लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा से भी पूछताछ कर रही है। इस बीच राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र आज अयोध्या पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया। इसके बाद राम जन्मभूमि परिसर में ट्रस्ट के पदाधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं के इंजीनियरों के साथ बैठक कर निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और नई व्यवस्थाओं की समीक्षा की। श्री मिश्र कल राम कथा संग्रहालय में निर्माण कार्यों की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में ट्रस्ट के नव नियुक्त अंतरिम महासचिव कृष्णमोहन पहली बार आधिकारिक रूप से शामिल होंगे। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ के सामने प्रस्तावित है। इन याचिकाओं में घटना की सीबीआई जांच और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन का ऑडिट कैग से कराने का अनुरोध किया गया है। इस मामले में 7 जुलाई को अयोध्या की एक अदालत ने गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया था। स्थानीय अदालत ने पिछले महीने की 29 तारीख को सभी 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर का 8वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर विद्यार्थियों को 1071 उपाधियां और 47 पदक प्रदान किए गए। कार्यक्रम में राज्यपाल ने 300 आंगनबाड़ी केंद्रों को आंगनबाड़ी किट का वितरण और 600 बालिकाओं का एचपीवी टीकाकरण भी कराया।

0: राज्यपाल ने कहा कि छात्राएं तकनीकी क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल कर देश का गौरव बढ़ाएं। प्रदेश भर में कल से संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत 31 जुलाई तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर लोगों को मौसमी बीमारियों समेत अन्य बीमारियों के लक्षण और बचाव के बारे में जागरूक करेंगी। फतेहपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी उदय भान सिंह ने बताया कि इस अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विभिन्न विभागों का सहयोग लिया जाएगा।
1: सारे ब्लॉकों में जो कार्यक्रम है हमारा, इसमें करीब 7-8 विभाग हमारे जुड़े हुए हैं और 7-8 विभाग का प्लान है। इस तरीके से बनाया गया है कि एक ही स्थान पे उसी दिन सारे लोगों का कार्यक्रम, तो उसमें ये रहता है कि कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं है कि जो छूट जाए, जिससे कि वहाँ की सारी व्यवस्थाएं एक साथ ठीक हो सके। कार्यक्रम में जितना मलेरिया वर्कर है वो लगा है हमारे यहाँ से, HS लगे हुए हैं और नोडल ऑफिसर्स भी बनाए गए हैं और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और उनके अधीनस्थ जितने चिकित्सक हैं वो सभी लोग इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
0: प्रदेश के विभिन्न जनपदों में हो रही भारी बारिश से हो रही जनहानि पशुहानि की घटनाओं का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से नुकसान का आकलन कर 24 घंटे में मुआवजा देने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को क्षेत्र में जाकर प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: राज्य में लगातार हो रही बारिश के चलते लखीमपुर खीरी के पलियाकला में शारदा नदी खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। वहीं कुशीनगर में गंडक नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। भारी बारिश के कारण कई जिलों में आज स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया। जिलाधिकारी बदायूं अवनीश राय ने कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को कल भी बंद रखने के निर्देश दिए हैं। उधर बिजनौर बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण अमरोहा में खादर क्षेत्र के गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। क्षेत्र की कई बीघा फसलें जलमग्न हो गई हैं। अमरोहा के जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने बताया कि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इसको देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क है और सुरक्षा के सभी उपाय कर लिए गए हैं। उन्होंने ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के पूर्वी जनपदों में भारी बारिश का ऑरेंज और पश्चिमी जनपदों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आगामी 48 घंटों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने का अनुमान जताया है। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या और बस्ती को 936 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। कहा, प्रदेश में दिख रहा है विकास और विरासत का अद्भुत समन्वय। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान राशि की गिनती में लगे 23 कर्मचारियों का इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट चढ़ावा प्रकरण से जुड़ी याचिकाओं पर 13 जुलाई को करेगा सुनवाई। प्रदेश में कल से शुरू होगा दस्तक अभियान। संचारी रोग नियंत्रण के लिए घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीमें करेंगी जागरूक। और राज्य में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। मुख्यमंत्री ने 24 घंटे में पीड़ितों को मुआवजा देने के दिए निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: मीडियम वेव के मीटर पर ये
4: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम शाम सुहानी। क्या श्रोताओं, जिंदगी की तेज रफ्तार फिर भी नई उम्मीद नई आशाओं, आपके ढेरों संदेशों और फरमाइशी फिल्मी गीतों के साथ लेकर हाजिर है आपका पसंदीदा कार्यक्रम शाम सुहानी। कार्यक्रम में गीतों का और फरमाइशों का सिलसिला शुरू करते हुए पढ़ते हैं कार्यक्रम का ये पहला संदेश। संदेश प्राप्त हुआ है जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन का।

मजनू का ठिल्ला से कमल बालूजा, मधुसागर बालूजा, सतना एमपी से उमंग आकांक्षा माही मलिक। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल, जगदीश जौहरी। गांव जौहलदा भागपत से संजय नमन अपार ढींगिया। भोईवाड़ा पैठड़ से शेख चांद, अदनान, नुमान, जाकिया और इनके परिवार के सभी सदस्य। अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हांगोड़े, योगिता प्रियाली पार्थ और हांगोड़े परिवार के सभी सदस्य। पिपरिया से कमलकांत, दीपा, रिमझिम गुप्ता। कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर। संबलपुर कांकेर से फागुराम, ज्योति, ओजस्वी यादव। पटेना पाटन दिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण अंजनी ज्योति, प्रहलाद राजेंद्र उमेश, प्रमिला बंछोर। चंडीगढ़ से सतीश विमला अनेजा, कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से साइना अक्सा, नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम और परिवार के सभी सदस्य। राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन नौरीन, आसना मोहम्मद कैफ अंसारी जुड़े हैं खुरावली से। सप्तरंग श्रोता परिवार कुम्भार गली श्रीरामपुर से अशोक, सविता, अनिकेत, ऋषिकेश, जीविका, सानिका दले। पुनावले पुणे से अजय, करिश्मा, अविका, विशाखा, सोन बने। अगली फरमाइश के साथ छत्तीसगढ़ सरगांव बाजार से नसीब मोहम्मद, सलमा, रेहान, फैजान। हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल सोनू, पपी भाटिया। संदेश मिला जमशेदपुर से रौनक सेन, लकी, विकी, नानू, रविंद्र, प्रभा देवी, पवन कुमार जुड़े हैं गंडई पंडरिया से। सैयद आलम हाशमी, गुलनाज, सलमा, असद, अरहाम और हाशमी परिवार के सभी सदस्य। अजमेर से संदेश हमें मिला है गांधीनगर गुजरात से सुरेश, मंजुला, विशाल, निशा। पहाड़गंज मुल्तानी ढाडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से आप सभी श्रोता खतीजा बेगम, इसहाक, अशफाक, आफरीन, अल्ताफ और नीलोफर। सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित, प्रथमेश, प्रणाली, सर्वद, सानवी और कल्पना जाफराबाद से। सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर ये गीत। गीत को आवाज दी है राहत फतेह अली खान ने, फिल्म का नाम पाप। गीत रचना अमजद इस्लाम की, संगीत शशि का।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शाम सुहानी आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ जुड़ चुके हैं शादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। शमचुल खान, अदनान, फैजान, अनु, कलीम, उस्मान जुड़े हैं गंजडवारा से। जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल, विलिस डिकेस्ट्रो जनकपुरी सहारनपुर से। मोताला मारा से विजय सुरलकर, रत्नमाला कुमकुम सुरलकर। बुराला खुर्द से आदिनाथ बाग, अमोल गुड़िया और अशोक देशमुख। मुंदी चौक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी। नरेंद्र रटवाड़े, ज्योति आकांक्षा और आकाश कुमार बुलढाणा महाराष्ट्र के। आप सभी श्रोता, अगले संदेश के साथ गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोदिले और आरती जोदिले। हर्षा रामेकर, दिलीप, अक्षय, रुद्रा रामेकर। संदेश मिला अमरावती महाराष्ट्र से। सुरेश कुराना, किरण, लव्या आरब, एस के पप्पी, एमएलबी रोड ग्वालियर से आप सभी जुड़ चुके हैं। झज्जर हरियाणा से बिटू भाटिया, रीता, रजत और मयंक भाटिया का ही संदेश हमें प्राप्त हुआ है। मुंगीसापुर से जाकिर मंसूरी, कमरून, निशा, सविस्ता, पलक, लुबना और यश मंसूरी। अगले संदेश के साथ आप सभी श्रोता जुड़े हैं कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा और सिटी दीवाना। अगली फरमाइश आप सभी श्रोताओं की हमें प्राप्त हुई है हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी काना, मनोहर भाई बागरी, प्रभुलाल बागरी।

अगरी झालावाड़ राजस्थान से, रटलाई जिला झालावाड़ से ही सत्यनारायण, नैना, कपिल, शोभा, पुनिधि बाई भागरी। नजमुल होदा, एसएम जावेद और शगुफ्ता गुमला झारखंड के आप सभी श्रोता हैं। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। संदीप मक्कड़, ज्योति, मन्नत मक्कड़, गौरैया जालंधर के आप सभी श्रोता हैं। फारूक अली और फरहीन फरहान फारिया, आप सभी का संदेश हमें मिला है गुन्नौर यूपी से। करणवीर हाउस भुच्चो कैंचिया बठिंडा से प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर, करणवीर, दीपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, एकम, दमन और अभिजोत। पंडरपुर से जाकिर मुलानी, सुमैया सुबान, समीर सलमा, मुमताज मुलानी, दिलशाद, नसीर, बाबू और बादशाह मुलानी। अगले संदेश के साथ पोटिया कला दुर्ग से संजय, सुजाता, शशांक और सीमा साहू। पाटन छत्तीसगढ़ से परमेश्वर, पूर्वी हेजल, रेशमा और राजेश साहू। सतीश मिगलानी, अनमोल, विवान और महावीर। संदेश मिला है मलोट कैंप पंजाब से। जलालाबाद वेस्ट के आप सभी श्रोता सुरेश, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। फैसल इमाम, अफजाल अकमल और नफीसा प्रवीण। अररिया बिहार के आप सभी श्रोता। तेलीपारा विलासपुर से गुणवंश श्रीवास, आयुष विवेक और आयुषी श्रीवास। नागपुर से विट्ठल जाधव, अनसुईया और पवन राजे जाधव। छत्रपति संभाजी नगर से जुड़े हैं संध्या, मंगेश और स्वराज विराज। वणिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता का ये संदेश प्राप्त हुआ है। कोल सिटी बरकाकाना से अफजाल, शाहीन, सोनू, निप्पी, अफजल मलिक। ओम गायकवाड़ आविष्कार प्रणेता अनामिका, हदगांव महाराज के आप सभी श्रोता। रंगारेड्डी तेलंगाना से कानूगुला गोपाल, माहेश्वरी, प्रवालिका, विष्णुवर्धन और विघ्नेश। गमहरिया जमशेदपुर से विपिन, स्वाति, देव कुमार और आयर कुमार जायसवाल जुड़ चुके हैं। बुलडाणा महाराज से नारायण, मंगला, राजकुमार और इनके सभी परिवारीजन। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश, करुणा वर्मा का ही संदेश मिला है। पट्टी बलिया से ओम प्रकाश, उषा, अमित, हैप्पी रॉय। जिला गाजीपुर से प्रतीक, रोशनी, प्रांजल रॉय। राजनगर कांति निकेतन से कुशेश्वर, शारदा, कंचन, आफरीन, रुखसाना और रूपा इलाहाबादी। शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य, मेगा मस्कीन। पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल, रचिता और केशु, रिदान खुराना। बेनी पट्टी से कामेश्वर प्रसाद गुप्ता, प्रदीप, गोदावरी, राज बहादुर, शंभु, रजनी, सागर और जयवीरू। बेगम इश्रम, वसीम, रुबीना, आरिज, नदीम, अक्रम, शमीम, ममता रानी, पूनम कुमारी शर्मा। संदेश मिला है सीतामणि से। कलेर बिहार से आसिफ और निखत परवीन। मंडी डबवाली से राजेंद्र, अंजू, मोहित, लकी, तानिया, नारंग। आई सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर ये गीत। गीत को आवाजें दी हैं आनंद राज आनंद और अलका याग्निक ने। फिल्म का नाम परदेसी बाबू।

जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शाम सुहानी आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कार्यक्रम में अपनी फरमाइश के साथ जुड़ चुके हैं दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि पारसमणि पुष्पेंद्रमणि और नोखेलाल वर्मा, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश गौरव गरिमा शर्मा। अगले संदेश के साथ आप सभी श्रोता जुड़े हैं हर्षा रामेकर, दिलीप अक्षय और इनके सभी परिवारीजन। निमगांव महाराज से राम गोदली, ऊषा वैष्णवी, पूनम युवराज, सुदर्शन पल्लवी, प्रकर कुशल, नीति सुरभी, अश्विन मंगलाबेन और राजेंद्र शाह, पद्मा टॉकीज, नेपानगर मध्य प्रदेश के श्रोता, छनुला श्रीवास, अनीता, अंजु योगिता, रज्जन हेमंत, धर्मदास वाधवानी। संदेश मिला विलासपुर छत्तीसगढ़ से। अब्दुल गफार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक, संजय कॉलोनी खंडवा के श्रोता, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, बेंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु संस्कृति पौरुष, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप कवल, नांदेड़ से प्रकाश जैन, लातूर से संगीता सूरज, पीआर जैन। श्रोताओं, अगला संदेश पढ़ने से पहले आपसे विनम्र अनुरोध, एक संदेश भेजने के बाद आप पुनः संदेश की आवृत्ति ना करें। ऐसा करने पर आपका संदेश नहीं पढ़ा जा सकता है क्योंकि अन्य श्रोताओं का नाम आना भी अनिवार्य है। अगले संदेश के साथ ये श्रोता जुड़े हैं वाशिम महाराज से मास्टर विट्ठल सुरोशे, सुषमा परिधि, मायरा सुरोशे, नांदेड़ से नारायण दयानंद, ओम कुमार, साई गायकवाड़, राजेश वर्मा, मंजू, निशांत, कौशिकी, दीपाली, युवान और आरके राजा। संदेश मिला रुड़की कैंट से। शाजी बोट के नंदा, हनुमान, उत्तम, जमदाड़े हिंगोली महाराज से जुड़े हैं। अगले संदेश के साथ आप सभी जुड़े हैं कर्नाटका स्टेट से तिरुपति श्यामलाल और अश्विनी आनंद, इन्हीं के साथ रमेश। कोयते बस्ती पुनावले से अजय सोनवने, करिश्मा अविका, सायसा सोनवने, श्रीरामपुर से डी अशोक कुमार, अविका, जीविका, सानू, अर्चना कुमार जुड़े हैं, मुरलीधर साहू, योगेश, संध्या, डीके साहू, रसेड़ा छत्तीसगढ़ के श्रोता। मेरठ कैंट से आप सभी श्रोता जुड़े हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण कोमल, किरण कपिल, कुणाल मेहरा, ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार के आप सभी श्रोता, कारी रायकारी, मीनाकारी, पुंजराज, आरती आकर्षण और जय श्री। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हरविंदर सिंह चावला, लोकेश जोशी, आकाश शर्मा, वैदिक जोशी, हंसिका, मनीष, रिहान, पायल और अकिता जोशी, समशुल, कमर राही, शाहीन, अदनान, फैजान, अनु, उस्मान, कलीम, गंजुटवारा की श्रोता, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहरा जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से जुड़े हैं, शिवाजी नगर खंडवा के आप सभी श्रोता हैं, राजेश सेन, सुरेखा, शुभम, अक्षय और इनके परिवार के सभी सदस्य, फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित, देविका, गजेंद्र, हियान चंदन, सोंगा छत्तीसगढ़ से। नंदकिशोर घटे, संगीता, साक्षी, जैशी मेहत्रे, अंजलि करवा, बीड शहर महाराज से आप सभी जुड़े हैं, बाबा साहिब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टिबलू, पीवी कुलथे भी इन्हीं के साथ। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल, ईशान, पूजा परिहार, सौरभ निषाद, प्रकाश, बल्लू निषाद, तरुण, श्रीनिका, श्रीनिजगा, जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राजेश, शशि, राशि और शीतल, छत्रपति, संभाजी नगर से, पीयू सिक्का, कोयल, डिग्गू, भाविक सिक्का, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से, खेल बाजार पानीपत से नरेश, लक्ष्य, कोयल, नानक चंद्र मल्होत्रा, मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान अरजान, अबान अब्बासी, बुलंद शहर से जुड़े हैं आप सभी।

सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी सविता राधे, राकेश रंजन, राजीव, संजय, ओम कुमार, गुंजेश, रिया रानी, कुमकुम, साक्षी, अच्छेलाल और फलना झा। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद पराग, पुनाराम और कृष्णा देवांगन, पंजाब रामटेके, यशोधरा श्राव्या रामटेके, यवतमाल से आप सभी जुड़े हैं। जालना शहर से सोमनाथ, गीता, ओम सुभाष, चंदन, एकनाथ, संगीता जाधव। संतोष काले, तेजस के काले, लोकेश, बुलढाणा, महाराज से। बबुरी बाजार चंदौली से विजय सरोज जायसवाल, जमशेदपुर से मुराहू देवंती जायसवाल, चंदौली से सुंदर और सुमन जायसवाल। सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर ये गीत।

श्रोताओं, इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमें मिली यवतमाल महाराज से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई शैलेश, प्रतीक्षा स्वप्निल, लक्षिता और इनके परिवार के सभी सदस्य। अगले संदेश के साथ बुलढाणा महाराज से राजू माठे, गजानन, संजय, ज्ञानेश्वर और प्रकाश, इन्हीं के साथ संतोष एस काले, गजानन सालोकार और सुरेश पाटिल। मॉडल टाउन करनाल से सुधीर, नूतन, किरण और इनके सभी परिवार के सदस्य हैं।

लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकिब अलमास पानो, छोटू हसनैन पवार, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविन्द्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर और स्वीटी छाबड़ा।

हरियाणा से राजेंद्र मलकीत आरती और राघव हरमन। जी हाँ श्रोताओं, इसी गीत और इन्हीं फरमाइशों के साथ आज का ये कार्यक्रम शाम सुहानी अब यहीं संपन्न करने की मुझे अनुमति दीजिए। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको अवश्य पसंद आया होगा। अगले संदेश में आपके साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने पड़ोसियों का खूब सारा रखिए ध्यान। दीजिए मुझे अनुमति, नमस्कार। अभी तक आप सुन रहे थे श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम शाम सुहानी। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

श्रोताओं, ये गीत अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में फिल्म आजा नचने से। इस गीत को लिखा जयदीप सानी ने, संगीत निर्देशन सलीम सुलेमान का। कार्यक्रम में

एम तुरज ने संगीत निर्देशन संजय लीला भंसाली का। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

कार्यक्रम के अंत में आपने सुना अरमान मलिक की आवाज में ये गीत फिल्म अजहर से, और इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं देश गान।

अभी तक आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में देश गान। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हुए हैं। समय है कार्यक्रम एक ही फिल्म से का। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मोहब्बतें के कुछ गीत। इस क्रम में आइए सुनते हैं ये पहला गीत।

श्रोताओं, ये गीत अभी आप सुन रहे थे मनोहर शेट्टी, ईशान और उद्धव की आवाजों में। कार्यक्रम एक ही फिल्म से में आज आप सुन रहे हैं फिल्म मोहब्बतें के कुछ गीत, और आइए चलते चलते सुन लेते हैं ये गीत।

0: और इसी गीत के साथ कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब यही संपन्न होता है। आज इस कार्यक्रम में आपने सुने फिल्म मोहब्बतें के कुछ गीत। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर मिला है।
2: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
3: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
2: And then we can sell to further markets as well.
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक

0: आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए।
1: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि 2026-27 के अंतर्गत 611 करोड़ रुपए से अधिक की 17 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने निरंतर समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। कौशल विकास, उद्यमिता और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने पीएम सेतु पहल के अंतर्गत सूरत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई समूह के लिए 240 करोड़ रुपए की निवेश योजना का अनावरण किया है। इस पहल में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया को समूह का प्रमुख उद्योग भागीदार नामित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य 25,000 से अधिक युवाओं को आधुनिक उद्योग प्रशिक्षण, शिक्षुता और नए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने

0: तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच समिति का गठन किया था। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाके, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान जारी किया है। वही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और उमस भरा मौसम बना रहा। ईशानी यादव के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली हाट में मेघालय अनानास महोत्सव का उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के विजन पर आधारित है।
2: Fourth edition of the Pineapple Festival has been remarkable.
3: पाइनएप्पल फेस्टिवल का चौथा संस्करण बेहद सफल और ऐतिहासिक रहा है। आज यहाँ का अनानास दुनिया के कई देशों तक पहुँच चुका है। अब हमारा लक्ष्य प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करना है ताकि अनानास से जुड़े उत्पादों में वैल्यू एडिशन बढ़ाया जा सके। इस मेले में भी ऐसे कई उत्पाद देखने को मिले हैं। इससे हमारे जैविक किसानों को अधिक लाभ मिलेगा और उनके उत्पाद भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक और बेहतर तरीके से पहुँच सकेंगे।
2: Beyond the shores of India to far-reaching international shores.
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 828 अंक चढ़कर 77,559 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 244 अंक की बढ़त के साथ 24,207 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 6 पैसे मजबूत होकर 95.32 रुपए पर बंद हुआ।
0: नीति आयोग ने टाटा मोटर्स फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य आकांक्षी प्रखंडों में एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। ये सहयोग ग्राम संस्थाओं को मजबूत करने, सरकारी योजनाओं तक पहुंच में सुधार करने, शिक्षा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को उन्नत करने पर केंद्रित है। इसमें कृषि आजीविका, स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देना भी शामिल है। वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद सफलतापूर्वक संपन्न कर भारतीय दल आज नई दिल्ली वापस आ गया। वेनेजुएला में हाल में आए भूकंपों में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान शुरू किया गया था। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भारत की सहायता, समर्थन और एकजुटता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। आकाशवाणी समाचार के पूर्व निदेशक और भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी सेबेस्टियन रॉबर्ट का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। उन्होंने देश विदेश में आकाशवाणी समाचार के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर किया। उन्होंने रक्षा और विदेश मामलों के क्षेत्र में एक कुशल संवाददाता के रूप में अपनी पहचान बनाई। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 6 विकेट पर 232 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला

0: बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने सेमीफाइनल में ब्रिटेन के आर्थर फेरी को 7-6, 6-2, 6-4 से हराया। एक अन्य सेमीफाइनल में इटली के यानिक सिनर का मुकाबला सर्बिया की नोवाक जोकोविच से हो रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था आज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख दर्रे से चीन में पहुंच गया। इस जत्थे में 52 सदस्य हैं। चीन में प्रवेश करने के बाद समूह आगामी दिनों में पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा से पहले निर्धारित शिविरों में विश्राम करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Auckland on final leg of his 3-nation tour, receives warm welcome from his New Zealand counterpart Christopher Luxon and Indian community. External Affairs Minister S. Jayashankar meets his Omani counterpart Badr bin Hamad Al Busedi in Muscat, discusses issues of cooperation in trade, investments, connectivity, maritime, technology and defence. Ministers of State for Parliamentary Affairs Arjun Ram Meghwal and Dr. L. Murugan review preparations for upcoming monsoon session. Railway approves Kavach deployment on 680 route kilometres of Northern Railway to enhance safety and operational efficiency. In football, Spain to face Belgium in the second quarterfinal of FIFA World Cup tonight. And in Wimbledon tennis, Alexander Zverev of Germany storms into the men's singles final, beating British wildcard Arthur Ferry. Prime Minister Narendra Modi received a warm and enthusiastic welcome upon his arrival in Auckland, marking the start of his historic 2-day visit to New Zealand. This is the first by an Indian Prime Minister in nearly 4 decades. After arriving in Auckland today, Prime Minister Modi was received at the airport by New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. The Indian community gathered in large numbers to greet him. The atmosphere was filled with excitement as people waved the Indian tricolour and chanted Kia Ora Modi to welcome him. Mr. Modi witnessed a vibrant celebration of India's rich cultural heritage during the community welcome in Auckland this evening. In a series of social media posts, the Prime Minister said that the performances showcased the cultures of Punjab, Tamil Nadu, a fusion of Carnatic and Hindustani classical music, and a stirring rendition of Bande Mataram. Mr. Modi complimented the diaspora for keeping India's cultural heritage vibrant across generations and continents and for strengthening the enduring people-to-people bonds between India and New Zealand. The Prime Minister also expressed delight to witness a performance by the Nad Vocal Ensemble.

नमस्कार श्रोता साथियों, हाजिर हैं कार्यक्रम नवरंग लेकर। जी हाँ दोस्तों, आज है शुक्रवार का वाद और शुक्रवार के दिन हम आपको सुनवाते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नवरंग। तो देर न करते हुए करते हैं इस कार्यक्रम की शुरुआत और पढ़ लेते हैं ये पहला संदेश। संदेश प्राप्त हुआ है नलेश्वर नगर नरवेल महाराज से पीएस नहावकर, निर्मला विशाल नहावकर, मलकापुर से नारायण सोपान आशीष मुरहेकर।

छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन, सुरेखा शुभम अक्षय सेन। अगली फरमाइश के साथ श्रोता जुड़े हैं समता नगर कास्ती से लक्ष्मण जी जगताप, श्रेया मानसी और निशान जगताप। कल्याण मुंबई से किशोर हिवराले, सुजाता और प्रतीक हिवराले। सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित प्रतिमेश प्रणाली सर्वत, सानवी कल्पना देशमुख। संदेश प्राप्त हुआ कालेगांव जाफराबाद से। अगले संदेश के साथ श्रोता जुड़े हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि और नोखेलाल वर्मा। सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार और चंद्रकला रेवाड जुड़ चुके हैं। हकीकतपुरा मऊ से ये संदेश प्राप्त हुआ है मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार का। पटेल नगर मलौड से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी, गगनदीप आरजू और गुड्डू जाजौरिया।

अगली फरमाइश के साथ आप सभी श्रोता जुड़ चुके हैं। अभिजीत गवहान कर रही, सरिता प्रणिता सिद्धांत, प्रिंस एकांश और टुक टुक गवहान कर, संदेश मेरा उमरखेड़ महाराज से। मोहल्ला हलवाइयन शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, इकबाल सितारा, नसरीन परवीन, रोजी बिट्टू साजदारानी, हिना कौसर।

कनेरा मोहल्ला पटियाले से मुकेश बत्ता, नीतू, नीलम, नितिन, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता।

सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर यह गीत फिल्म जानवर से। गीत को स्वर दिया है मोहम्मद रफी ने, गीत रचना शैलेंद्र की, संगीत निर्देशन शंकर जयकिशन का।

जी हाँ श्रोताओं, आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नवरंग। कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ जुड़े हैं बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी और अल कबीर। बीट शहर मारा से नंदकिशोर गटे, संगीता, साक्षी, जयश्री, अंजलि, बाला साहेब करवा, राम निवास, धनंजय टिबड़ू, पीबी कुल थे। मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा जुड़ चुके हैं। जालना शहर से सोमनाथ, गीता, ओम सुभाष चंदन, एकनाथ, संगीता जाधव, नेहरू

चौक बैटर से सुरेश अनीता, आरती पूजा, प्रसाद सोनल, सिया जाधव, विक्रम कड़वासरा, सचिन सतीश और योगेश, संतोष मिला है हनुमानगढ़ राजस्थान से, नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी। कार्यक्रम में अगली हाजिरी लगवाई है बल्लारपुर जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र से हेमंत कुमार, प्रिया, ओमी, समीक्षा और इनके परिवार के सभी सदस्य, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला कुमकुम सुरलकर। उज्जैन मध्य प्रदेश से आप सभी श्रोता भोला भैरुलाल, प्रवीण रियांश और प्रतीक वक्तरिया। मजनू का टिल्ला से जुड़े हैं कमल, मधु, सागर बालूजा, उमंग, आकांक्षा और माही मलिक इन्हीं के साथ। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल, विलिस डिकेस्ट्रो। गांव फरांसी जिला हिसार के आप सभी श्रोता राजकुमार, पुष्पेंद्र कुमार, प्रमोद कुमार डूडी। एमडी रोड पत्रोड़ा से ये संदेश मिला है हमें मंगल जनागल, रोशनी, अंकुर, इंदु और डॉक्टर सुनील जनागल का। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, मेंडी, सौरभ, साइना और निवान शर्मा। आइए आप सभी को सुनवाते हैं आप सभी की ही फरमाइश पर ये गीत।

फिल्म का नाम मुझे कुछ कहना है, आवाज़ें प्रीति पिंकी और साथियों की, गीत रचना समीर की, संगीतकार अनु मलिक।

कार्यक्रम में अगली फरमाइश के साथ श्रोता जुड़े हैं गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोदले और आरती जोदले, वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, गांव चौहलदा बागपत से संजय नमन अपार ढींगिया, नांदुरा से धोडू भातुरकर, मंगला विवेक कुमार, प्रतीक्षा कोमल भारती और समाधान। अगले संदेश के साथ श्रोता जुड़े हैं महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नाचानी और भारती, अभय कुमार सनातनी, शिवानी कुमारी, प्रियंका जिया, रिया तुसी, आयुषी अनिरुद्ध, मुन्नी देवी, जयप्रकाश, बसंत लाल, हीरामोती पन्नालाल। संदेश मिला पीरा बाजार झुमरी तलैया से, दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से बसंत कुमार, रेखा देवी, अजय कुमार, रिमी, तनुश्री। रघुवीर नगर दिल्ली से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा और लड्डू, चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी, सुनीता आरजू, हसमुख लाल बुलबुल, संजीव बंटी जिंदल और इनके परिवार के सभी सदस्य, अनिल कुमार घोड़ के वैशाली अनिल, वैष्णवी गायत्री, यज्ञेश छत्रपति संभाजी नगर से जुड़े हैं, चौटाला हरियाणा से दारा पंडित संजय शर्मा जुड़ चुके हैं, इन्हीं के साथ प्रियंका शर्मा। अगली फरमाइश के साथ उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा रियाज, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन माहिरा, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से यशमित यशु, निरंजन सोम्या अविरल, योगेंद्र नायक, गीता निहारिका, सुशांत, सुरेश चौरसिया। संदेश मिला कासगंज उत्तर प्रदेश से।

बलकरण वर्मा, अंजनी, रजमत, मुरली, नीरा, ज्योति, प्रहलाद वर्मा, दुर्ग छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं आप सभी। लातूर से संगीता सूरज पीआर जैन, नांदेड़ से प्रकाश जैन। अगले संदेश के साथ आप सभी श्रोता जुड़े हैं आकोट से विनायक पेंडे, मंगला, विजय, शुभम, पवन और संजीव। एक और संदेश हमें प्राप्त हुआ है पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन पल्लवी, प्रखर कुशल, नीति सुरभी, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र शाह। एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण, लव्या, आरव और एसके पप्पी। अशोक श्याम कुमार, प्रमिला, चीनू, दीपक, अनुश्री और इनके समस्त परिवारीजन, सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ के आप सभी श्रोता। आइए आप सभी को सुनवाते हैं आप ही की पसंद पर ये गीत, फिल्म का नाम अनजाना अनजानी। स्वर मोहित चौहान और शेखर रवजियानी और साथियों का, गीत रचना कुमार और विशाल डडलानी की, संगीत निर्देशन विशाल शेखर का।

आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से समय आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नवरंग। कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ श्रोता जुड़े हैं झज्जर हरियाणा से बिटू भाटिया, रीता, रजत और मयंक भाटिया, बुलडाणा मारा से अनीता गाठोड़े, रमेश राव, लोकेश और इनके समस्त परिवारी जन, मुंदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी, हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रज्जाक मोहम्मद, समीम, इमरान और इफरान। अगली फरमाइश के साथ श्रोताओं ने संदेश भेजा है सीतामढ़ी से अक्रम हुसैन, इशरत अक्रम, वसीम, रूबीना, आरिज, नदीम, शमीम, ममता रानी, पूनम कुमारी शर्मा, कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान और निखत परवीन, नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता का ये संदेश प्राप्त हुआ है। मॉडल टाउन करनाल से जुड़े हैं सुधीर, नूतन, किरण, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, हरिपाल और इनके समस्त मित्रगण। ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, काजल, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, मोहिनी, बलवीर। उत्तर प्रदेश से रामचरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा।

0: अगली फरमाइश के साथ श्रोता जुड़ चुके हैं। गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश, दीपक और पूजा खटक। नांदेड़ से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल, शिवप्रसाद, अर्णव, दुर्गेश्वरी, राखी, तृप्ति जायसवाल, करणवीर हाउस, भुचो कैंचिया, बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर, करणवीर, दपिंदर, फरिंदर, कुलदीप, एकम, सिमू, दमन, अभिजोत। ये संदेश हमें मिला है आप सभी का। फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, शुभदीप, गुड़लाल और अविराज। सलार पहलगाम कश्मीर से पीरजादा मिराउद्दीन और इनके समस्त मित्रगण। मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता, नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। गुनौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरीन, फरान और फारिया। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत। फिल्म का नाम नो एंट्री, आवाजें सोनू निगम और अलीशा चिनॉय की, गीत रचना समीर की, संगीत निर्देशन अनु मलिक का। मजनू का टिल्ला से जुड़े हैं कमल मधु सागर बालूजा, सतना एमपी से उमंग आकांक्षा माही मलिक।
1: हाय हाय हाय चिकनी चिकनी।
0: नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी, जोगेश, ट्विंकल, डिंपल मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नवरंग आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से, और आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट हेमलता। कार्यक्रम में अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ है जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन का।

गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला विशाल निशा, नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद और अलका मिड्डा। अगली फरमाइश के साथ श्रोता जुड़े हैं। बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला और सुमयोत कुमार, गगनदीप धांधी, तृप्ता कुमार धांधी, प्रियंका प्रशांत प्रियम, वामिका और वाणी धांधी। संदेश मिला नवाशहर पंजाब से। बेंगलुरु से आप हैं भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिपेंदु संस्कृति और पौरुष, सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद कुमार गौरव मंदूरकर, डाबकी रोड अकोला से आप सभी जुड़े हैं। हांडीखेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा सार्थक शर्मा, मुकेश गोस्वामी, मधु आशीष शिवन्या, अनु गोस्वामी, बिलासपुर छत्तीसगढ़ के श्रोता, मोहम्मद इसाक, खतीजा बेगम, अफरीन, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर, छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से आप सभी। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक अनिल, जयवीर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र, साहिल बिट्टा बजाज। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगरेजा, पूनम विशाल प्रिया, तिशानी और निमित आहूजा, प्रताप जिनांगल, इंदिरा मुकेश, दिनेश अंशु, बलदेव कटारिया। संदेश भेजा है सिरसा हरियाणा से। अगले संदेश के साथ श्रोता जुड़े हैं पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राशि, शीतल, कमल साहनी, पिंकी साहनी, अफजल मलिक, संदीप मक्कड़ और इफ्साल बेगम। संदेश हमें भेजा है नागपुर महाराष्ट्र से, रामगढ़ कैंट से निपी साहनी और सुनीता साहनी। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल, ईशान, पूजा परिहार, दतरेंगी से भागवत, शांति देवी, लीलावती, विनीता, रुद्र वर्मा। मुंबई से अहमद फूलवाले, दुखना सदफ, जूही इमरान, कापसहेड़ा बॉर्डर, नई दिल्ली से आमना नसरीन बागवान, आसमा परी, राबिया और आशु अहमद फूलवाले। शिवपुरी मध्य प्रदेश से मनोज नामदेव, मयंक, खुशबू, मासूम, ममता और रेखा नामदेव जुड़ चुके हैं। जमानिया जिला गाजीपुर से आप सभी श्रोतागण, सुरेश उर्मिला, दीपक, स्वाति जायसवाल, गमहरिया जमशेदपुर से विपिन, स्वाति, देव कुमार, आर्य कुमार जायसवाल। अगली फरमाइश के साथ श्रोता जुड़े हैं रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू जायसवाल, देवंती जायसवाल, चकिया बाजार चंदौली से सुंदर सुमन जायसवाल, बबुरी बाजार से विजय सरोज, गमहरिया से रोशन और आर्य जायसवाल। हीरावली पजालिका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला, इंदु, पार्वती, हिमांशु और इनके समस्त परिवारीजन, कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, साइना अक्सर, नाजिया आफिया इब्राहिम और परिवार के सभी सदस्य। बडिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र, अंजू, मोहित, लकी, तान्या, नारंग, मोहल्ला हलवाइयन, शेरकोट जिला बिजनौर के आप सभी श्रोता, मोहम्मद वकार फरीदी, इकबाल, सितारा, नसरीन, परवीन, रोजी, बिट्टू, साजदा, हिना कौसर। वरवड बकाल बुलढाणा से नारायण, कमल, दिव्या, जय हागे जुड़ चुके हैं। जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ प्रकाश, बल्लू निषाद, उत्तम सिंह जंगेल, मोरस अनिल कुमार, अजीत, आयुष और नंदिनी जंगेल, कोका भिलाई से दमदा ग्राम सुकरी कला से अमित शकुन, आरुषि, ओशिका आदित्य और अंजलि जंगेल, नांदेड़ महाराज से नारायण गायकवाड़, दयानंद और ओम कुमार, मोताला महाराज से राजगवई, राजवीर गवई, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य, गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार, रिंकी और इनके समस्त

मित्रगण, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से जुड़े हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर, स्वीटी छाबड़ा। सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत और जानविका, मास्टर विठल सुरोशे, परिधि मायरा सुरोशे, वाशिम रोड महाराष्ट्र से। किशनगंज बिहार के आप सभी श्रोता रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, देवाश्री और इन्हीं के साथ अनुराग मोहन। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनसर रेहान। पजौनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, सार्थक आदर्श, अलौकिक चंसौलिया। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से जुड़ चुके हैं। हासिद राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन आसना, मोहम्मद कैफ अंसारी, जैन मंदिर वाली गली कुरावली के आप सभी श्रोता हैं। अगले संदेश के साथ श्रोता जुड़े हैं गंजडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज कैफ, अनवर लुबना, आलिया अंसारी। चंडीगढ़ से सतीश, विमला, अनेजा। पोटिया कला दुर्ग से संजय, सुजाता, शशांक और सीमा साहू। गांव हिप्परसोका लातूर से उस्मान शेख, फौजी, सायरा बानू, बाबा शेख, सिमर और करिश्मा। विट्ठल जाधव, अनसुईया, पवन राजे जाधव। नागपुर से ये संदेश मिला छत्रपति संभाजीनगर से मंगेश, संध्या, स्वराज विराज। अगली फरमाइश के साथ श्रोता जुड़े हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना, हरमिंदर सिंह चावला, बानी लोकेश, पायल जोशी, वैदेही, हंसिका और अकीता जोशी। कुम्हारगली श्रीरामपुर से अशोक, सविता, अनिकेत, ऋषिकेश, जीविका दले। पुरावली पुणे से सानिका, अजय, करिश्मा, अविका, विशाखा सोनमने। गांव उस पार से यादराम, वीरेंद्र कुमार, भोली, मनीष, काना, कोमल, लड्डू, वैष्णवी, पिंकी, प्रीति, ओमवती और इनके सभी सदस्य। फरह, नगला, चंद्रबान, पंडित दीनदयाल धाम से सीता, संजू, मुन्नी और दिनेश, इन्हीं के साथ रॉकी। अगले संदेश के साथ राजकोट गुजरात से रश्मि, झरना, भरत कुमार। पोषण बंछोर, चंद्रकिशोर, प्रीति, छाया बंछोर। पहारा दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर ये गीत। साथ ही साथ शामिल करते हैं ये एक और संदेश ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहरा जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से।

श्रोताओं, इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमें मिली रिंगिनी छत्तीसगढ़ से दिनेश और करुणा वर्मा की। मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक, आदर्श रतन हाथरस से जुड़े हैं। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंदन, अंकुश अरोड़ा।

श्रोताओं, ये गीत अभी आप सुन रहे थे साधना सरगम और मुर्तजा कादिर की आवाजों में फिल्म साथिया से। और इसी के साथ साथ ही साथ इन्हीं फरमाइशों के साथ कार्यक्रम नवरंग अब यहीं संपन्न करने की हमें अनुमति दीजिए। अगले शुक्रवार को फिर से हाजिर होंगे आपके ढेरों संदेशों और फरमाइशी फिल्मी गीतों के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार।

अभी तक आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नवरंग। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। डीजी प्रस्तुत है नौटंकी, अनेकता में एकता, लेखक है विजेंद्र सिंह वर्मा, प्रस्तुति नरेश फलोत्रा की।

अभी तक आप सुन रहे थे नौटंकी, अनेकता में एकता। लेखक थे विजेंद्र सिंह वर्मा, प्रस्तुति हरी बाबू कौशिक की थी। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाते हैं ध्रुपद धमार गायन। कलाकार हैं श्री कामोद मिश्रा। सबसे पहले आइए सुनते हैं ध्रुपद। बोल हैं तुम हो करुणा निदान, निबद्ध राग बागेश्वरी में, ताल चौताल।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं कामोद मिश्रा का ध्रुपद धमार गायन। आइए सुनते हैं धमार। बोल हैं समझ गए सब तेरी चाल, निबद्ध है राग विहाग में ताल धमार।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं ध्रुपद धमार गायन। कलाकार हैं कामोद मिश्रा। आइए सुनते हैं फिर से ध्रुपद गायन। बोल हैं ताल सुर के भेद न जानत, निबद्ध है राग मालकोंस में ताल सुर ताल।

और इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आज इस कार्यक्रम में कलाकार थे कामोद मिश्रा। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है, अब समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत के राजदूत मुआन पुई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर है।
1: Free trade agreement is a great opportunity.
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं, तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का सबसे बड़ा संरक्षक बना रहेगा। उन्होंने आज विशाखापत्तनम में नौ सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में भारतीय नौसेना देश के समुद्री हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत के 90% से अधिक व्यापार का परिवहन समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी का नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। कोयला मंत्रालय ने आज वाणिज्य कोयला ब्लॉकों की नीलामी के 15वें चरण और 13वें और 14वें चरण के दूसरे प्रयास की बोलियां बोली। मंत्रालय के अनुसार नीलामी के लिए पेश किए गए 23 कोयला ब्लॉकों में से 8